सुप्रभात। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज और FM 100.5 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आज दिन है शुक्रवार, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की पांचवी तिथि, तदनुसार 26 जून 2026। हमारी स्टूडियो की घड़ी में 5:58:50 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा। इस सभा में मैं अर्चना आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय मामलों की विशेष सलाहकार नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि मुलाकात के दौरान उन्होंने इस बात की चर्चा की कि भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना किस प्रकार वित्तीय सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती बनाकर जीवन की सुगमता बढ़ा रही है और लोगों को व्यापक स्तर पर सशक्त बना रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पूरे विश्व में साझेदार देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहे।

0: करेंगे। वो सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हार्बनी से द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं पर समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में भारत वैश्विक मंच के ब्रिटेन भारत सप्ताह कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
1: यूनाइटेड किंगडम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट
2: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
1: एंड टूगेदर बिकमिंग अ फोर्स मल्टीप्लायर।
0: गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृहमंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026 से 2029 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। ये दस्तावेज नशीले पदार्थों की मांग और आपूर्ति में कमी लाने और मादक पदार्थों के खतरे से निपटने की योजना प्रदान करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने की विंडो खोल दी है। मेडिकल कॉलेज में दाखिले की ये परीक्षा इसी महीने 21 तारीख को आयोजित हुई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी अब neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्व पहली प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रॉड्रिगेज ने कहा है कि देश में दो शक्तिशाली भूकंपों से मृतकों की संख्या बढ़कर 188 हो गई है, जबकि 1520 लोग इसमें घायल हुए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में कुरासाओ ने आइवरी कोस्ट को और इक्वाडोर ने जर्मनी को हरा दिया है। प्रतियोगिता में इस समय जापान का मुकाबला स्वीडन से और ट्यूनिशिया का मुकाबला नीदरलैंड से जारी है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए थे। जवाब में भारत ने केवल 16 ओवर और 5 गेंद में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेती किसानी के अंतर्गत अम्लीय मिट्टी के बारे में अनीता तिर्की से।
4: मिट्टी के सुधार से मिट्टी की अभिक्रिया क्षारीयता और अम्लीयता की मात्रा में कमी होने से बदल जाती है। पौधों को प्राप्त नहीं होने वाले पोषक तत्व जो जटिल अवस्था में होते हैं, भौतिक संरचना भी सुधरती है। अम्लीय मिट्टी प्रायः नम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। अम्लीय मिट्टी का पीएच मान 7 से कम होता है। इसमें जीवांश पदार्थ की अधिकता होती है। हमारे देश में अम्लीय मिट्टियां केरल, आसाम, मणिपुर, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, छोटा नागपुर और संथाल परगना में पाई जाती है। अम्लीय मिट्टी बनने के बहुत सारे कारण हैं, जैसे अम्लीय चट्टानों से मिट्टी का निर्माण होना, क्षारीय पदार्थों का कमी होना और अम्लयुक्त उर्वरकों का प्रयोग करना। अम्लीय मिट्टी को सुधारने के लिए डोलोमाइट, बुझा चूना, लकड़ी की राख, सीप कवच इत्यादि का प्रयोग कर सकते हैं। इन सभी में से चूना का प्रयोग बहुत ही प्रमुख है और मिट्टी को सुधारने के लिए काम में लाया जाता है। सबसे पहले चूने की मात्रा का निर्धारण करने के लिए मिट्टी की जांच करवाना बहुत ही आवश्यक है। मिट्टी की जांच से ही वास्तविक स्थिति की जानकारी मिलती है। इसके लिए किसान भाइयों को अपने खेत की मिट्टी का नमूना नजदीक के मिट्टी जांच प्रयोगशाला में ले जाकर करवाना चाहिए। मिट्टी जांच की सहायता से किसान भाई जान सकते हैं कि उनकी मिट्टी कैसी है। मिट्टी जांच प्रयोगशाला रांची जो कृषि भवन कांके रोड में अवस्थित है, या मिट्टी जांच किसान भाई बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के मृदा विभाग में करवा सकते हैं, या दामोदर घाटी निगम सिंदरी में करवा सकते हैं। मिट्टी जांच के बाद चूने की मात्रा 1 से 6 टन प्रति हेक्टेयर लग सकती है, परंतु 2 से 3 टन चूना प्रति हेक्टेयर डालकर अम्लीय मिट्टी का सुधार हो सकता है। चूना 5 वर्ष में सिर्फ एक बार डालने की आवश्यकता होती है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एक तकनीक विकसित की है। इसके अनुसार चूने को आप 3 से 4 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के समय कतारों में डालकर मिट्टी को पैरों से मिला दें। उसके बाद उर्वरक का प्रयोग करें और बीज की बुआई करें। जिस फसल में चूने की आवश्यकता है उसी में चूना का व्यवहार करें, जैसे दलहनी फसलें, मूंगफली, मकई इत्यादि। चूने की मात्रा प्रत्येक फसल में बुआई के समय ही दें। आलू और धान की फसल में चूना का प्रयोग नहीं करना चाहिए। चूना के प्रयोग से मिट्टी में फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ जाती है, नाइट्रोजन की उपलब्धता भी बढ़ जाती है। चूने के प्रयोग से मिट्टी में एल्युमिनियम, मैग्नीज, लोहा की मात्रा में कमी आ जाती है, जिससे फलों की वृद्धि अच्छी होती है।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती किसानी के अंतर्गत अम्लीय मिट्टी के बारे में अनीता तिर्की से। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है आज का चिंतन।

0: बात उस समय की है जब सभ्यता पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुई थी। एक गांव में परंपरा थी कि हर व्यक्ति अंधकार से मुक्ति के लिए हर रोज अंधेरे को टोकरियों में भरकर गांव के बाहर फेंक आया करता था। संयोग से एक दिन उस गांव में किसी घर के एक युवक की शादी के बाद दुल्हन आई। गांव की रवायत के अनुसार घर के बड़े बुजुर्ग ने उस नवविवाहित दुल्हन को भी टोकरी में अंधेरे को भरकर गांव के बाहर फेंक आने का आदेश दिया। दुल्हन काफी हैरत में पड़ गई और सोचने लगी कि भला अंधेरे को टोकरी में भरकर कैसे बाहर फेंका जा सकता है। अकस्मात उसके दिमाग में बिजली की गति से एक विचार कौंधा। वो घर के बाहर आई, बिना देरी किए मिट्टी का एक दिया बना लाई। उसने तत्क्षण ही कपड़े की बाती में थोड़ा सा तेल डालकर दिए को जला दिया। अब अंधेरा छट चुका था। गांव का हर व्यक्ति इस बात से हैरान था कि आखिर अंधेरे को इस प्रकार दूर कैसे किया जा सकता है। घर की बहू ने गांव के लोगों की आंखें खोल दी थीं। इसके बाद से उस गांव में फिर कभी अंधेरा नहीं रहा, क्योंकि लोगों ने रोशनी के लिए दीप जलाना सीख लिया था। उस गांव में अंधकार दूर करने की अज्ञानता की कहानी हमारी अपनी कहानी है। सभ्यता के तेजी से विकास के बावजूद हम अपनी आत्मा में बसे अंधेरों से मुक्ति पाने में असफल रहे हैं। रोशनी जलाकर बाहर फैले अंधेरे को दूर कर हम आश्वस्त हो जाते हैं कि हमारे अंदर का अंधकार खत्म हो गया है और उजाला फैल चुका है। लेकिन दुर्भाग्यवश हम अपनी आत्मा में ही नहीं झांक पाते हैं, जो झूठ, फरेब, बेईमानी, धोखा, मिथ्या, आनंद, अहंकार, छल प्रपंच और अन्य बेशुमार अमानवीय प्रवृत्तियों के तिमिर में डूबी हुई है। करुणा, दया, सहानुभूति, प्रेम, धर्म, चरित्र और नैतिकता का सर्वथा अभाव है। आत्मा तो है, पर मानवीय अनुभूतियों और संवेदनाओं से आप्लावित नहीं है। आज महत्वपूर्ण प्रश्न रोशनी की तलाश का नहीं है, बल्कि अति रोशनी की चकाचौंध में बंद हुए अपने प्रज्ञान चक्षु को खोलने का है, ताकि आत्मज्ञान, आत्मसंस्कार और आत्मउत्थान के दीप की बाती की लौ शाश्वत रूप से प्रज्वलित रहे।
1: अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन। संकलन एवं वाचन था दिनेश कुमार लाल का। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आराधना के अंतर्गत देशभक्ति गीत।

सुनते हैं कुछ भक्ति गीत। श्रोताओं, कहते हैं भजन गाना और सुनना मनुष्य की आत्मा को शांति देता है और प्रभु के सानिध्य का अनुभव कराता है। तो आइए हम सब मिलकर इस पावन यात्रा की शुरुआत करते हैं और सुनते हैं प्रभु की महिमा का ये पहला भजन।

के समय बस एक ही भाव मन में रखें, भक्ति का। जब हम सच्चे मन से भगवान का नाम लेते हैं तो हर दुख सुख खुद ब खुद दूर होने लगता है। भजन हमारे और प्रभु के बीच एक सेतु का काम करते हैं। तो चलिए सुनते हैं एक और भावपूर्ण भजन।

श्रोताओं, जब मन में श्रद्धा और विश्वास हो तो हर धुन भक्ति का रूप ले लेती है। इसी भावना को लेकर अब प्रस्तुत है भक्ति रस से सराबोर यह सुरीला भजन।

कहते हैं कि ईश्वर का नाम लेने से जीवन की हर कठिनाई सरल हो जाती है। भजन वही दिव्य सेतु है जो हमें प्रभु से जोड़ता है। तो आइए प्रभु स्मरण में डूबते हुए सुनते हैं अगला भजन।

श्रोताओं, ईश्वर पर आप तभी विश्वास कर सकते हैं जब आपको खुद पर विश्वास हो, क्योंकि ईश्वर कहीं बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर हृदय में ही निवास करते हैं। इसलिए मन की सुने और भगवान पर भरोसा करें।

श्रोताओं, कार्यक्रम आराधना के आज का ये अंक अभी यहीं समाप्त होता है, लेकिन भक्ति की यह धारा हमारे मन में निरंतर बहती रहनी चाहिए। हम प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि आप सभी के जीवन में सुख, शांति और भक्ति बनी रहे।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज और FM 100.5 मेगा हर्ट्ज पर। आइए थोड़ी ही देर में हम सुनेंगे श्री रामचरितमानस गान भाग 151।

वन गमन के लिए श्री राम माता कौशल्या की आज्ञा और आशीर्वाद ले चुके हैं। उसी समय आकुल सीता वहां पहुंचती हैं। सास के चरणों की वंदना करके सिर झुकाकर वहां बैठ जाती हैं। पैर की अंगुलियों के नाखून से धरती कुरेदती हुई सोच रही हैं कि किस सुकर्म का फल उन्हें प्राप्त होगा। शरीर तथा प्राण दोनों पति के साथ जाएंगे या केवल प्राणों को ही उनका साथ प्राप्त होगा। उनके सुंदर नेत्रों से अविरल अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। पुत्र वधू की ये दशा देख माता कौशल्या उनके लिए सास ससुर और सभी कुटुंबियों के स्नेह और सद्भाव की चर्चा करती हैं। जिस सुकुमारी के पिता राजाओं के शिरोमणि जनक हैं, श्वसुर सूर्यवंश के सूर्य

और पति सूर्य कुल के कमल को खिलाने वाले चंद्रमा के समान रूप और गुण के भंडार हैं। ऐसी रूप राशि और शीलवंती बहु को माता कौशल्या ने आंखों की पुतली के समान प्यार से रखा है। माता कौशल्या का श्री राम से प्रश्न है कि सीता के लिए उनकी क्या आज्ञा है। क्या विधाता ने सीता को वन के कष्ट भोगने के लिए रचा है? सीता यदि घर ही रहें तो माता कौशल्या को बड़ा सहारा मिल जाएगा।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान भाग 151। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। अब से थोड़ी देर बाद 6:50 पर, माफ कीजिए, 6:55 पर आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, 7 बजे हिंदी में समाचार।

स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम का वक्त रहेगा 7:05 पर, जिसमें आज जानेंगे हम अस्थमा के कारण और बचाव के बारे में डॉक्टर स्वाति शरण से, और इनके साथ बातचीत करेंगे संजीव कुमार लाल। 7:15 का वक्त होगा फिल्मी संगीत का कार्यक्रम सुबह सुरीली का, गांधी कथा सुनेंगे 7:45 पर। 8:00 का वक्त रहेगा समाचार प्रभात का, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज, और प्रादेशिक समाचार 8:30 पर हम सुनेंगे। लोकगीत संताली भाषा में सुनेंगे कार्यक्रम लोकरंग के अंतर्गत 8:45 पर। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसरंजन का आनंद लेंगे 9:00। 9:30 पर हम सुनेंगे शास्त्रीय संगीत।

जिसमें राग तुरी में ख्याल गायन, विलंबित रचना एक ताल में निबद्ध होगी और इसके गायक कलाकार हैं होंगे राणा झा। उर्दू कार्यक्रम का समय रहेगा सुबह 10 बजे, 10:30 पर कार्यक्रम जोहार रांची। आपकी पसंद कार्यक्रम 11:30 पर हम सुनेंगे। दोपहर 12 बजे महिलाओं के लिए खास कार्यक्रम गृह लक्ष्मी का वक्त रहेगा। फिल्म संगीत का आनंद हम लेंगे दोपहर 12:30 पर। 1 बजे हिंदी में समाचार सुनेंगे। 1:05 का वक्त होगा अंग्रेजी में समाचार का और प्रादेशिक समाचार का समय रहेगा 1:10 पर। उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी हम सुनेंगे 1:20 पर। सुगम संगीत का समय रहेगा 1:45 पर।

जय भारती कार्यक्रम दोपहर 2:30 पर रांची मेलोडीज का वक्त होगा 3:30 पर, उर्दू कार्यक्रम 4:02 पर।

कार्यक्रम सांझ सरगम का वक्त होगा शाम 4:35 पर। प्रादेशिक मुख्य समाचार का समय रहेगा शाम 5:00। युवाओं के लिए कार्यक्रम युववाणी का वक्त होगा 5:02 पर। श्रमिक लोक कार्यक्रम 5:30 पर। खेतीबाड़ी कार्यक्रम 6:02 पर। कार्यक्रम हमारी दुनिया का समय रहेगा 6:32 पर। जिले में आजकल 7:11 पर। आदिवासी अखरा हो भाषा में हम सुनेंगे आज 7:15 पर। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से क्रमशः संस्कृत और हिंदी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय मामलों की विशेष सलाहकार नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। श्री मोदी ने बताया कि बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना से वित्तीय सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती बनाकर जीवन की सुगमता बढ़ाने और लोगों को व्यापक स्तर पर सशक्त बनाने पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पूरे विश्व में साझेदार देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री कल से 29 तारीख तक सेशेल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशेल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्मेनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरूपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृहमंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026-2029 का दृष्टिपत्र जारी करेंगे। ये दस्तावेज नशीले पदार्थों की मांग और आपूर्ति में कमी लाने और मादक पदार्थों के खतरे से निपटने की योजना प्रदान करेगा। सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं। आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने का विंडो खोल दिया है। पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित की गई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी www.neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न 200 रूपये शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। चुनौती स्वीकार होने पर यह शुल्क वापस कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पहली प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। मुद्रा कोष की संचार निदेशक जूली कोजैक ने कहा कि मजबूत घरेलू मांग के समर्थन से भारत की अर्थव्यवस्था अनुकूल बनी हुई है। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि देश में 2 शक्तिशाली भूकंपों से मृतकों की संख्या 188 हो गई है, जबकि 1520 लोग घायल हुए हैं। मलबे में अभी भी 200 लोग फंसे हुए हैं। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए। जवाब में भारत ने 16 ओवर और 5 गेंद में ही 5 विकेट पर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आइवरी कोस्ट ने क्राकाओ को 2-0 से हराकर पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट में जगह बनाई है। एक अन्य मैच में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर बड़ा उलटफेर किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा के अंतर्गत अस्थमा के कारण और बचाव के बारे में डॉक्टर स्वाति शरण से। उनके साथ बातचीत कर रहे हैं संजीव कुमार लाल।
2: मित्रों, आए दिन जब हम घरों की साफ सफाई में लग जाते हैं तो हमारी सांसें तेज हो जाती हैं, सांस भरने लगती है और हम खांसने लगते हैं और हमारी नाक बहने लग जाती है। इसका कारण क्या है, इसी विषय पर बात करेंगे कि अस्थमा क्यों हो जाता है, इसका बचाव कैसे करें और अस्थमा के जो बढ़ावा देने वाले ट्रिगर है उससे हम कैसे पहचाने, उसको पहचान कैसे करें और उससे हम दूरियां बनाएं ताकि ये बीमारी हम पर हावी नहीं हो। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज आमंत्रित हैं सीनियर कंसल्टेंट और पुलमोनोलॉजिस्ट डॉक्टर स्वाति शरण। स्वाति मैडम, स्वागत है। सबसे पहले तो हम ये जानें साधारण बोलचाल की भाषा में कि अस्थमा क्या है।
3: नमस्कार श्रोताओं, अस्थमा एक सांस की नलियों का हाइपर रेस्पॉन्सिव स्टेट है। बीमारी नहीं कह सकते इसको, ये एक रेस्पॉन्स है शरीर का सांस की नलियों का, जिसमें ये कुछ ट्रिगर्स के प्रति हाइपर रेस्पॉन्सिव हो जाता है, मतलब अत्यधिक संवेदनशील हो जाता है, जिससे वो ट्रिगर का जब एक्सपोजर होता है तो सांस की नलियां सिकुड़ने लगती है। सिकुड़ने लगती हैं तो आवाज आने लगती है छाती से, उनकी सीटी जैसी आवाजें आएंगी, खांसी होगी जो ज्यादातर सुबह सुबह या रात में होगी, जो कि एक अत्यधिक एलर्जी का ही रेस्पॉन्स है। अगर नाक की एलर्जी होती है तो नाक से पानी, छींके, नाक बंद होना, ये सब सिम्टम्स उसके अंदर आने लगते हैं। तो हमको ये पहचानना होगा कि कौन से ऐसे ट्रिगर्स हैं, कौन से ऐसी चीजें हैं, तत्व है जिनसे अस्थमा बढ़ता है। जैसे आप देख सकते हैं घर के अंदर मुख्यतः जो डस्ट माइट्स होते हैं, जो पर्दे, कालीन, इसमें डस्ट होते हैं, उसमें छोटे छोटे कीटाणु होते हैं जिसको डस्ट माइट्स बोलते हैं, ये सबसे ज्यादा एलर्जेनिक सोर्स है। दूसरा, घर में जो हम पेट्स पालते हैं, कुत्ते बिल्ली, उनके शरीर में डैंडर्स होते हैं, सबसे कॉमनेस्ट ट्रिगर्स हैं जो अस्थमा के सिम्टम्स को बढ़ाते हैं। दूसरे, हम घर में जो मच्छर मारने वाले कॉयल जलाते हैं, कोई भी स्ट्रांग परफ्यूम यूज करते हैं, घर में छौंका लगता है, या घर में आप सफाई करें, कोई बहुत ज्यादा धूल वाली जगह होती है, आप सफाई करते हैं उन जगहों की, तो अचानक से आपकी खांसी या सांस फूलना बढ़ जाता है। तो ये सब ट्रिगर्स हैं घर के अंदर। घर के बाहर आपके परागकण जब उनके संपर्क में आते हैं, या मौसम अचानक से, रांची का मौसम तो ऐसा है जो अचानक से बदलता है, सुबह सुबह और शाम का टेम्परेचर इतना ज्यादा फ्लक्चुएट करता है दिन के टेम्परेचर से, जब ये ठंडी हवा, जब जो फ्लक्चुएटिंग हवा जो सांस की नलियों में जाती है, तो यही सांस की नलियां उस ट्रिगर के संपर्क में जब आती है तो सिकुड़ती है और अस्थमा के सिम्टम्स प्रोड्यूस करती है। तो वैसे पेशेंट पूरे साल बीमार नहीं रहेगा, एक ट्रिगर के संपर्क में आएगा तभी ये सिम्टम्स बढ़ेंगे और पेशेंट को उपचार करने की जरूरत पड़ेगी।
2: जी, तो अस्थमा को प्रभावित करने वाले जो ट्रिगर है उसके संपर्क में आने से अस्थमा का बीमारी शुरू हो जाता है, अस्थमा का अटैक शुरू हो जाता है। यदि ये उस कारक तत्व है जो चीज प्रभावित करती है उससे हम दूरी बना लेते हैं तो बीमारियां से हम भी दूर हो जाते हैं। स्वाति मैडम, अस्थमा और एलर्जी क्या अंतर है दोनों?
3: अस्थमा एक्चुअली मुख्यतः एक एलर्जिक डिसऑर्डर ही है, लेकिन एलर्जी को अगर हम एक ब्रॉड टर्म में जानेंगे तो एलर्जी शरीर का रेस्पॉन्स है, अत्यधिक रेस्पॉन्स, जो भी अंग हमारा इफेक्ट होता है उसकी एलर्जी हमको दिखती है तो हम एलर्जिक डिसऑर्डर्स बोलते हैं। जैसे हम अगर नाक की एलर्जी है तो नाक से पानी आएगा, छींके आएगी, नाक बंद हो सकता है, नाक में खुजली, इसको एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं। अगर साइनस की एलर्जी होगी तो बार बार हमको गला साफ करने की दिक्कत, नाक बंद करने की दिक्कत, खांसी होने की दिक्कत, ये सारे साइनस की एलर्जी के लक्षण हैं। जब हम सांस की एलर्जी में आ जाते हैं तो यही एलर्जिक फॉर्म हमको मिलता है, जैसे खांसी होने लगती है सुबह सुबह या रात में, सांस की दिक्कत होती है, या छाती से सीटी जैसी आवाजें आती है, ये सारी सांस की नलियों की एलर्जी के लक्षण है। तो एलर्जी शुरू नाक से अगर रेस्पिरेटरी एलर्जी की अगर हम बात करें, नाक से शुरू होती है और सांस में वो पूरा पाथवे फॉलो करता है। तो कहीं पे भी अगर एलर्जी हो, नाक हो, साइनस हो या सांस हो, उसके पूरे लाइफ टाइम में ये तीनों सिस्टम एक साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं या तो एक एक करके इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो अगर कोई पेशेंट एलर्जिक राइनाइटिस का हमारे पास आता है तो हम उसको ये कह के नहीं छोड़ सकते कि तुमको सिर्फ नाक का प्रॉब्लम है, सांस का एलर्जी कभी लाइफ में नहीं हो सकता है। इसलिए हम उसको पहले ही इवैल्यूएट करते हैं और उसको बता के रखते हैं कि सांस की एलर्जी भी आपके अंदर हो सकती है। अगर ये सिम्टम्स होते हैं तो आपको संपर्क करना है, उसका इलाज करना है।
2: जी, अब इलाज की बात करें स्वाति मैडम, बचाव क्या है? आपने बताया कि जो एलर्जी का ट्रिगर है उससे हम दूरियां बनाएं, उसको हम पहचाने। अब इस तरह की बीमारी हो जाती है, अस्थमा हो जाता है, हम खांसने लग जाते हैं, नाक चलनी शुरू हो जाती है, तो कैसे इलाज करवाएं इसका?
3: देखिए, सबसे पहले तो पल्मोनोलॉजिस्ट के संपर्क में आके आपको इसका डायग्नोसिस बनाना है। करेक्ट डायग्नोसिस अगर टाइम पे, समय पे जल्दी होता है तो जो सांस की नलियां बार बार जो सिकुड़ती है फैलती है, सिकुड़ती है फैलती, जब भी ट्रिगर आता है सिकुड़ जाती है, फिर धीरे धीरे जब ट्रिगर का एक्सपोजर जाने लगता है तो वो फैल भी जाती है, नॉर्मल भी हो जाती है। इसलिए मरीज पूरा साल बीमार नहीं रहता, उस ट्रिगर के एक्सपोजर में ही बीमार फील करता है। तो जो ये सिकुड़न और फैलावट जो सांस की नलियों में होती है, अगर ये बार बार रिपीटेड हर मौसम के बदलने पे उसको होने लगता है तो सांस की जो नली में जो मसल होता है वो मोटा होने लगता है। जैसे हम जिमिंग करते हैं तो मसल ज्यादा एक्ट करता है, मसल ज्यादा वर्क करता है तो मसल मोटा हो जाता है। उसी तरह से सांस की नलियां भी का भी जो मसल होता है अगर वो मोटा हो जाता है तो फिर वो जो इरिवर्सिबल होता है, जो मतलब उसका जो लचीलापन होता है वो चला जाता है और तब जो है ये एक्चुअली एक बीमारी का रूप ले लेती है और तब जो है इसका ट्रीटमेंट हो सकता है कि आपको लाइफ लॉन्ग लेना पड़ जाए। तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि मरीज का जो सांस की नलियों का जो लचीलापन है इसको रीमॉडल्ड होने से पहले ही उसको पकड़ लिया जाए ताकि उसको एक नॉर्मल जिंदगी दी जाए जा सके। जहां पे इनहेलर्स अगर हम शुरू भी करते हैं तो एक हमें मौका मिलता है जहां पे हम उसको धीरे धीरे इनहेलर कम करते हुए बंद करने का भी हमें ऑप्शन मिलता है।
2: तो इसका बचाव है और व्यक्ति ठीक भी हो सकता है। आवश्यकता इस बात की है कि समय रहते इसका इलाज कराया जाए। किन किन बातों का ख्याल रखा जाए, खासकर घर की जो महिलाएं हैं जो साफ सफाई में व्यस्त रहती हैं, इससे रूबरू हो जाती हैं और खांसी उनकी शुरू हो जाती है?
3: ज्यादातर मरीज हमारे पास जब आते हैं तो उनको खुद ही पता होता है कि किन चीजों से उनकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। जैसे कुछ पेशेंट्स बोलते हैं कि जब वो झाड़ू लगाते हैं या छौका लगाते हैं तो उनको अचानक से छींकें आनी शुरू हो जाती है और खांसी भी तेज हो जाती है। तो जब ये सब काम करना तो डेली का काम है तो इसको तो हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन हम कैसे अवॉइडेंस करेंगे? हम या तो उस दौरान मास्क यूज कर सकते हैं या हम अपने अपने किसी और को बोल सकते हैं कि स्पेशली जो छौंका लगाने का काम है वो अगर कोई और कर दे, हमें मदद कर दे, तो वो जो ट्रिगर उस वक्त उसके संपर्क में जो आएगा वो हम उससे बच सकते हैं। घर में अगर पालतू जानवर है और आपको पता है कि आप एलर्जी और अस्थमा के मरीज हैं तो आपको उन जानवरों को, स्पेशली कुत्ते और बिल्ली, इनको तुरंत हटाना चाहिए। घर में कोई सीलन वाली जगह होती है उसको आप ठीक करवाइए। घर में कोई भी ऐसा जगह जो सफाई नहीं होता, जहां पे डस्ट माइट्स जमा होते जाते हैं, वो सारे जगहें आपके लिए खतरनाक हो सकता है। तो ये सारे बचाव कर सकते हैं। खाने की चीजों में आप विटामिन सी वाले सोर्सेज वाले फूड खा सकते हैं। आप ऑरेंज, लेमन, संतरा, नींबू, इन सब का प्रयोग करिए। डेली बेसिस पे आप करेंगे क्योंकि हमारा एक डेली रिक्वायरमेंट होता है विटामिन सी का। अगर आप खाने की चीजों से उसको पूरा करते रहेंगे तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आपके कम होंगे। थोड़ा प्रोटीन इनटेक आप बढ़ाएंगे तो उससे भी आपके रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कम होते हैं। तो ये सारी चीजें बचाव कर सकते हैं आप।
2: बहुत लोग ठंडी चीजों का भी सेवन करते हैं, शीतल पेय पदार्थ का इस्तेमाल कर लेते हैं, ये भी बहुत हद तक जिम्मेदार हो जाता है इन सब चीजों के लिए।
3: मरीज हमें पूछते हैं कि हम क्या क्या चीजें नहीं खाएं, तो और खाने की चीजों से वो शुरू करते हैं कि हम बैगन नहीं खाएं, ये नहीं खाएं, तो हम उनको बस इतना ही बोलते हैं कि आपको ठंडा और खट्टा चीज नहीं खाना है, बाकी आप सारी चीजें खा सकती है, अनलेस कि आपको कोई चीज ऐसे खाने से आपको ऐसा लग रहा है कि शरीर में दाने आ जा रहे हैं, खुजली शुरू हो जा रही है या आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। जैसे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनको अंडे से और प्रॉन से उनको एलर्जी हो सकती है, जहां पे डायरेक्ट सांस में इफेक्ट करते हैं, वो सारी चीजें अगर आपको कभी लाइफ में एक बार भी होता है तो वो पूरी तरह से वर्जित कर देना चाहिए, क्योंकि वो जानलेवा हो जाता है।
2: तो बड़ी अच्छी आज चर्चा हुई, इस अस्थमा का आप बचाव कर सकते हैं और पहचानिए कि किस चीजों से आपको ट्रिगर हो रहा है, और जब पहचान जाते हैं तो उसे आप दूरियां बनाइए और इसका बचाव कीजिए, और खान पान में हेल्दी फूड का सेवन करें और शीतल पेय पदार्थों से दूरियां बनाएं, तो इस बीमारी से आप कोसों दूर हो सकते हैं। डॉक्टर स्वाति शरण पल्मोनोलॉजिस्ट, आज आप इस कार्यक्रम में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक, कल एक फिर नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार,
3: धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा के अंतर्गत अस्थमा के कारण और बचाव के बारे में डॉक्टर स्वाति शरण से। उनके साथ बातचीत कर रहे थे संजीव कुमार लाल।

0: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब समय हो चला है फिल्मी गीतों के कार्यक्रम सुबह सुरीली का, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुबह सुरीली थोड़ी ही देर में।
1: जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान, जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुँचाते।

0: से जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: नमस्कार श्रोताओं, सुबह की ताजगी, ठंडी हवाओं की खुशबू और साथ में फिल्मी गीतों का साथ, इससे बेहतर दिन की शुरुआत और क्या हो सकती है। आइए इस सुनहरी सुबह की पहली किरण के साथ हम और आप मिलकर कुछ ऐसे गीत सुने जो दिल को सुकून दे और पूरे दिन को रोशन कर दे। तो पेश है आपका अपना कार्यक्रम सुबह सुरीली और मैं हूँ आपकी अपनी रेडियो सखी अर्चना। श्रोताओं, प्यार की मिठास हो और उसमें थोड़ी सी नोकझोंक ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यही नटखट अंदाज लेकर आया है फिल्म ज्वेल थीप का ये सदाबहार गीत। मोहम्मद रफी और आशा भोसले की प्यारी जोड़ी की आवाजों में सुनिए ये गीत।

कभी कभी जुदाई का ख्याल भी दिल को बेचैन कर देता है। रफ़ी साहब की आवाज़ में ये गीत उस तड़प और मोहब्बत को बखूबी बयां करता है। पेश है फिल्म बम्बई का बाबू का ये गीत जो आज भी दिलों को छू जाता है। इस गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत से सजाया है एसटी बर्मन ने।

श्रोताओं, जब दो दिल एक दूसरे के करीब हो तो जुदाई का हर पल मुश्किल लगता है। साहिर लुधियानवी के बोल और जयदेव का संगीत इस गीत को अमर बना दिया है। रफ़ी साहब और आशा भोसले की आवाज़ों में सुनिए फिल्म हम दोनों से ये खूबसूरत गीत।

प्यार अगर सच्चा हो तो ज़िंदगी की हर मुश्किल आसान हो जाती है। यही खूबसूरत एहसास बयां करता है फिल्म प्यासा सावन का ये सदाबहार गीत। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की जुगलबंदी ने इस गीत को हमेशा के लिए अमर बना दिया है। आइए सुनते हैं प्यासा सावन का ये गीत, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोताओं, खुशियों का कोई भी मौका हो, शादी ब्याह का जश्न हो या कोई खास मिलन, यह गीत समा को बेहद खूबसूरत बना देता है। मुकेश की आवाज़ ने इस गीत को और भी खास बना दिया है। आइए सुनते हैं फिल्म मिलन का ये गीत, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोताओं, कुछ गाने वक्त के साथ पुराने नहीं होते बल्कि और भी निखर जाते हैं, जैसे पुराने इत्र की खुशबू। ऐसा ही एक गीत है जो आज भी दिलों को छू जाता है, फिल्म बरसात का ये गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मुकेश ने। गीतकार है शैलेंद्र और संगीतकार है शंकर जयकिशन।

श्रोताओं, आज का ये मधुर सुबह अब अपने सफ़र पर निकल पड़ी है और हमें भी आपसे विदा लेना होगा। उम्मीद है हमारे साथ गुजारे ये लम्हे और ये गीत आपके दिन को और भी खुशनुमा बना देंगे। फिर मिलने के वादे के साथ दीजिए अपनी रेडियो से की अर्चना को विदा। खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें।

0: अभी आप आनंद ले रहे थे कार्यक्रम सुबह सुरीली के अंतर्गत फिल्मी गीतों का। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है गांधी कथा भाग 69।
1: आकाशवाणी का रांची केंद्र है, प्रस्तुत है कार्यक्रम गांधी कथा। संकलन और प्रस्तुति है गौरव शिखर राय की, वह वाचन स्वर है अवनीश कुमार सिन्हा का।

गांधीजी ने देश वापसी के उपरांत भ्रमण एवं देशवासियों से मिलने की नीति अपनाई, ऐसा उनके पथ प्रदर्शक स्वर्गीय गोपाल कृष्ण गोखले का निर्देश भी था। भ्रमण के दौरान उन्हें देश में मौजूद अव्यवस्था कुरीतियों का परिचय तो मिला ही, इस देश के अंदर व्याप्त एक राष्ट्र की आत्मा भी दिखी।

प्रस्तुत है गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग के कुछ अंश। स्वयं गांधी जी के शब्दों में उनकी आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग से। मेरा जीवन व्रतों की नींव पर रचा हुआ है, इसलिए मैंने कोई कठिन व्रत लेने का निश्चय किया। मुझे उस अनावश्यक परिश्रम की याद आई जो कलकत्ते और रंगून में यजमानों को मेरे लिए उठाना पड़ा था, इसलिए मैंने आहार की वस्तुओं की मर्यादा बांधने और अंधेरे से पहले भोजन करने का व्रत लेने का निश्चय किया। मैंने देखा कि यदि मैं यजमानों के लिए मैं भारी असुविधा का कारण बन जाऊंगा और सेवा करने के बदले हर जगह लोगों को मेरी सेवा में ही उलझाए रखूंगा, अतएव 24 घंटों में 5 चीजों से अधिक कुछ न खाने और रात्रि भोजन के त्याग का व्रत तो मैंने ले ही लिया, दोनों की कठिनाई का पूरा विचार कर लिया। बीमारी की दवा के रूप में बहुत सी चीजें लेना या न लेना, दवा की गिनती खाने की वस्तुओं में करना या न करना, इन सब बातों को सोच लिया और निश्चय किया कि खाने की कोई भी पदार्थ में 5 से अधिक न लूंगा। इन दो व्रतों को लिए अब 13 वर्ष हो चुके हैं। इन्होंने मेरी काफी परीक्षा की है, किंतु जिस प्रकार की परीक्षा की है उसी प्रकार ये व्रत मेरे लिए काफी ढाल रूप भी सिद्ध हुए हैं। मेरा यह मत है कि इन व्रतों के कारण मेरा जीवन बढ़ा है और मैं मानता हूं कि इनकी वजह से मैं अनेक बार बीमारियों से बच गया हूं। जब मैं पहाड़ से दिखने वाले महात्मा मुंशी राम जी के दर्शन करने और उनका गुरुकुल देखने गया तो मुझे वहां बड़ी शांति मिली। हरिद्वार के कोलाहल और गुरुकुल की शांति के बीच का भेद अस्पष्ट दिखाई देता था। महात्मा ने मुझे अपने प्रेम से नहला दिया। ब्रह्मचारी मेरे पास से हटते ही न थे। रामदेव जी से भी उसी समय मुलाकात हुई और उनकी शक्ति का परिचय मैं तुरंत पा गया। यद्यपि हमें अपने बीच कुछ मतभेद का अनुभव हुआ, फिर भी हम परस्पर स्नेह की गांठ से बंध गए। गुरुकुल में औद्योगिक शिक्षा शुरू करने की आवश्यकता के बारे में मैंने रामदेव और दूसरे शिक्षकों के साथ मैंने काफी चर्चा की। मुझे गुरुकुल छोड़ते हुए दुख हुआ। मैंने लक्ष्मी झूले की तारीफ बहुत सुनी थी। बहुतों ने मुझे सलाह दी कि ऋषिकेश गए बिना मैं हरिद्वार न छोड़ू। मुझे वहां पैदल जाना था, इसलिए एक मंजिले ऋषिकेश की और दूसरी लक्ष्मण झूले की थी। ऋषिकेश में अनेक सन्यासी मुझसे मिलने आए थे। उनमें से एक को मेरे जीवन में बड़ी दिलचस्पी पैदा हुई। फिनिक्स मंडल मेरे साथ था। उन सबको देखकर उन्होंने अनेक प्रश्न पूछे। हमारे बीच धर्म की चर्चा हुई। उन्होंने देखा कि मुझ में धर्म की तीव्र भावना है। मैं गंगा स्नान करके आया था, इसलिए शरीर खुला था। मेरे सिर पर न शिखा और जनेऊ न देखकर उन्हें दुख हुआ और उन्होंने मुझसे कहा, आप आस्तिक होते हुए भी जनेऊ और शिखा नहीं रखते हैं, इससे हमारे समान लोगों को दुख होता है। ये दो हिंदू धर्म की बाह्य संज्ञाएं हैं और प्रत्येक हिंदू को इन्हें धारण करना चाहिए। लगभग 10 साल की उम्र में पोरबंदर में ब्राह्मणों के जनेऊ में बंधी हुई चाबियों की झंकार सुनकर मुझे उनसे ईर्ष्या होती थी। मैं सोचा करता था कि झंकार करने वाली कुंजियां जनेऊ में बांध कर मैं भी घूमूं तो कितना अच्छा हो। उन दिनों काठियावाड़ के वैश्य परिवारों में जनेऊ पहनने का रिवाज नहीं था, पर पहले 3 वर्णों को जनेऊ पहनना चाहिए, इस आशय का नया प्रचार चल रहा था। उसके फलस्वरूप गांधी कुटुंब के कुछ व्यक्ति जनेऊ पहनने लगे थे। जो ब्राह्मण हम 2-3 भाइयों को राम रक्षा का पाठ सिखाते थे, उन्होंने हमें जनेऊ पहनाया और अपने पास कुंजी रखने का कोई कारण न होते हुए भी मैंने 2-3 कुंजियां उसमें लटका ली।

के टूट जाने पर उसका मुंह उतर गया था या नहीं सो तो याद नहीं है, पर मैंने नया जनेऊ नहीं पहना। बड़ी उम्र होने पर हिंदुस्तान और दक्षिण अफ्रीका में भी दूसरों ने मुझे जनेऊ पहनाने का प्रयत्न किया था, पर मेरे ऊपर दलीलों का कोई असर न हुआ था। यदि शुद्ध जनेऊ न पहन सके तो दूसरे वर्ण क्यों पहने, जिस ब्रह्म वस्तु की प्रथा हमारे कुटुंब में नहीं थी उसे आरंभ करने का मुझे एक भी सबल कारण नहीं मिला था। मेरा जनेऊ पहनने से कोई विरोध नहीं था, परंतु उसे पहनने का कोई कारण नहीं दिखाई देता था। वैष्णव होने के कारण मैं कंठी पहनता था, सिखा तो गुरुजन हम भाइयों के सिर पर रखवाते ही थे, पर विलायत जाने के समय मैंने इस शर्म के मारे सिखा काट दी थी कि वहां सिर खुला रखना होगा। गोरे सिखा को देखकर हंसेंगे और मुझे जंगली समझेंगे। मेरे साथ रहने वाले मेरे भतीजे छगनलाल गांधी दक्षिण अफ्रीका में बड़ी श्रद्धा से सिखा रखते थे। यह सिखा उनके सार्वजनिक काम में बाधक होगी। इस भ्रम के कारण मैंने उनका मन दुखाकर भी उसे कटवा दिया था। यूं सिखा रखने में मुझे शर्म लगती थी। मैंने स्वामी जी को उपयुक्त बातें कह सुनाई और कहा, मैं जनेऊ तो धारण नहीं करूंगा। जिसे न पहनते हुए भी असंख्य हिंदू हिंदू मानते हैं, उसे पहनने की मैं अपने लिए कोई जरूरत नहीं देखता। फिर जनेऊ धारण करने का अर्थ है दूसरा जन्म लेना, अर्थात स्वयं संकल्प पूर्वक शुद्ध बनना, ऊर्ध्वगामी बनना। आजकल हिंदू समाज और हिंदुस्तान दोनों गिरी हालत में है, उसमें जनेऊ धारण करने का हमें अधिकार ही कहाँ है। हिंदू समाज को जनेऊ का अधिकार तभी हो सकता है जब वह अस्पृश्यता का मैल धो डाले, ऊंच नीच की बात भूल जाए, जड़ जमाए हुए दूसरे दोषों को दूर करे और चारों ओर फैले हुए अधर्म तथा पाखंड का अंत कर दे। इसलिए जनेऊ धारण करने की आपकी बात मेरे गले नहीं उतरती, किंतु शिखा के संबंध में आपकी बात मुझे अवश्य सोचनी होगी। शिखा तो मैं रखता था, लेकिन उसे मैंने शर्म और डर के मारे ही काट डाला है। मुझे लगता है कि शिखा धारण करनी चाहिए। मैं इस संबंध में अपने साथियों से चर्चा करूंगा। स्वामी जी को जनेऊ के बारे में मेरी दलील अच्छी नहीं लगी। जो कारण मैंने न पहनने के लिए दिए वे उन्हें पहनने के पक्ष में दिखाई पड़े। जनेऊ के विषय में ऋषिकेश में मैंने जो विचार प्रकट किए थे वे आज भी लगभग उसी रूप में कायम है। जब तक अलग अलग धर्म मौजूद है तब तक प्रत्येक धर्म को किसी विशेष बाह्य चिन्ह की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन जब बाह्य संज्ञा लेकर केवल आडंबर बन जाती है अथवा उसे धर्म को दूसरे धर्म से अलग बताने के काम आती है तब वह त्याज्य हो जाती है। मैं नहीं मानता कि आजकल जनेऊ हिंदू धर्म को ऊपर उठाने का साधन है, इसलिए उसके विषय में मैं तटस्थ हूँ। शिखा का त्याग स्वयं मेरे लिए लज्जा का कारण था, इसलिए साथियों से चर्चा करके मैंने उसे धारण करने का निश्चय किया। अब हमें लक्ष्मण झूले की ओर चलना चाहिए। ऋषिकेश और लक्ष्मण झूले के प्राकृतिक दृश्य मुझे बहुत भले लगे। प्राकृतिक कला को पहचानने की पूर्वजों की शक्ति के विषय में और कला को धार्मिक रूप देने की उनकी दीर्घ दृष्टि के विषय में मैंने मन ही मन अत्यंत आदर का अनुभव किया, किंतु मनुष्य की कृति से चित्त को शांति नहीं मिली। हरिद्वार के तरह ऋषिकेश में भी लोग रास्तों को और गंगा के सुंदर किनारों को गंदा कर देते थे। गंगा के पवित्र जल को दूषित करने में भी उन्हें किसी प्रकार का संकोच न होता था। पखाने जाने वाले दूर जाने के बदले जहां लोगों की आमद रफ्त होती वहीं हाजत रफा करने बैठ जाते थे। यह देखकर हृदय को बहुत आघात पहुंचा। वहां से भी अधिक दुखद दृश्य स्वर्ग आश्रम का था। टीन की चादरों की तबेले जैसी कोठरियों को स्वर्गाश्रम नाम दिया था। मुझे बताया गया कि ये साधकों के लिए बनवाई गई। उस समय उनमें शायद ही कोई साधक रहता था।
उनके पास बने हुए मुख्य भवन में रहने वालों ने भी मुझ पर अच्छा असर न डाला, पर हरिद्वार के अनुभव मेरे लिए अमूल्य सिद्ध हुए। मुझे कहाँ बसना और क्या करना चाहिए इसका निश्चय करने में हरिद्वार के अनुभव ने मेरी बड़ी मदद की।

गांधी जी ने देखा कि हमारे मुख्य लोग हिंदुस्तान का सफर करते थे, वे एक दूसरे की भाषा सीखते थे और उनके बीच कोई अंतर नहीं था। रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी और हरिद्वार की यात्रा ठहराने वाले लोग दूरदर्शी थे। वे जानते थे कि ईश्वर भजन घर बैठे भी होता है, लेकिन उन्होंने सोचा कि कुदरत ने हिंदुस्तान को एक देश बनाया है, इसलिए वह एक राष्ट्र होना चाहिए। इसलिए उन्होंने अलग अलग स्थान तय करके लोगों को एकता का विचार इस तरह दिया जैसा दुनिया में कहीं नहीं दिया गया है।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गांधी कथा। संकलन और प्रस्तुति थी गौरव शिखर राय की और वाचन स्वर था अवनीश कुमार सिन्हा का।
1: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात। कृपया प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा ने भारत में डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्था से हुए क्रांतिकारी परिवर्तन पर चर्चा की। सरकार ने वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल किया, सभी प्रतिबंध हटाए। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि के दान में हेराफेरी के मामले में 8 नामजद और कई अज्ञात लोगों के विरुद्ध पुलिस में मामला दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश किया। और महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में मैनचेस्टर में शेफाली वर्मा के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना आधारित क्रांति से अधिक सुलभ और किफायती बन रही वित्तीय सेवाओं पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि इस प्रयास से जीवन की सुगमता बढ़ रही है और बड़े पैमाने पर लोग सशक्त बन रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मिलकर प्रसन्नता हुई, जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता और वित्तीय समावेशन के लिए एक दीर्घकालिक वैश्विक आवाज भी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व स्तर पर साझेदार देशों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। महारानी मैक्सिमा संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता के रूप में भारत की यात्रा पर हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अपनी यात्रा के दौरान महारानी मैक्सिमा ने

विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों से वित्तीय सेवाओं के साथ उनके अनुभवों और वित्तीय व्यवस्था से संबंधित उनकी चुनौतियों के बारे में बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में भारत वैश्विक मंच के ब्रिटेन भारत सप्ताह कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। लखनऊ संभाग के आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता वाले विशेष जांच दल ने मंगलवार को सरकार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें कड़ी सिफारिशें की गई थीं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं। एक रिपोर्ट।
4: एलपीजी की आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है। यह बहाली एलपीजी आपूर्ति की स्थिति में हाल ही में हुए सुधार के बाद की गई है। इस बीच सरकार ने पीएनजी कनेक्टिविटी के विस्तार की प्रतिबद्धता दोहराई है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
3: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने कहा है कि ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है।
5: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संचार निदेशक जूली कोजेक ने कहा है कि मजबूत घरेलू मांग के समर्थन से भारत की अर्थव्यवस्था अनुकूल बनी हुई है। मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.5% की वृद्धि दर का अनुमान बरकरार रखा है। ये अनुमान अप्रैल में किए गए संशोधन के अनुरूप है। सुश्री कोजेक ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि आईएमएफ पश्चिम एशिया युद्ध विराम और होर्मुज डमरू मध्य के फिर से खुलने को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक मानता है। उन्होंने बताया कि तेल की कीमतें अपने उच्चतम स्तर से नीचे आ गई हैं, लेकिन युद्ध से पहले के स्तर से लगभग 10% अधिक हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
3: सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब 2,500 रूपये शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 1 जुलाई से प्रभावी होंगे।
6: पासपोर्ट की नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 5,000 रूपये होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 3,500 रूपये होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए ये लागत 6,000 रूपये होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 1,500 रूपये और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 2,000 रूपये है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी कराने के लिए 5,000 रूपये का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए 6,000 रूपये का शुल्क लिया जाएगा। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
3: गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृहमंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026-29 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय मेरा युवा भारत के माध्यम से आज राष्ट्रीय नशा मुक्ति प्रतियोगिता की शुरुआत करेगा। ये प्रतियोगिता नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर शुरू की जाएगी। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत इसे आयोजित किया जा रहा है। देशभर के युवा इस ऑनलाइन प्रतियोगिता में 15 जुलाई तक भाग ले सकेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा के उत्तर कुंजी को चुनौती देने के लिए विंडो खोल दी है। पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित की गई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी www.neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न 200 रूपये शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। चुनौती स्वीकार होने पर यह शुल्क वापस कर दिया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल नई दिल्ली में आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर वर्ष भर आयोजित कार्यक्रमों के समापन समारोह में भाग लिया। ये कार्यक्रम 1975 में घोषित आपातकाल के दमनकारी दौर को याद करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने की गतिविधियों की श्रृंखला का समापन समारोह था। इस अवसर पर श्री शेखावत ने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र पर आए संकट का उल्लेख किया।
7: 25 जून 1975 को जो भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास की सबसे वेदनापूर्ण दर्दनाक रात्रि थी, उस काल रात्रि को जब संविधान की आत्मा पर ग्रहण लगाने का प्रयास किया गया, न केवल संविधान के मुख पर कालिक पोतने का काम हुआ, अभी तो संविधान की आत्मा नागरिकों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी और नागरिकों के मौलिक अधिकार, उन सबको एक महत्वाकांक्षी शासक की अति महत्वाकांक्षा के चलते हुए स्थगित कर दिया गया।
3: कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उत्तराखंड के रुद्रपुर में खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम में किसानों से बातचीत करेंगे। इस दौरान श्री सिंह कृषि क्षेत्रों का दौरा करेंगे, फसलों की स्थिति का जायजा लेंगे और किसानों से कृषि संबंधी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि भूकंप से मृतकों की संख्या 188 हो गई है, जबकि 1520 लोग इसमें घायल हुए हैं।
8: वेनेजुएला में कल आए दो शक्तिशाली भूकंपों से चारों ओर तबाही का मंजर फैला हुआ है। मलबे में अभी भी 200 से अधिक लोग फंसे हुए हैं। राजधानी काराकास में भूकंप में लगभग 3000 परिवार बेघर हुए हैं। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपात स्थिति घोषित कर दी है। अगले आदेश तक कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियां स्थगित कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि भारत सभी प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। श्री मोदी ने वेनेजुएला को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की ओर से सहायता की पेशकश पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस मुश्किल घड़ी में यह भारत और वेनेजुएला के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाता है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
3: आज देश के विभिन्न हिस्सों में आशुराए मुहर्रम पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका के न्यू जर्सी में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर बड़ा उलटफेर करते हुए नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया है। इससे पहले आइवरी कोस्ट ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट दौर में जगह बनाई है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए। जवाब में भारत ने 17वें ओवर में 5 विकेट पर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
9: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। पंजाब केसरी ने प्रथम पृष्ठ पर सचित्र शीर्षक दिया है, वेनेजुएला में भूकंप से तबाही, 10,000 लोगों के मरने की आशंका, अब तक 200 से ज्यादा शव बरामद। नवभारत टाइम्स की खबर है, वेनेजुएला में डबल भूकंप, पत्र लिखता है लोगों को भूकंप से कुछ ही सेकंड पहले एंड्रॉयड फोन पर चेतावनी मिली थी। हिन्दुस्तान ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर वेनेजुएला का दर्द बयां किया है, भूकंप ने न केवल वेनेजुएला में भारी तबाही मचाई है बल्कि वैज्ञानिकों और नगर नियोजकों को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है। दुनिया में जिन क्षेत्रों में तीव्र भूकंप की आशंका है वहां विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। ऐसे इलाकों में ऊंची और कमजोर इमारतों से बचना चाहिए। श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले पर जनसत्ता के शब्द हैं, नकदी और कीमती सामान गिनने में शामिल 8 प्राथमिकी। दैनिक भास्कर ने पासपोर्ट नियम में संशोधन को सुर्खी बनाया है। पासपोर्ट के नियम बदले, 14 साल बड़ी फीस, 1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना 1,000 रूपये महंगा होगा। दैनिक जागरण की खबर है, पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, सरकार के दावे ने बढ़ाई एनआरसी की जरूरत, लोकसत्य ने भी सरकार का वक्तव्य दिया है, पासपोर्ट विदेश यात्रा का दस्तावेज। देशबंधु के शब्द हैं। एनसीईआरटी की किताब में आपातकाल का अध्याय शामिल, लोकतंत्र के सामने बड़ी चुनौती के रूप में किया गया है वर्णन।
3: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा ने भारत में डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्था में हुए क्रांतिकारी परिवर्तन पर चर्चा की। सरकार ने वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल किया, सभी प्रतिबंध हटाए। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि केदार में हेराफेरी के मामले में 8 नामजद और कई अज्ञात लोगों के विरुद्ध पुलिस में मामला दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi and Queen Maxima of Netherlands discuss India's digital public infrastructure-led revolution. Government restores commercial LPG supplies to pre-crisis levels, withdraws sectoral restrictions. FIR lodged against 8 named accused and several unidentified persons in connection with Ayodhya Ram Mandir donation case. IMF says India continues to be major driver of global economic growth despite economic impact of Iran conflict and higher energy prices. In football, Ecuador advanced to FIFA World Cup knockout stage, beating Germany 2-1 in New Jersey. And in cricket, Shefali Verma powers India to 5-wicket win over Bangladesh in Women's T20 World Cup in Manchester. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi met Queen Maxima of the Netherlands, the UN Secretary General's Special Advocate for Financial Health, in New Delhi yesterday. Mr. Modi stated that during the meeting, they discussed how India's digital public infrastructure-led revolution is making financial services more accessible and affordable, enhancing ease of living and empowering people at scale. The Prime Minister added that India remains committed to sharing its experience with partner countries across the world. Prime Minister Modi will be on a state visit to Seychelles from the 27th to 29th of this month to attend the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honour. Prime Minister last visited Seychelles in 2015. External Affairs Ministry said in a statement that a contingent of the Indian Defence Forces along with 2 Indian Navy ships will participate in the celebrations.

0: Coast also secured their place in the knockout stage for the first time with a comfortable 2-0 victory over Curaçao in Philadelphia today. Nicolas Pepe scored a dynamic double for Ivory Coast to end Curaçao's campaign on a disappointing note. Later, both Japan and Sweden stormed into the knockout round as they played a 1-1 draw in the Group F clash at the Dallas Stadium this morning. Japan will now face five-time champions Brazil in the round of 32. Meanwhile, Netherlands outclassed Tunisia 3-1 in Kansas City to top Group F and set up a round of 32 clash with Morocco. In the ICC Women's T20 World Cup, India defeated Bangladesh by 5 wickets in a Group A clash in Manchester, England last night. Opting to bat first, Bangladesh posted 136 for 8 in the stipulated 20 overs. With this win, India have 6 points in Group A from 3 wins and 1 loss. And now for a look at today's newspapers, it's over to Sarabjit Kaur.
1: Thank you, Anuja. Government lifts Iran war-linked curbs on commercial LPG, writes Hindustan Times. A headline in the Indian Express writes, from Sunday, India will resume tourist visas for Bangladesh nationals. Netra, India's airborne surveillance platform, gets final operational nod, states the Hindu. Sportspersons will now be allowed to carry javelins and bulky sports equipment on trains, even if they exceed the prescribed dimensions, according to the Railway Ministry, except pole vaults, informs the Pioneer. Another headline in the Pioneer writes, government expands QR code tracking to key drug categories to curb counterfeits. And finally, millions breathe easy. As the Times of India reports, CBSE students already in standards 7th to 9th with foreign language can keep their current combination till 10th. And with that, it's back to you, Anuja.
0: Thank you, Sarabjit. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi and Queen Maxima of Netherlands discuss India's digital public infrastructure-led revolution. Government restores commercial LPG supplies to pre-crisis levels, withdraws sectoral restrictions. FIR lodged against 8 named accused and several unidentified persons in connection with Ayodhya Ram Mandir donation case. IMF says India continues to be major driver of global economic growth despite economic impact of Iran conflict and higher energy prices. In football, Ecuador advanced to FIFA World Cup knockout stage, beating Germany 2-1 in New Jersey. And in cricket, Shefali Verma powers India to 5-wicket win over Bangladesh in Women's T20 World Cup in Manchester. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
3: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आराधना कुमारी। पहले मुख्य समाचार। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा, 30 जून से शुरू होगा विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान। 7 अक्टूबर को प्रकाशित होगी अंतिम मतदाता सूची। राज्यव्यापी नशा मुक्ति जागरूकता अभियान का समापन। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा, नशा मुक्त और स्वस्थ झारखंड सरकार का लक्ष्य। हाईकोर्ट ने रांची स्थित रिम्स की जमीन पर बाउंड्री वॉल निर्माण में आ रही बाधाओं को दूर करने का राज्य सरकार को दिया निर्देश। आज मनाया जा रहा है मुहर्रम। रांची, जमशेदपुर, धनबाद समेत राज्य भर में ताजिया जुलूस, मजलिस और करबला में होगा धार्मिक आयोजन। और मौसम विभाग ने आज गढ़वा, पलामू और चतरा जिले के कुछ हिस्सों में लू की आशंका, शेष 20 जिलों में बारिश और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी। और अब समाचार विस्तार से। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर विशेष गहन पुनरीक्षण की कार्ययोजना और भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 30 जून से 29 जुलाई तक बीएलओ घर घर जाकर गणना और इन्यूमेरेशन फॉर्म का वितरण करेंगे। सभी दावों और आपत्तियों के निष्पादन के बाद 7 अक्टूबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।
4: 30 जून से 29 जुलाई तक कार्यक्रम के संबंध में चर्चा हुई, साथ में उनका भी सहयोग अपेक्षित की गई थी ताकि वो इनोवेशन फेज के समय में साथ साथ में काम करने के समय कंकरेंट ऑडिट के माध्यम से पार्टिसिपेटिव मोड में पूरा तरफ से आपका बीएलए 2 का सहयोग में अच्छा से एक मतदाता सूची त्रुटि रहित निर्माण करने का सहयोग आग्रह किया गया था, वो भी आश्वासन दिया था।
3: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 2026 के दौरान फर्जी प्रमाण पत्रों के उपयोग को रोकने के लिए विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है। उन्होंने पाकुड़ जिले में फर्जी वेबसाइट के माध्यम से जन्म, जाति एवं अन्य दस्तावेज तैयार करने वाले गिरोह के खुलासे से संबंधित समाचार का संज्ञान लेते हुए ऐसे मामलों में त्वरित कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा है। रांची के शौर्य सभागार में मादक पदार्थों के दुरुपयोग के विरुद्ध चलाए गए 15 दिवसीय राज्यव्यापी जागरूकता अभियान का समापन हुआ। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य सरकार नशा मुक्त और स्वस्थ झारखंड के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए जागरूकता, खेलकूद, काउंसलिंग और सहभागिता को आवश्यक बताया तथा उपस्थित लोगों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। एडमिशन और टेंडर घोटाले में CID की टीम द्वारा पूछताछ के बाद रिम्स निदेशक डॉ. राजकुमार ने इस्तीफा दे दिया है। राज्य सरकार ने इनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और रिम्स के सर्जरी विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसर डॉ. दीपेंद्र कुमार सिन्हा को अगले आदेश तक कार्यकारी निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। डॉ. राजकुमार ने अपने इस्तीफे में स्वास्थ्य संबंधी कारणों और काम करने के लिए पर्याप्त माहौल नहीं मिलने का उल्लेख किया है। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची स्थित राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान की जमीन पर बाउंड्री वॉल निर्माण में आ रही बाधाओं को तत्काल दूर करने का राज्य सरकार को निर्देश दिया है। अदालत ने रांची के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को निर्माण कार्य के लिए पर्याप्त पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराने का भी आदेश दिया है। वहीं बोकारो की लापता 18 वर्षीय युवती के मामले में हाईकोर्ट ने कोलकाता स्थित CFSL से प्राप्त DNA जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया और राज्य सरकार को मामले की अद्यतन स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। रांची जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सहयोग से साइबर सुरक्षा पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। उद्घाटन करते हुए न्यायुक्त अनिल कुमार मिश्रा ने लोगों से साइबर ठगी से बचने के लिए सतर्क रहने की अपील की। वहीं CID की DSP नेहा बाला सिंह ने डिजिटल अरेस्ट, फर्जी वेबसाइट और ऑनलाइन ठगी से बचाव के उपायों की जानकारी दी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alert और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। आज देश भर में मनाया जा रहा है मुहर्रम। इस मौके पर मजलिश, ताजिया जुलूस और दुआओं का आयोजन किया जाएगा। प्रशासन की ओर से जुलूस मार्गों पर सुरक्षा, यातायात और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। इससे पूर्व कल मुहर्रम के दौरान शांति और विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए रांची पुलिस ने मेन रोड पर फ्लैग मार्च और व्यापक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। रांची में भारतीय जनता पार्टी महानगर जिला की ओर से संविधान हत्या दिवस के अवसर पर संगोष्ठी और लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह आयोजित किया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि आपातकाल लोकतंत्र का काला अध्याय था और नई पीढ़ी को इससे परिचित कराना आवश्यक है। कार्यक्रम में मीसा कानून के तहत जेल गए लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित किया गया।
5: देशवासी संविधान के हत्या दिवस के रूप में इसलिए मानते हैं क्योंकि देश में आपातकाल के नाम से जो जुल्म ढाया गया था, संविधान को तार तार किया गया था और देशवासी ने आत्मसात किया था, उसकी हत्या होते हुए लोगों ने देखा।
3: धनबाद पुलिस ने फरार गैंगस्टर प्रिंस खान के गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसके एक सहयोगी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि वह लंबे समय से प्रिंस खान गिरोह के संपर्क में था और गिरोह के निर्देश पर काम कर रहा था। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि रंगदारी के विवाद में एक रेलवे ठेकेदार पर फायरिंग की साजिश रची जा रही थी।
6: टीम के द्वारा सूचना के अनुसार प्रॉपर तरीके से रेड किया गया।

0: जैसे भी स्थिति रहेगी, क्योंकि थोड़ा सा गर्मी है, थोड़ा सा उमस है, फील लाइक टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा फील होगा। यही है कि 26 सेकंड हाफ से थोड़ा सा स्थिति में कुछ सुधार देखने को मिलेगा, और उसके बाद से हम लोग देखेंगे कि लास्ट जो जून का 2-3 दिन बचता है 28-29 तारीख से, और पहला हफ्ता जुलाई में वहाँ उम्मीद की जा रही है कि मानसून थोड़ा सा रिवाइव कुछ करेगा।
1: झारखंड के अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती प्रशिक्षक बबलू कुमार को भारतीय कुश्ती संघ ने भारतीय अंडर 15 ग्रीको रोमन कुश्ती टीम का प्रशिक्षक नियुक्त किया है। उनके नेतृत्व में भारतीय टीम 27 से 29 जून तक थाईलैंड में आयोजित होने वाली अंडर 15 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में हिस्सा लेगी। बबलू कुमार की नियुक्ति से झारखंड के खेल जगत में उत्साह का माहौल है। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य के लगभग सभी अखबारों ने वेनेजुएला में आए भूकंप से तबाही के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पारण परेड में शामिल होने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, पुलिसकर्मी के लिए बनेंगे अस्पताल व आवासीय विद्यालय। प्रभात खबर ने लिखा है, छापे के बाद रिम्स निदेशक का इस्तीफा, कहा अपराधी की तरह की गई पूछताछ। दैनिक भास्कर ने लिखा है, झारखंड में ठनके से 10 की मौत। दैनिक जागरण की सुर्खी है, मुहर्रम जुलूस से लौट रही ताश पार्टी पर चढ़ा ट्रक, 7 लोगों की मौत। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा, 30 जून से शुरू होगा विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान, 7 अक्टूबर को प्रकाशित होगी अंतिम मतदाता सूची। राज्यव्यापी नशा मुक्ति जागरूकता अभियान का समापन। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा, नशा मुक्त और स्वास्थ्य झारखंड सरकार का लक्ष्य। हाईकोर्ट ने रांची स्थित रिम्स की जमीन पर बाउंड्री वॉल निर्माण में आ रही बाधाओं को दूर करने का राज्य सरकार को दिया निर्देश। आज मनाया जा रहा है मुहर्रम। रांची, जमशेदपुर, धनबाद समेत राज्य भर में ताजिया जुलूस, मजलिस और करबला में होगा धार्मिक आयोजन। और मौसम विभाग ने आज गढ़वा, पलामू और चतरा जिले के कुछ हिस्सों में जताई लू की आशंका, शेष 20 जिलों में बारिश और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और FM 100.5 मेगा हर्ट्स पर। आज आपके साथ है रेडियो सखी अर्चना।

श्रोताओं आइए सुनते हैं कार्यक्रम लोकरंग के अंतर्गत लोकगीत संताली भाषा में। कलाकार हैं मिथुन सोरेन एवं साथी।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोकरंग के अंतर्गत संताली भाषा में लोकगीत। कलाकार थे मितेन सोरेन एवं साथी।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब समय हो चला है फिल्मी गीतों के कार्यक्रम रसरंजन का, तो थोड़ी ही देर में हम हाजिर होंगे अपने कार्यक्रम के साथ।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
4: बेटा,
5: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
4: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है।
6: चलो,
5: कहाँ
6: एडमिशन कराने? आता हुआ एक्टिव।
1: आरबीआई कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: नमस्कार श्रोताओं, संगीत जब दिल को छू ले तो जिंदगी का हर पल रस से भर जाता है। आज का ये खास सफर है रसरंजन, जहाँ फिल्मी गीतों के मीठे बोल और सुरीली धुनें आपके दिल को सुकून देंगी। तो आइए शुरू करते हैं ये मधुर सफर, और इस सफर में मैं हूँ आपकी अपनी रेडियो सखी अर्चना, जो लेकर आई है आपके लिए संगीत का रंग बिरंगा रस। श्रोताओं, प्यार की तड़प भी मीठी होती है और उसका दर्द होता है। इस एहसास को बखूबी शब्द दिए हैं नक्श लयालपुरी ने, और धुनों में पिरोया है संगीतकार खयाम ने। किशोर कुमार और आशा भोसले की जादुई आवाज़ ने इसे और भी खास बना दिया है। पेश है फिल्म दर्द का ये सदाबहार गीत।

श्रोता, जब स्टेज पर रोशनी हो, गाने की धुन हो और अमिताभ बच्चन का करिश्मा, तो नज़ारा ही कुछ और होता है। किशोर कुमार की दमदार आवाज़ और राजेश रोशन के संगीत ने

कश्मीर की वादियों की खूबसूरती और एक भोली सी कली का अंदाज, लता मंगेशकर की मधुर आवाज में यह गीत हमेशा ताजगी का एहसास दिलाता है। पेश है फिल्म जंगली का ये सुपरहिट गीत, जिसे लिखा है शैलेंद्र ने और संगीत से सजाया है शंकर जयकिशन ने।

श्रोताओं, प्यार का इजहार अगर नीले आसमान के तले हो तो उसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। महेंद्र कपूर ने इस गीत को और भी मोहक बना दिया है। लीजिए सुनिए फिल्म हमराज का ये अमर गीत, जिसकी धुन बनाई है रवि ने और शब्द रचना की है साहिल लुधियानवी ने।

खूबसूरत वादियाँ और सपनों जैसे रास्ते, जब इन्हें मोहब्बत का सहारा मिले तो ज़िंदगी और भी हसीन हो जाती है। आर डी बर्मन की संगीत, मजरू सुल्तानपुरी के बोल और रफ़ी साहब की आवाज़ ने इस गीत को और भी जादुई बना दिया है। आइए सुनते हैं फिल्म अभिलाषा का ये सदाबहार गीत है।

देशभक्ति और जज्बे से भरा यह गीत हमें याद दिलाता है कि जिंदगी की असली कीमत देश की रक्षा में है। समीर के शब्द और जतिन ललित का संगीत दिलों को छू जाता है। सुनिए फिल्म सरफरोश का ये गीत

दोस्तों, आज का ये मधुर सफर यही समाप्त होता है। उम्मीद है यह संगीतमय सफर आपके दिन को और भी खुशनुमा बना देगी। अब दीजिए अपनी रेडियो सखी अर्चना को विदा। अगली मुलाकात तक मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और जीवन में रस रंजन बनाए रखिए।

अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसरंजन। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं।

अब आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत में राग तोड़ी में ख्याल गायन विलंबित रचना एक ताल में निबद्ध है। कलाकार है राणा झा, तबले पर संगत दे रहे हैं कौशिक दास और हारमोनियम पर संचाली नाग।

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत में राग तोड़ी में ख्याल गायन, विलंबित रचना एक ताल में निबद्ध थी। कलाकार थे राणा झा, तबले पर संगत दे रहे थे कौशिक दास और हारमोनियम पर संचाली नाग।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आज मुहर्रम है जो कि इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है। मुहर्रम को इस्लाम के चार पवित्र महीनों में से एक माना जाता है, लेकिन जब भी मुहर्रम का नाम आता है तो सबसे पहले याद आती है कर्बला की वह ऐतिहासिक घटना जिसने पूरी दुनिया को सत्य, न्याय, धैर्य और मानवता का अमूल्य संदेश दिया। मुहर्रम का दसवां दिन आशूरा कहलाता है। इसी दिन कर्बला की धरती पर हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों ने अन्याय के सामने झुकने के बजाय सत्य और इंसाफ का मार्ग चुना। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और मानवता की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। श्रोताओं, कर्बला की कहानी केवल एक धार्मिक घटना नहीं, बल्कि यह हमें सिखाती है कि सत्य और न्याय के लिए संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता। कठिनाइयां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, यदि हमारे इरादे नेक हों और हमारा उद्देश्य मानवता की भलाई हो, तो वही सच्ची जीत होती है। मुहर्रम हमें आपसी भाईचारे, करुणा, धैर्य और सहनशीलता का भी संदेश देता है। यह समय आत्मचिंतन का है, अपने आचरण को बेहतर बनाने का है, दूसरों के प्रति संवेदनशील बनने का है और समाज में प्रेम, शांति और सद्भावना को बढ़ावा देने का है। देश के विभिन्न हिस्सों में इस अवसर पर लोग श्रद्धा और सम्मान के साथ इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हैं। कई स्थानों पर ताजिए निकाले जाते हैं और लोग उनके बलिदान को नमन करते हैं। यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि ऐसे अवसरों पर शांति, अनुशासन और आपसी सम्मान बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। श्रोताओं।

के समय में जब दुनिया को प्रेम, एकता और इंसानियत की सबसे अधिक आवश्यकता है, तब करबला का संदेश और भी प्रासंगिक हो जाता है। आइए हम यह संकल्प लें कि हम हमेशा सत्य का साथ देंगे, अन्याय का विरोध करेंगे और अपने व्यवहार से समाज में सद्भाव और भाईचारे को मजबूत बनाएंगे। मुहर्रम का यह पावन अवसर हम सभी के जीवन में शांति, सद्भाव, इंसानियत और नेक रास्ते पर चलने की प्रेरणा लेकर आए हैं।

हकदार हैं। चुनांचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी रोजा रखा और मुसलमानों को भी हुक्म दिया। तो रमजान के रोजे फर्ज होते हैं, पहले आशूरा का रोजा फर्ज था, बाद में ये नफिल हो गया, लेकिन इसकी फजीलत अब भी ये है कि ये साल भर के गुनाहों का कुफारा बन जाता है। वाकया करबला की सियासी व मजहबी महरकात। सन 60 हिजरी में आलिम इस्लाम में एक बड़ा मोड़ आया जब अमीर माविया रजी अल्लाह अन्हा की वफात के बाद उनके बेटे यजीद ने दमिश्क में हुकूमत संभाली। यहीं से खिलाफत का इस्लामी निजाम मलकियत यानी शाही निजाम में तब्दील होने लगा। यजीद का किरदार और इमाम हुसैन का मौकिफ। यजीद का तर्ज जिंदगी इस्लामी तालीमात के बरक्स था और एलानिया गुनाह, नाइंसाफी और शरीयत के पामाली कर रहा था। ऐसे में उसने तमाम इस्लामी शहरों के गवर्नरों को खत लिखा कि वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम समेत मदीना की अहम शख्सियात से इसकी बैत यानी वफादारी का हलफ लें। इमाम हुसैन, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाडले नवासे और इल्म तक्वा का पीकर थे, उन्होंने सोचा कि अगर उन्होंने यजीद जैसे फासिक व फाजिर की बैत कर ली तो क़यामत तक के लिए ये उसूल बन जाएगा कि इस्लाम में जुल्म अय्याशी का जायजा तस्लीम किया जाता है। आपने तारीखी जुमला फरमाया, मुझ जैसा शख्स यजीद जैसे शख्स की बैत नहीं कर सकता। कूफा का सफर। जब आपने बैत से इनकार किया तो आप मदीना से मक्का तशरीफ ले गए। उसी दौरान कूफा यानी इराक के लोगों ने आपको हजारों खतूत लिखे कि हमारा कोई इमाम नहीं है, आप तशरीफ लाइए ताकि हम आपकी क़यादत में किताब व सुन्नत पर अमल कर सकें। इमाम हुसैन ने अपने चचाजाद भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील को हालात का जायजा लेने कूफा भेजा। कूफियों ने पहले तो मुस्लिम बिन अकील के हाथ को पर बैत की, लेकिन बाद में यजीद के नए गवर्नर बिन ज़ियाद के खौफ और रिश्वत के लालच में आकर उनका साथ छोड़ दिया और हजरत मुस्लिम बिन अकील को बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। इमाम हुसैन इस गद्दारी से बेखबर मक्का से कूफा के लिए रवाना हो चुके थे। मुहर्रम 61 हिजरी को इमाम हुसैन का काफिला, जिस में उनके अहल खाना, खवातीन, छोटे बच्चे शामिल थे, इराक के एक बंजर इलाके करबला पहुँचे। यजीद दो फौज ने उन्हें वहीं रोक लिया। इब्ने ज़ियाद के हुक्म पर 7 मुहर्रम को इब्ने बिन साद ने दरियाए फरात पर पहरा बिठा दिया ताकि हुसैनी काफिले तक पानी की एक बूंद भी ना पहुँच सके। करबला की शदीद तपती हुई धूप, रेत की गर्मी और 3 दिन के भूख प्यास से बच्चों का बुरा हाल कर दिया। हजरत अब्बास अलमदार ने बच्चों के लिए पानी लाने की कोशिश की, लेकिन दुश्मनों ने उनके दोनों बाजू कलम कर दिए और मशकीजा तीरों से छलनी होने के बाद शहीद हो गए। आशूरा की रात और जानसारी का मंजर। मुहर्रम की शाम को दुश्मन ने हमले का इरादा किया, लेकिन इमाम हुसैन ने एक रात की मोहलत मांगी ताकि वो अपने रब की इबादत कर सकें। उस रात आपने चिराग बुझा दिया और अपने साथियों से फरमाया, दुश्मन सिर्फ मेरा खून चाहता है, आप में से जो जाना चाहे रात के अंधेरे का फायदा उठाकर निकल जाए। लेकिन तारीख गवाह है कि चिराग दोबारा रोशन हुआ तो कोई एक शख्स भी अपनी जगह से नहीं हिला था। सब ने कहा, हम आप पर अपनी जानें कुर्बान कर देंगे। मुहर्रम की सुबह मार्का शुरू हुआ। एक तरफ यजीद का 22,000 से जायद का मुसलह लश्कर था और दूसरी तरफ इमाम हुसैन के सिर्फ 72 जानसार थे। शहदाए अहले बैत का जज्बा। एक एक करके इमाम हुसैन के इंसार और अहले बैत मैदान में गए और बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। हजरत अली अकबर, इमाम हुसैन के 18 साल जवान बेटे, जिनकी शक्ल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मिलती थी, सीना पर बर्छी का फल खाकर शहीद हो गए। हजरत अली असगर, इमाम हुसैन के 6 माह के शीरखार बच्चे थे। जब इमाम हुसैन उन्हें मैदान में लाए और दुश्मन से कहा कि इस बच्चे को थोड़ा पानी पिला दो, तो हरमिला नामी तीरंदाज ने बच्चे की गर्दन पर तीर मारा और बच्चा बाप के हाथों में तड़प कर शहीद हो गया। इमाम हुसैन की शहादत। जब सब साथी शहीद हो गए तो इमाम आली मुकाम खुद मैदान में उतरे। आपने सच्चे मोहम्मदी शेर की तरह जंग की और दुश्मन की सफों को हिलाकर रख दिया। असर के वक्त जब आप जख्मों से चूर होकर घोड़े से जमीन पर गिरे तो आपने खुदा के हुजूर में सजदा किया। इसी हालत सजदा में शम्र ज़िल जूशन ने आपका सर मुबारक जिस्म से जुदा कर दिया। तारीख इंसान ने ऐसा सजदा कभी नहीं देखा जहाँ तलवारों के साये में, प्यास की शिद्दत में एक इंसान अपने पूरे खानदान को कुर्बान करके भी कह रहा हो, ऐ अल्लाह मैं तेरी रजा पर राजी हूँ। वाकई करबला महज एक जंग या खानदानी तनाज़ु नहीं था, बल्कि ये उसूलों की वो आलमगीर जंग थी जिसने क़यामत तक के लिए चंद अहम तरीन असबाक इंसानियत की झोली में डाल दिए। हुर्रियत और आज़ादी का पैगाम। इमाम हुसैन ने सिखाया कि किसी जुल्म और जाबिर के सामने सर झुकाने से बेहतर है कि सर कटा दिया जाए। यही वजह है कि गैर मुस्लिम रहनुमा जैसे महात्मा गांधी ने कहा,
تھا۔ میں نے کربلا کے مظلوم سے سیکھا کہ فتح کیسے حاصل کی جاتی ہے، اور نیلسن منڈیلا نے بھی امام حسین کی جدوجہد کو اپنے لیے مشعل راہ

0: खुद सहायता समूह की बहनें डिजिटल के जरिए हमसे लेन देन करती हैं, तो सिर्फ बिजनेस नहीं कर रही बल्कि देश के मुख्य धारा की तरक्की में अपना योगदान दे रही हैं।
1: सही कह रही हैं राजदा। आज ऑनलाइन तालीम, UPI, डिजी लॉकर, ई गवर्नेंस और मसनूई जहानत ने तरक्की के नए दरवाजे खोल दिए हैं। इल्म ताकत है और जदीद दौर में डिजिटल इल्म तरक्की की कुंजी भी है, लिहाजा जरूरी है कि हम नई टेक्नोलॉजी से फायदा उठाएं और अपने मुआशरे की तरक्की का जरिया भी बनाएं।
0: तो धीरे धीरे हम डिजिटल हो रहे हैं और आगे उम्मीद है कि साइंस और भी ज़्यादा तरक्की करे और हम और भी ज़्यादा जो भी चीज़ें पीछे छूट रही हैं उन्हें हम जल्दी से कवर अप करें। साथ ही हम बात करेंगे रोज़गार और कारोबार के नई उड़ान की। जब बात हुनर और तरक्की की हो तो सबसे बड़ी ज़रूरत होती है सही संसाधनों और सही सहयोगी की। हमारे बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जिनके पास काबिलियत है, जज्बा है, लेकिन पूंजी की कमी की वजह से वो अपने सपनों को उड़ान नहीं दे पाते हैं। ऐसे में उनके लिए उम्मीद की एक बड़ी किरण बनकर सामने आती है, यानी नेशनल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम।
1: राजदा, आपका मतलब है कौमी अकलियती तरक्की व मालियाती कॉरपोरेशन यानी NMDFC, है ना?
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: अकलियती तबकात की माशी तरक्की के लिए यह एक अहम इदारा है। राजदा, ये स्कीम नौजवानों, ख्वातीनों और हुनरमंद अफराद को रोजगार और कारोबार के लिए नई राहें फराहम कर रहा है। इसी पर मुझे इकबाल का एक बड़ा ही खूबसूरत सा शेर याद आता है कि खुदी को कर बुलंद इतना के हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना के हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है।
0: बहुत खूब।
1: जरूरत इस बात की है कि नौजवान सरकारी स्कीमों से वाकिफ हों और खुद इन्हिसारी की तरफ कदम बढ़ाएं, तभी ये तरक्की कर सकेंगे। सरकार की तो काफ़ी सारी स्कीमें हैं, योजनाएं हैं, हमें ज़रूरत है कि इन स्कीमों का किस तरह से हम फ़ायदा उठाएं।
0: बिल्कुल, सरकार ने कई योजनाएं इन्हीं बेरोजगार युवाओं के लिए लाई है ताकि वो बेरोजगार ना रहें और छोटा मोटा बिजनेस कर लें, नौकरी कर लें, स्किल डेवलपमेंट हो सके, तो बहुत ज़रूरी है इन योजनाओं से जुड़े रहना। और साथ ही हमारे इस प्रोग्राम में जुड़े रहने के लिए कुछ और भी ज़रूरी है शगुफ्ता।
1: हाँ, वो ज़रूरी है, मैं समझ रही हूँ आपका इशारा, नगमे की बात कर रही हैं आप।
0: तो चलिए देर नहीं करते और दोस्तों को सुनाते हैं ये प्यारा सा नगमा।

0: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्स और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। 10:30 हुए हैं और ये वक्त होता है आपके पसंदीदा कार्यक्रम जोहार रांची का। दोस्तों, मुस्कान वह रोशनी है जो खुद भी चमकती है और दूसरों को भी रोशन करती है। तो इन बातों के साथ जोहार रांची कार्यक्रम में अस्मिता है आपके साथ और मेरे साथ है
1: अर्चना। आप सभी को मेरा प्यार भरा
0: नमस्कार जोहार।
1: अस्मिता, ये जो सूरज की पहली किरण के साथ जैसे बिखर जाए कोई राग, हर सुबह लाती है अपने संग नई उम्मीदों का कोई भाग। चाय की पहली चुस्की हो या ऑफिस की पहली तैयारी, जोहार रांची बनेगी आपकी साथी हर सुबह की प्यारी सवारी। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत नगमे के साथ।
0: बिल्कुल।

0: श्रोताओं अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं इस सुविचार के साथ।
1: दोस्तों, जीवन में कई बार परिस्थितियां हमारे अनुसार नहीं होती, कभी रास्ते कठिन लगते हैं, कभी मेहनत का परिणाम देर से मिलता है। ऐसे समय में निराश होने के बजाय अपने प्रयासों पर विश्वास बनाए रखना बहुत ही जरूरी होता है।
0: बिल्कुल सही कहा, हर नया दिन हमें एक नया अवसर देता है कुछ सीखने का, कुछ बेहतर करने का और अपने सपनों के से एक कदम और करीब जाने का। इसलिए बीते हुए कल की चिंताओं को छोड़कर आज को पूरे उत्साह और आत्मविश्वास के साथ जीना चाहिए। याद रखिए, छोटी छोटी कोशिशें ही बड़े बदलाव की शुरुआत बनती है।

0: अर्चना जी, तो अब अपने श्रोताओं को मौसम की जानकारी थोड़ी दे देते हैं, है
1: बिल्कुल
0: ना। तो राजधानी समेत राज्य के कुछ जिलों में गुरुवार को भी जोरदार बारिश हुई। रांची के कोकर, रेलवे स्टेशन, डोरंडा, चुटिया आदि आसपास के क्षेत्रों में बारिश से मौसम

0: काफी सुहाना हो गया था।
1: बिल्कुल
0: रांची समेत राज्य में अगले 2 दिन के दौरान कहीं कहीं तेज हवा और गरज के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और आज के दिन की अगर बात करें तो सुबह के समय में हल्के बादल और धूप के साथ साथ मौसम उमस भरा रहेगा और दोपहर में तापमान लगभग 32 से 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकती है और इसके साथ साथ गर्मी और उमस ज़्यादा महसूस होगी। शाम में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना अधिक है और कुछ स्थानों पर तेज हवाएं भी चलेगी, लगभग 40-50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने की संभावना है। और रात में मध्यम बारिश के साथ साथ तापमान में भी गिरावट आएगी जिससे मौसम अपेक्षाकृत
0: बहुत ही सुहाना हो जाएगा। हाँ,
1: और अस्मिता बताएं, आज अगर बाहर निकलने का प्रोग्राम बना रही हैं आप और अगर हमारे श्रोताओं को भी अगर बाहर निकलना हो तो कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी
0: हो जाता है। बिल्कुल,
1: जैसे बाहर निकलना जब हो तो छाता या रेनकोट साथ में जरूर रखें और जब गरज चमक के साथ बारिश हो रही हो या बिजली चमक रही हो तो खुले मैदानों में या पेड़ के नीचे खड़े होने से बचें, खासकर बिजली के खंभे के पास बिल्कुल भी खड़े ना हो। और चूंकि उमस भरा मौसम रह रहा है आजकल और आज भी दोपहर में काफ़ी उमस रहने की संभावना है तो पर्याप्त मात्रा में पानी जरूर पीते रहें। और साथ ही अगर अपने श्रोताओं को एक खूबसूरत से गीतों का ठंडक फुहार दे दिया जाए तो और भी अच्छा लगेगा।
0: हाँ बिल्कुल।

0: अर्चना जी, आप तो जान ही रही हैं और हमारे श्रोता भी जान रहे हैं कि आज
1: हाँ
0: मुहर्रम है,
1: बिल्कुल, हाँ
0: तो चलिए थोड़ी सी बातें मुहर्रम के बारे में भी कर लेते हैं।
1: बिल्कुल
0: दोस्तों, मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है। यह केवल नए साल की ही शुरुआत नहीं होती, बल्कि त्याग, सत्य, धैर्य और इंसानियत के मूल्यों को भी याद करने का भी अवसर होता है। खास तौर पर मुहर्रम की 10वीं तारीख यानी आशूरा का दिन इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में मनाया जाता है। उन्होंने करबला की धरती पर सत्य, न्याय और मानवता की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। मुहर्रम हमें सिखाता है कि सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहना ही जीवन की सबसे बड़ी जीत है। आइए हम इस अवसर पर प्रेम, भाईचारे, शांति और मानवता के संदेश को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लें।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और अगर आज कहीं बाहर निकलने का प्रोग्राम बना रही हैं आप, और हमारे श्रोतागण भी अगर कहीं आज बाहर जाना चाह रहे हैं, रांची में कहीं बाहर निकलना चाह रहे हैं, तो यातायात व्यवस्था को देखते हुए ही बाहर निकलने की
0: हाँ,
1: कोशिश करें,
0: कोशिश करें।
1: क्योंकि
0: हाँ
1: आज राजधानी रांची में मुहर्रम के जुलूस को लेकर 26 और 27 जून को शहर की यातायात व्यवस्था में काफ़ी फेरबदल किया गया है। और इस आयोजन के मद्देनजर शुक्रवार और शनिवार को मेन रोड में वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक रहेगी। 26 जून को सिया समुदाय की ओर से मातमी जुलूस निकाला जाएगा, यानी आज के दिन सिया समुदाय की ओर से जुलूस निकाला जा रहा है। और इसको देखते हुए दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक अल्बर्ट टेक्का चौक से रतन टॉकीज तक सामान्य वाहनों के परिचालन पर रोक लगाई गई है। और इसके अलावा 27 जून को दोपहर 12 बजे से जुलूस की समाप्ति तक विभिन्न मार्गों में वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा। तो आज अगर कहीं बाहर निकलने का अगर प्रोग्राम बना रहे हैं, तो या तो आज रुक जाए घर पर ही,
0: हाँ
1: दो दिन
0: हाँ
1: घर पर ही रहे, और नहीं तो फिर यातायात की व्यवस्था को देखते
0: देखते हुए
1: ही
0: निकले।
1: बाहर निकले।

0: श्रोताओ, आज 26 जून और है, और आज के दिन पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस मनाया जाता है। यह दिवस लोगों को नशीले पदार्थों के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने और नशा मुक्त समाज के निर्माण के लिए प्रेरित करने का उद्देश्य से मनाया जाता है।
1: बिल्कुल। और इस दिन का मुख्य उद्देश्य लोगों को, विशेषकर युवाओं को, यह समझाना है कि नशा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। नशा व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन, शिक्षा, रोजगार और पारिवारिक जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। इसके कारण न केवल व्यक्ति का भविष्य प्रभावित होता है, बल्कि उसका परिवार और समाज भी परेशानियों का सामना करता है।
0: बिल्कुल, नशा धीरे धीरे व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता को प्रभावित करता है और उसे अपने लक्ष्य से भटका देता है। इसके विपरीत, यदि हम अपने जीवन में अच्छे विचार, अनुशासन, खेल कूद, शिक्षा और सकारात्मक सोच के साथ को अपनाएंगे, तो हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं।
1: बिल्कुल। और अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस हमें यह संदेश देता है कि जीवन अनमोल है, हमें अपनी सेहत, अपने परिवार और अपने भविष्य की रक्षा करनी चाहिए। आइए आज के इस अवसर पर हम सभी यह संकल्प लें कि नशे से दूर रहेंगे, दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करेंगे और एक स्वस्थ, सुरक्षित और नशा मुक्त समाज के निर्माण में अपना योगदान देंगे।

0: अर्चना जी, अब इतिहास के पन्ने को पलटते हैं और जानते
1: बिल्कुल,
0: हैं कि आज का इतिहास क्या है।
1: आज के दिन क्या क्या
0: हाँ,
1: खास हुआ
0: खास
1: अपने
0: हुआ था।
1: श्रोताओं को आज हम लोग
0: हाँ हाँ
1: बताते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो 1458 में चीन में पहला टूथब्रश बनाया गया। आधुनिक टूथब्रश के पहले मॉडल को चीन के राजा ने पेटेंट कराया था। 1714 ईस्वी में स्पेन और नीदरलैंड ने व्यापार एवं शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए।
0: और 1945 में सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। 1992 में भारत ने 3 बीघा गलियारा 1999 वर्षों के लिए बांग्लादेश को पट्टे पर दिया।
1: सन 1945 में सैन फ्रांसिस्को में 50 देशों ने संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। सन 1949 में बेल्जियम के संसदीय चुनाव में पहली बार महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला। और सन 1976 में कनाडा के टोरंटो में स्थित सीएन टावर को जनता के लिए खोला गया। 1815 फुट की यह इमारत उस समय दुनिया की सबसे ऊंची इमारत थी, जिसे 2007 में दुबई की बुर्ज खलीफा ने दूसरे स्थान पर धकेल दिया।
0: और बात करें 2000 की, तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिलिंग द्वारा बांग्लादेश को टेस्ट मैच का दर्जा दिया गया। और 2004 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जमाली का इस्तीफा, सुजात हुसैन नए कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने।
1: और सन 1982 में एयर इंडिया का पहला बोइंग विमान गौरी शंकर बम्बई में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। और 1997 में हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन का पहला संस्करण प्रकाशित हुआ। और मशहूर फिल्म निर्माता यश जौहर का निधन 2004 ईस्वी में आज ही के दिन हुआ।

0: महान व्यक्तियों का जन्म हुआ।
1: हाँ बिल्कुल।
0: तो सन 1992 में मनप्रीत सिंह, जो कि भारतीय फील्ड हॉकी खिलाड़ी हैं, उनका जन्म हुआ। और सन 1969 में धर्मेंद्र प्रधान, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिज्ञ हैं, उनका भी जन्म आज ही के दिन हुआ है।
1: और जैन धर्म के भारतीय दिगंबर पंथ के प्रसिद्ध मुनि तरुण सागर जैन का जन्म भी आज ही के दिन यानी कि 1967 में हुआ था। और भारतीय शोधकर्ता और रासायनिक वैज्ञानिक गोवर्धन मेहता का जन्म भी आज ही के दिन यानी कि 1943 में हुआ था।
0: और सन 1942 में योगेंद्र नारायण, जो कि केंद्र सरकार में रक्षा सचिव और राज्यसभा में महासचिव पद पर रहे थे, उनका भी जन्म आज ही के दिन हुआ। और बंकिम चंद्र चटर्जी, जो कि बंगाली उपन्यासकार थे, उनका भी जन्म आज ही के दिन 1838 ईस्वी में हुआ था।
1: और भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिज्ञ एस मल्लिकार्जुन नैया का जन्म भी आज ही के दिन यानी कि 1931 में हुआ था।
0: और 1888 में बाल गंधर्व मराठी रंगमंच के महान नायक और प्रसिद्ध गायक थे, उनका भी जन्म आज ही के दिन हुआ था। और सेकेंड लेफ्टिनेंट रामा राघोबा राणे, जो कि परम वीर चक्र से सम्मानित भारतीय सैनिक रहे हैं, उनका भी जन्म आज ही के दिन 1918 में हुआ था।
1: दोस्तों अब हम बात करते हैं बॉलीवुड के एक ऐसे अभिनेता जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और अभिनय के बल पर फिल्म जगत में अपनी अलग पहचान बनाई। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं लोकप्रिय अभिनेता अर्जुन कपूर की।
0: अर्जुन कपूर का जन्म आज ही के दिन यानी 26 जून 1985 को मुंबई में हुआ था। वे प्रसिद्ध फिल्म निर्माता बोनी कपूर के पुत्र हैं। बचपन से ही उनका वातावरण फिल्मों से जुड़ा रहा, लेकिन उन्होंने कभी अपनी पहचान केवल अपने परिवार के नाम से बनाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने अपने दम पर संघर्ष किया और अपनी मेहनत से बॉलीवुड में एक अलग पहचान बनाई।
1: और साल 2012 में फिल्म इश्क ज्यादे के माध्यम से उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा। तो आइए सुनते हैं इसी फिल्म से ये खूबसूरत सा गीत।
0: बिल्कुल।

0: इन दिनों अगर कुछ चर्चा में है तो क्या है पता है? कुछ हमारी इतिहास की तो बातें हो गई है, तो हम लोग क्यों ना खेल की ओर बढ़े।
1: हाँ बिल्कुल
0: और सबसे ज्यादा चर्चा है तो वो है फुटबॉल और क्रिकेट की,
1: हाँ
0: है ना? लेकिन क्रिकेट से भी ज्यादा इस वक्त फुटबॉल की चर्चा हो रही है। गली मोहल्ले से लेकर सोशल मीडिया तक, चाय की दुकानों से लेकर दफ्तरों तक, हर तरफ बस एक ही सवाल, आज किसका मैच है, कौन जीतेगा, किस खिलाड़ी का जादू चलेगा। फुटबॉल केवल एक खेल नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़ा एक जुनून है। जैसे ही खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं, हर पास, हर टैकल और हर गोल के साथ दर्शकों की धड़कनें भी तेज हो जाती है। और जब आखिरी मिनट में कोई शानदार गोल हो जाए तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता।
1: और बात करें ब्राज़ील ने विनीसियस जूनियर की बदौलत नॉकआउट में जगह बनाई, मगर चर्चा का केंद्र 3 साल बाद विश्व कप के लौटे नेवार भी रहे। 1981 में
0: नौ
1: उन्नीस
0: हाँ
1: 1981
0: नहीं
1: में
0: 981 दिन
1: नौ
0: बाद।
1: सौ नौ सौ
0: हाँ
1: इक्यासी दिन बाद
0: बिल्कुल
1: ब्राज़ील की जर्सी पहनकर मैदान पर उतरे नेबार भावुक हो गए और मैच के बाद ड्रेसिंग रूम में रो पड़े। 2023 में गंभीर घुटने की चोट के बाद उनकी फिटनेस पर सवाल थे।
0: इसीलिए इतने दिनों के बाद जब वो उतरे हैं तो वो काफी भावुक हो गए थे। और फ्रांस के किलियन एम्बापे और नॉर्वे के इर्लिंग हार्लैंड के बीच पहले अंतर्राष्ट्रीय मैच को दो नई पीढ़ियों के सबसे बड़े सितारों की रोमांचक टक्कर के रूप में देखा जा रहा है। बोस्टन में होने वाला यह मैच ग्रुप आई की शीर्ष टीम का फैसला भी करेगा। दोनों खिलाड़ी दो मुकाबलों में अब तक चार चार गोल दाग चुके हैं। एम्बापे और हार्लैंड के

0: बीच गोल्डन बूट के लिए मेसी 5 गोल से खरा मुकाबला दे रहे हैं।
1: बिल्कुल। और बात करें भारतीय टीम ने मार्च में लगातार दूसरी बार T20 विश्व कप में जीता था और उसके बाद टीम शुक्रवार को जब पहली बार फटाफट क्रिकेट में उतरी तो उसका रूप काफी बदला हुआ नजर आ रहा था।
0: बिल्कुल। और साई सुदर्शन के शतक से श्रीलंका ए की टीम बैकफुट पर आ गई है। ठीक है, साई सुदर्शन ने गोल की टर्निंग पिच पर गुरुवार को स्ट्रेट ड्राइव और ऑफ साइड में बेहतरीन कवर ड्राइव से खूब रन बटोरे। इस ओपनर ने प्रथम श्रेणी का 9वां शतक जड़ा, साथ ही 2 अर्धशतकीय साझेदारी भी की। इससे भारत ए ने श्रीलंका ए के खिलाफ अनौपचारिक टेस्ट सीरीज के पहले मैच की शुरुआती दिन 4 विकेट पर 333 रन बना मेजबान को बैकफुट पर डाल दिया। और अगर हम टेनिस की बात करें तो टेनिस में रांची के जीत को बालक वर्ग का एकल खिताब मिला है। वहीं राधा की फिरकी के बाद शेफाली का भी धमाल क्रिकेट में चला। धीमी पिच पर राधा यादव 3 विकेट की फिरकी के बाद शेफाली ने बल्ले से धमाल मचा दिया। दोनों के बेहतरीन प्रदर्शन से भारत ने गुरुवार को महिला T20 विश्व कप में बांग्लादेश को 5 विकेट से पराजित कर दिया। इस बड़ी जीत से टीम ने सेमीफाइनल की उम्मीदों को और भी मजबूत किया है।
1: बिल्कुल।

0: इसी के साथ कार्यक्रम जोहार रांची का आज का ये अंक यहीं समाप्त होता है। फिर मिलने के वादे के साथ दीजिए अपनी रेडियो सखी अर्चना
1: और अस्मिता को इजाजत। नमस्कार, जोहार।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: पड़े, घटना स्वयं ही घट पड़े। भारतीय सेना।
1: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है आपके फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। आप सभी श्रोताओं को आपकी रेडियो हम सफर अस्मिता का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बॉर्डर फिल्म के इस खूबसूरत से गीत के साथ। जावेद अख्तर के लिखे इस गीत को संगीत दिया है अनु मलिक ने, आवाजें हैं सोनू निगम और अलका याग्निक की, और इस गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं आप हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, दंतरंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाब दास मणिकपुरी, लचनपुर से विश्वनाथ साहू। तो आइए सुनते हैं आपकी ये पसंद पर ये खूबसूरत सा गीत।

फरमाइशी नगमे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रांची से। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म रिफ्यूजी से। आवाजें हैं सोनू निगम और अलका याग्निक की, धुन बनाई है अनु मलिक ने।

अभी आप सुन रहे थे श्रेया घोषाल को जिसमें फिल्म में, जिसे लिखा था नीलेश मिश्रा ने और धुन बनाई थी MM करीम ने, और इस गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता थे, आप थे औरंगाबाद से राजेश सावले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश, राशि राजेश। और अगली फरमाइश आई है हमारे श्रोता की, आप हैं गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बीरक, जैतेक बीरक और मीका बीरक, और आपने सुनना चाहा है गदर टू का ये खूबसूरत सा गीत अरिजीत सिंह और मिथुन की आवाज़ों में, धुन बनाई है कौशल गोहिल ने। तो आइए सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

इसी गीत के साथ आपके फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद अब यहीं संपन्न होता है। इस कार्यक्रम से अस्मिता को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: सखियों से दो बातें जब हो जाती हैं, मन की सारी थकान दूर हो जाती है। प्यार, विश्वास और अपनापन मिले तो ज़िंदगी खुशियों से भर जाती है। इसलिए एक बार फिर से अपनी बातों का पिटारा लेकर हम हाजिर हैं। सबसे पहले सखियों को खुशबू का प्यार भरा नमस्कार। और आज मेरे साथ आपकी एक और सखी है,
1: सुभाषिनी। तो बहनों, स्वागत करते हैं आपका अपने गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में, और सखियों को मेरा भी प्यार भरा नमस्कार। और आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में, और साथ ही सखियों इस पल का इंतज़ार भी करते हैं हम बहुत ही बेसब्री से। तो सभी के लिए आज हम लेकर आए हैं गृहलक्ष्मी कार्यक्रम और आपसे बातें करेंगे, और हम यही चाहते हैं कि इस समय हम कोई काम ना करें, सिर्फ बैठ जाए और आराम से अपना पसंदीदा कार्यक्रम सुने। क्यों खुशबू?
0: बिल्कुल, वैसे सच कहा सुभाषिनी तुमने। हमारे दिल में जो भी बात होती है ना, कभी कभी ऐसा मन करता है कि हम आराम से बैठे और कोई भी काम हमारे पास ना हो, क्योंकि आज की तेज गति वाले जीवन में हम अपने काम और जिम्मेदारियों में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हम अपने स्वास्थ्य और आराम की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दे पाते। हालांकि सफलता और प्रगति के लिए मेहनत ज़रूरी है, ये मानती हूँ, लेकिन लगातार काम करना और शरीर को आराम ना देना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि काम के साथ साथ आराम भी उतना ही ज़रूरी है।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने सखियों। हमारा शरीर जो होता है ना, वो एक मशीन की तरह काम करता है। जिस प्रकार से मशीन को लगातार चलाने पर उसे कुछ समय के लिए बंद करके आराम देना ज़रूरी होता है, उसी प्रकार हमारा शरीर और हमारा दिमाग भी होता है जिसे आराम की ज़रूरत होती है। लगातार काम करने से शरीर में थकान, तनाव और मानसिक दबाव बढ़ने लगता है, जिससे कार्यक्षमता प्रभावित होती है।
0: क्योंकि आराम करने से शरीर को एक नई ऊर्जा मिलती है, इसलिए कहा जाता है कि लगातार काम नहीं करना चाहिए, हमें थोड़ा आराम करना चाहिए, थोड़ा संभलना चाहिए, है ना। और उससे मस्तिष्क को भी एक नई ताजगी मिलती है, और उसके बाद जब हम काम करते हैं तो उसे अधिक उत्साह और एकाग्रता के साथ करते हैं। और आराम का मतलब ना सुभाषिनी केवल सोना नहीं होता है, बल्कि शरीर और मन को तरोताज़ा करना भी होता है, जिसके लिए हम पर्याप्त नींद ले सकते हैं, योग या व्यायाम कर सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं, कोई अपना पसंदीदा गाना सुन सकते हैं और परिवार के साथ समय भी बिता सकते हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसे मनोरंजन के लिए हम कर सकते हैं जिसमें हमें पर्याप्त आराम मिले, और ये सभी काम है ना तनाव को कम करते हैं और मानसिक शांति या सुकून देते हैं।
1: बिल्कुल सही। तो सखियों, सभी के लिए आराम बहुत ज़रूरी है। जैसे विद्यार्थियों या जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए पढ़ाई के साथ साथ आराम भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो लगातार पढ़ाई करते रहते हैं, तो लगातार पढ़ाई करने से दिमाग जो होता है वो थक जाता है और हमारा ध्यान पढ़ाई से हट जाता है। इसी तरह से जो नौकरी पेशा के लोग हैं और जो गृहिणियाँ हैं खासकर, उन्हें भी, उनके लिए भी आराम उतना ही ज़रूरी है बहनों।
0: बिल्कुल, और साथ ही साथ भरपूर नींद की भी ज़रूरत होती है शरीर को, क्योंकि शरीर तभी हमारा है ना दोबारा से एनर्जी लेता है और फिर से हमारा शरीर काम करने के लिए तैयार होता है। और एक स्वस्थ व्यक्ति को भरपूर नींद लेनी चाहिए, क्योंकि इससे शरीर को ऊर्जा मिलती है, जैसा कि हमने आपसे बातें भी की, और कई प्रकार की ये हमें बीमारियों से भी बचाता है। इसलिए स्वस्थ

0: खुशहाल जीवन के लिए काम के साथ साथ आराम भी करें और इन दोनों के बीच संतुलन भी बनाए रखें।
1: बिल्कुल सही कह रही हो खुशबू। और तुमने कहा था ना कि आराम करने के लिए हम किताबें पढ़ सकते हैं, अपनी मनपसंद काम कर सकते हैं, और जो हमारी हॉबीज़ है, किसी को खाना बनाना पसंद है, किसी को गाना गाना पसंद है और किसी को गाना सुनना पसंद है। तो मुझे लगता है कि आराम का एक तरीका गाना सुनना भी है। तो चलो बहनों के साथ मिलकर सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: बहनों, इस छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर हम आप सभी बहनों का स्वागत करते हैं और खुशबू बताएंगी कि अब आगे कार्यक्रम में क्या है।
4: सखियों, अब हम आपको सुनाने वाले हैं एक भेंट वार्ता और आज का विषय है कमर के दर्द को नज़रअंदाज ना करें। और आज की हमारी मेहमान हैं सलोनी कुमारी और उनसे बातें कर रही हैं सुभाषिनी। तो आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता।
5: बहनों, विज्ञान के नए नए विभिन्न आविष्कारों ने हमारे जीवन को बिल्कुल आसान बना दिया है, लेकिन वहीं दूसरी ओर आधुनिक जीवन शैली और आगे बढ़ने की होड़ में मनुष्य खुद को भूलता जा रहा है, यानी वो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे रहा है, जिसका परिणाम है एंजाइटी, डिप्रेशन, कमर दर्द, घुटनों में दर्द, इस तरह की समस्याएं आम हो गई हैं। कमर दर्द, घुटनों में दर्द, इस तरह की समस्याओं को नजरअंदाज करते हुए कोई दर्द निवारक दवा या तेल लगाकर अपने काम के लिए निकल जाते हैं, लेकिन इस तरह की समस्याओं को नजरअंदाज करना क्या सही है? हमारे साथ विशेषज्ञ हैं, तो आइए उनसे ही विस्तार से जानकारी लेते हैं। आज हम उनसे बातें करेंगे कमर दर्द के विषय पर। हमारी बातचीत का विषय है कमर दर्द को न करे नजरअंदाज। इस विषय पर जानकारी दे रही हैं सलोनी कुमारी। आप एक प्राइवेट अस्पताल में फिजियोथेरेपिस्ट के पद पर कार्यरत हैं। सलोनी जी, हम आपका स्वागत करते हैं गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में। नमस्कार
6: जी, आपको भी मेरा नमस्कार
5: जी। सलोनी जी, कमर दर्द के बारे में पहले तो हम आपसे थोड़ी सी जानकारी चाहेंगे और साथ ही ये भी बताएं कि आखिर ये होता क्यों है।
6: इस तरह से समझा जा सकता है कि हमारी पेट का जो ढांचा है वो रीढ़ की हड्डी ही है और हड्डियों के बीच में यूं समझिए कि सॉक ऑब्जर्वर लगा हुआ है, जो गड्डी लगी हुई है जिसे हम डिस्क कहते हैं। मांसपेशियां और जो नर्व्स होते हैं उससे मिलकर ये बनता है और ये जो इतना जटिल ढांचा है वो अगर इस पे किसी भी तरह का किसी भी हिस्से पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है तो वो डैमेज होता है, तो वहां से फिर आपका दर्द शुरू हो जाता है
5: जी।
6: तो ये दर्द जो होता है वो दो तरह का हो सकता है, एक तो एक्यूट पेन यानी कि अचानक शुरू होता है और कुछ दिन में या 2-3 हफ्तों में ठीक हो जाता है। उदाहरण के लिए जैसे आपने बहुत अधिक वजन उठा लिया तो दर्द उठ गया इस तरह से। फिर आता है क्रोनिक पेन और ये दर्द धीरे धीरे बढ़ता है और 3 महीने से ज्यादा समय तक लगातार बना रहता है और इसके लिए आपको डॉक्टर की इलाज की जरूरत होती है। कमर दर्द होने के कारण जो उसका मुख्य मेन जो है रीजन वो है हमारी जो लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल खराब हो गई है। गलत पोस्चर है, ऑफिस में या कंप्यूटर पे हम बैठते हैं तो बैठने का तरीका हमें पता नहीं, आगे झुककर बैठते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं, गर्दन पीठ झुकाकर देखते रहते हैं बहुत देर तक, या हो गया कि एक्सरसाइज नहीं करते हैं जिससे कि पीठ की जो मसल्स होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं जिससे रीढ़ की हड्डी को सपोर्ट नहीं मिलता है। ओबेसिटी भी एक कारण होता है कि ज्यादा मोटापा होने से वजन ज्यादा हो जाता है आपका, तो रीढ़ की हड्डी का जो निचला हिस्सा होता है उस पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है और टेंशन भी है, मानसिक दबाव है, तनाव है, तो इसके चलते भी जाने अनजाने मांसपेशियां है वो टाइट हो जाती है, स्टिफ हो जाती है, जिससे पीठ में दर्द रहने लगता है और रीढ़ की हड्डी से जुड़ी बीमारियां भी हो गई इसका कारण, जैसे कि स्लिप डिस्क हो गया, साइटिका हो गया, गठिया हड्डियों की कमजोरी और शारीरिक गतिविधि आपकी नहीं है।
5: जी जी।
6: बहुत से लोग आजकल जिम जाते हैं और गलत तरीके से डेडलिफ्ट करते हैं, घर में भी भारी सामान को बिना घुटने मोड़े अचानक से उठा लेते हैं, और अत्यधिक टेंशन और एंजाइटी के कारण भी होता है, मैंने बताया, जिससे क्या होता है कि जो हमारे मसल्स होते हैं वो लगातार टेंस रहते हैं, खिंचे खिंचे रहते हैं, जो दर्द का कारण होते हैं। और या तो आप बहुत अधिक मुलायम गद्दे पर सो रहे हैं या तो बहुत अधिक सख्त गद्दे पर सो रहे हैं, तो इससे भी हड्डी को सही सपोर्ट नहीं मिल पाता है और कमर दर्द होता है आपको। और खान पान में हम पौष्टिक चीजें नहीं ले पाते हैं, कैल्शियम हो गया, विटामिन डी थ्री हो गया, जिसकी भारी कमी से हड्डियों की मजबूती मजबूत में फर्क पड़ता है, कमजोर हो जाती है हड्डियां। और महिलाओं की अगर बात करें तो उसमें होने वाले कुछ बदलाव भी कमर दर्द का कॉज बनते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी में जो प्रेग्नेंट वुमन है तो जो उनके शिशु का वजन, गर्भ में शिशु है तो वजन और हार्मोनल बदलाव होते रहता है, जिसके कारण जोड़ों के ढीले होने से कमर पर तनाव पड़ता है। पीरियड्स के दौरान भी, पीरियड्स में जो हार्मोनल जो अपडाउन उतार चढ़ाव होता है और गर्भाशय के संकुचन से भी कमर के निचले हिस्से में दर्द होता है। और आपको पता है 34% से 83% महिला जो होती है पेरी मेनोपॉज, यानी कि जो मेनोपॉज होता है उसके पहले का समय और मेनोपॉज के समय पीठ के निचले हिस्से में दर्द रहता है, उनको दर्द की शिकायत करती हैं। और एस्ट्रोजन महिला का जो बॉडी है उसका एक मेन हार्मोन होता है, जो उसकी जो मसल्स होते हैं, बोन्स होते हैं, उसके उसे हेल्दी रखता है। मेनोपॉज में जो ये हार्मोन होता है ये तेजी से इसका जो है लेवल है वो गिरने लगता है और इसका इफेक्ट पड़ता है रीढ़ की हड्डी पर।
5: जी।
6: और जो उसके डिस्क होते हैं, कुशन होते हैं, वो कमजोर पड़ने लगते हैं उसको, और इसकी कमी से सूखने लगता है डिस्क। एस्ट्रोजन की कमी से जो डेंसिटी होती है बोन्स की वो भी कम होने लगती है, इससे हड्डियां इतनी कमजोर और नाजुक हो जाती हैं कि कंप्रेशन फ्रैक्चर होने लगता है, रात में पसीने आते हैं, ये सब कारण होते हैं। नींद की कमी हो जाती है, नींद नहीं पूरी होने से भी शरीर में कॉर्टिसोल का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। कॉर्टिसोल मतलब वो तनाव का जो हार्मोन होता है ना वो बढ़ जाता है, जिससे मांसपेशी में दर्द होता है।
5: जी, जी।
6: तो इस तरीके से कमर दर्द होते हैं।
5: तो आजकल हर दूसरे घर में कोई न कोई इस कमर दर्द से परेशान है, लोग इसे आम थकान समझकर छोड़ देते हैं, तो इस पर आपकी क्या राय है?
6: कमर दर्द को सामान्य समझकर छोड़ना ही सबसे बड़ी गलती है। ये जान लेना होगा कि कोई भी दर्द अगर शरीर में होता है, आपके बॉडी में होता है, तो ये एक तरह का अलार्म सिस्टम है जो कि बताता है कि आपके अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा, गड़बड़ है। और इसे नजरअंदाज करने से मामूली खिंचाव भी बाद में गंभीर बीमारी का रूप ले सकता है।
5: जी, तो कैसे समझे कि कमर दर्द सामान्य है या कोई गंभीर खतरे का संकेत है?
6: अगर दर्द आराम करने या सामान्य कोई बाम वाम लगा लिया तो उससे 2-3 दिन में ठीक हो गया तो वो ठीक है, सामान्य है। लेकिन अगर गंभीर संकेत को पहचानना है तो आपको ध्यान देना होगा कि दर्द लगातार 2 से 3 हफ्ते से ज्यादा बना रह रहा है, दर्द कमर से होते हुए पैरों के नीचे तक जा रहा है, तो ये समझना होगा कि साइटिका का के लक्षण हो सकते हैं। फिर आपको कमजोरी लग रही है, पैरों में झुनझुनी है, सूनापन है, रात में सोते समय दर्द बहुत अधिक बढ़ जा रहा है, दर्द इतना है कि बुखार आ जा रहा है, कंट्रोल करने में दिक्कत हो रहा है, तो ये सब जो लक्षण है तो इस तरह तो आप तुरंत समझ जाए कि डॉक्टर से मिलना है, डॉक्टर को दिखाना है।
5: जी, तो अगर कोई व्यक्ति इन लक्षणों को लंबे समय तक अगर नजरअंदाज करता है तो उसे क्या परेशानी आ सकती है?
6: लापरवाही अगर आप बरत रहे हैं तो लापरवाही बरतने से रीढ़ की हड्डी जो है आपकी वो स्थायी रूप से डैमेज हो सकती है
5: जी, जी।
6: और स्लिप डिस्क की समस्या बढ़ जाती है जिससे नसें दब जाती हैं और गंभीर मामलों में पैरों का पैरालिसिस यानी कि लकवा हो सकता है या आपको सर्जरी की नौबत भी आ सकती है। कमर दर्द अगर आपको लंबे समय तक है और आप नजरअंदाज कर रहे हैं तो सिर्फ पेन किलर खाकर दबाने से शरीर को और भी ज्यादा नुकसान हो सकता है। जब कमर दर्द को नजरअंदाज किया जाता है तो रीढ़ की हड्डी के बीच की जो डिस्क है जो गड्डी है
5: जी।
6: वो अपनी जगह से खिसक जाती है। इससे वहां से गुजरने वाली जो मेन आपकी वेन होती है नसें जो होती है वो बुरी तरह से दब जाती है दबने लगती है। यदि नस लंबे समय तक ऐसे ही दबती रहे तो वो हमेशा के लिए फिर डैमेज हो जाती है हो सकती है
5: जी।
6: और शुरुआत या मामूली में कमर दर्द के बाद में क्या होता है कि वो साइटिका का रूप ले लेता है उधर चली जाती है तो इससे दर्द कमर से शुरू होकर कूल्ही के रास्ते से पैरों की उंगलियों तक फैल जाता है
5: जी।
6: इसके कारण उठने बैठने और चलने में बहुत तेज आप देखेंगे कि बिजली के झटके जैसा पेन होता है और नसों में लगातार जो अगर प्रेशर पड़ रहा है तो पैरों में खून का दौरा और सिग्नल्स कम हो जाते हैं। इससे भी पैरों में लगातार झुनझुनी रहती है या पैर के तलवों में सूनापन हो जाता है पैरों की मांसपेशियां कमजोर हो जाती है जिससे चलते समय पैर अचानक मुड़ जाता है या चप्पल आपके पैर से निकल जाता है। कमर दर्द से बचने के लिए आप टेढ़ा मेढ़ा होकर सोते हैं झुककर बैठते हैं या और टेढ़ा होकर चलना शुरू करते हैं तो लंबे समय तक ऐसा करते रहने से फिर पूरा शरीर का आपका जो पोस्चर होता है वो परमानेंटली बिगड़ जाता है जिससे गर्दन कंधों और घुटने में भी दर्द होने लगता है
5: जी।
6: और अगर आप यूरिन या मोशन पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे कंट्रोल हो गया है तो ये समझ लें कि ये एक इमरजेंसी है एक मेडिकल इमरजेंसी है। जब रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से की नसें पूरी तरह से दब जाती हैं तो व्यक्ति अपने यूरिन और स्टूल पर नियंत्रण नहीं रख पाता है कंट्रोल ही नहीं रख पाएगा। यदि इसका तुरंत इलाज नहीं किया जाए तो पैरों में हमेशा के लिए पैरालिसिस हो सकता है और जो समस्या शुरुआत दौर में केवल सही आपके जो पोस्चर या फिजियोथेरेपी या कुछ आसान एक्सरसाइज से ठीक हो सकती है तो उसे नजर अंदाज करने पर लास्ट में सिर्फ बस

0: ये ऑप्शन होता है स्पाइन सर्जरी एकमात्र।
1: जी सलोनी जी, अब हम बात करते हैं कमर दर्द के निवारण के बारे में। तो अगर किसी को कमर दर्द है तो उसे ठीक करने के क्या उपाय हैं?
0: दर्द का निवारण इस बेसिस पर किया जाता है कि यदि दर्द मामूली खिंचाव के कारण है तो कुछ दिनों तक अगर सही देखभाल से ठीक हो जाता है, लेकिन दर्द पुराना है तो इसके लिए एक व्यवस्थित इलाज की जरूरत होती है। जैसे कि आप सही बैठने का तरीका आपका ठीक होना चाहिए। कुर्सी पर आप जब भी बैठे तो हमेशा रीढ़ की हड्डी को सीधा रखकर बैठे। कंप्यूटर स्क्रीन को आंखों के स्तर, मतलब आपका जो आई लेवल है उसके लेवल तक रखे, ताकि गर्दन और आपका जो पीठ है वो झुके नहीं। और यदि आपका डेस्क जॉब है तो हर 40-45 मिनट में अपनी सीट से उठकर 2-3 मिनट के लिए टहले। पेट आपका बढ़ा हुआ है, मोटापा है तो रीढ़ की हड्डी पर अलग से प्रेशर पड़ता है, इसलिए अपना वेट नियंत्रण में रखें। भारी सामान जब उठाते हैं तो सीधे कमर के बल पर नहीं झुके, पहले आपको घुटने को मोड़े, इससे घुटने मोड़ कर नीचे बैठे, फिर सामान को शरीर के पास रखते हुए सीधे खड़े हुए
1: जी।
0: और मांसपेशी को तो मजबूत करना ही है, पीठ की मांसपेशी को मजबूत करें, इसके लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। आजकल सब योग का सहारा ले रहे हैं, मैं भी सलाह देती हूँ, जैसे कि भुजंगासन हो गया, मरकटासन हो गया, कैट काउ स्ट्रेच हो गया, जो इसमें कमर दर्द में बहुत फायदा होता है। फिर अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो और भी अच्छा है, वो वहां पर सारे ट्रीटमेंट देते हैं। यदि दर्द पुराना है तो डॉक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट से मिलकर सीख सकते हैं। और नियमित वॉक करें, 20-30 मिनट तो आपको वॉक करना ही चाहिए, जिससे रीढ़ की हड्डी में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ठीक रहता है।
1: जी जी।
0: और घर में आप इस तरह से कर सकते हैं कि या चोट या खिंचाव ताजा है तो अगर सूजन है तो बर्फ से सिकाई करें
1: जी।
0: और दर्द पुराना है, मांसपेशी में अकड़न है और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना है तो उसके लिए गर्म पानी की थैली या हीटिंग पैड से सिकाई करें।
1: अच्छा।
0: और सोने के लिए ना तो बहुत अधिक मुलायम गद्दे लें, न ही एकदम फर्श जैसा सख्त हार्ड गद्दा भी न ले। ऑर्थोपेडिक या मीडियम फर्म का गद्दा ठीक रहेगा और रीढ़ के प्राकृतिक घुमाव को वो मेंटेन करके रखता है। कैल्शियम और विटामिन 3 की कमी ना होने दे हड्डियों की मजबूती के लिए, दूध, पनीर, दही, हरी पत्तेदार सब्जियां, अंडे खाएं। डॉक्टर की सलाह पर विटामिन D3 और कैल्शियम के सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। एंटी इंफ्लेमेटरी फूड्स हो गया, जैसे कि अपने डाइट में हल्दी, अदरक, ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे अखरोट, अलसी के बीज, इनको शामिल करें, जो शरीर के जो आपका अंदरूनी जो दर्द है, सूजन है, उसको कम करता है। और दर्द है या सूजन है तो उसको कम करने के लिए आप डॉक्टर का एडवाइस जरूर लें। ये जो दवाएं हैं, दर्द निवारक मलहम का उपयोग करें बिना डॉक्टर के सलाह के, खुद से ना कोई पेन किलर खाएं। और सर्जरी की नौबत बहुत अधिक नहीं आती है, 5% से भी कम मामले में जहां डिस्क बहुत अधिक बाहर निकल जाती है या नसें बुरी तरह से दब जाती है, जैसे कि साइटिका में हो गया या पैरालिसिस का खतरा हो रहा है, तो डॉक्टर स्पाइन सर्जरी की सलाह देते हैं।
1: जी जी बिल्कुल, यानी सलोनी जी के अनुसार अगर हम अपने जीवन शैली में सुधार करें, सही खान पान रखें और कुछ सावधानियां रखें जैसे सलोनी जी ने बताया, उनका पालन करें तो बहनों कमर दर्द से बचा जा सकता है। अगर आप अपने कमर दर्द से भी परेशान हैं तो उसे नजरअंदाज ना करें और चिकित्सक की सलाह जरूर लें। जितनी जल्दी आप इस पर ध्यान देंगी उतनी जल्दी इसका निवारण भी अच्छी तरह से हो सकता है। सलोनी जी, इतनी बढ़िया जानकारी देने के लिए और हमारे लिए समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सखियों, अभी आप सुन रही थी भेंट वार्ता और आज का विषय था कमर दर्द के ना करें नज़रअंदाज। और आज की मेहमान थी सलोनी कुमारी, जो कि एक फिजियोथेरेपिस्ट थी, और उनसे बातें कर रही थी सुभाषिनी। सुभाषिनी, बातें तो हमारे पास बहुत सारी है, लेकिन घड़ी की सुई हमें इजाजत नहीं दे रही है, तो अब हमारे कार्यक्रम का वक्त है यही समाप्त हो गया है।
3: और बहनों से यही कहेंगे कि बहनों अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने घर में जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं और छोटे बच्चे हैं, उनको उनका भी ध्यान रखें, अच्छे पौष्टिक खाना

0: देने की कोशिश करें, जो मौसमी फल है, सब्जियां हैं, वो सब दें और खुद भी खाएं। और इसके साथ ही अब हम विदा लेते हैं बहनों से।
1: लेकिन जाते जाते आपको बता दें कि आज के कार्यक्रम की प्रस्तुति थी गौरव कुमार पांडे जी की। तो सखियो, अब अपनी दो सखी खुशबू
0: और सुभाषिनी को दीजिए विदा।
1: नमस्कार।
2: गृहलक्ष्मी।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म बाजीगर से ये खूबसूरत संगीत विनोद राठौर और आशा भोसले की आवाज़ों में। धुन बनाई थी अनु मलिक ने। आइए अब अगला गीत सुनते हैं इश्क फिल्म से। संगीत जावेद अख्तर के लिखे इस गीत को संगीत दिया है अनु मलिक ने और आवाज़ें हैं उदित नारायण और विभा शर्मा की।

0: मुझे शर्म आती है।
1: देखो तुम नहीं कहोगी तो मेरी जान निकल जाएगी।
0: आई लव यू।
2: यहाँ

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम का अगला गीत कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में, जिसे लिखा है समीर ने, संगीतबद्ध किया है नदीम श्रवण ने। फिल्म का नाम है हमें राही प्यार के।

फिल्म संगीत का अगला और आखिरी गीत फिल्म आकर्षण से प्रसून जोशी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है शंकर एहसान लॉय ने, आवाजें हैं मोहित चौहान और श्रेया घोषाल की।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त भारत तैयार करना हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ हमें लड़ाई लड़नी है और इसे जीतनी भी है। गृहमंत्री ने कहा कि हमें ड्रग्स के व्यापारियों के प्रति सख्त रवैया अपनाना होगा। उन्होंने कहा कि ड्रग्स का इस्तेमाल करने वाले युवाओं के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाना होगा।
1: ड्रग तस्करी, संगठित अपराध, नार्को टेरर फाइनेंस और सीमा पार के आतंकी नेटवर्क के वित्त पोषण, एक इस प्रकार से इवॉल्विंग नार्को टेररिज्म इकोसिस्टम भी बन चुकी है। तो हमारी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए, हमारे देश के अर्थतंत्र की सुरक्षा के लिए और हमारे देश की युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इस पर संपूर्ण विजय प्राप्त करें।
0: अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर काइल से बातचीत की है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। भारत ने किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन एससीओ महिला फोरम 2026 में महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया। आज वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिलाएं न केवल विकास की लाभार्थी हैं बल्कि 2047 तक विकसित भारत की सबसे शक्तिशाली प्रेरक शक्ति भी हैं। भारत ने जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने कहा है कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है। एक समाचार एजेंसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच हरित और सतत विकास की साझेदारी सफल रही है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार, राजनीति और रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर राजदूत एकरमैन ने आशा व्यक्त की है कि इस पर जल्द सहमति बनेगी। अमेरिका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के विदेश मंत्री जैकब हेलबर्ग ने कहा कि एआई अवसर पर शामिल होने वाले देशों ने एआई युग के लिए विकसित विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। आज मुहर्रम है। यह दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी। शहीदों की याद में आज ताजिए निकाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान आज भी लोगों को सत्य और न्याय के लिए डटे रहने की प्रेरणा देता है। भारत आज बेलफास्ट में आयरलैंड के साथ दो मैचों की टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच खेलेगा। मैच शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। टीम में 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। आयरलैंड के कप्तान लोरकान टकर होंगे। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच रविवार को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस पर उपराष्ट्रपति ने नशा मुक्त भारत के संकल्प को दोहराया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत ने ड्रग्स के खिलाफ लड़ी सबसे मजबूत लड़ाई। राजधानी रांची समेत राज्य भर में 28 जून से शुरू होगा राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान। केंद्र सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में की बढ़ोतरी, 1 जुलाई से नई दरें होंगी लागू। मुहर्रम जुलूस को लेकर रांची में ट्रैफिक व्यवस्था में किया गया बदलाव। 27 जून को कई प्रमुख मार्गों पर वाहनों के परिचालन पर रहेगी रोक। और रामगढ़ में भीषण सड़क हादसा, बैंड ताशा पार्टी के 7 सदस्यों की मौत, आक्रोशित लोगों ने NH-23 किया जाम। और अब समाचार विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन सहित कई नेताओं ने नशा मुक्त भारत का संदेश दिया। उपराष्ट्रपति ने युवाओं से नशे से दूर रहकर स्वस्थ और उद्देश्यपूर्ण जीवन अपनाने का आह्वान किया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान में जुटे सभी लोगों के प्रयासों की सराहना की है। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि भारत ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग की वैश्विक चुनौती के विरुद्ध मजबूत लड़ाई लड़ी है। सरकार की कार्रवाई से नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले कई गिरोहों का सफाया किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस के अवसर पर जामताड़ा जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से नशा मुक्त समाज के संदेश के साथ जागरूकता रैली निकाली गई। प्राधिकार के सचिव पवन कुमार ने बताया कि रैली व्यवहार न्यायालय परिसर से शुरू होकर सुभाष चौक तक गई और वापस न्यायालय परिसर पहुंचकर संपन्न हुई।
1: 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोध दिवस एवं दिवस के अवसर पर जामताड़ा जिले के सभी प्रशासनिक ब्लॉक में आज जागरूकता कार्यक्रम कराया जा रहा है। इसके तहत व्यवहार न्यायालय से परिसर से पूरे सुभाष चौक होते हुए पूरे जामताड़ा में जागरूकता कार्यक्रम रैली निकाली गई। नशे के प्रति प्रचार किया गया और लोगों से अपील की गई कि वो नशा न करें, क्योंकि नशा करने से भविष्य खराब होता है।
0: रांची जिले में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत 28 से 30 जून तक विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। सिविल सर्जन डॉ. प्रभात कुमार ने बताया कि अभियान के दौरान जन्म से 5 वर्ष तक के लगभग 5,05,524 बच्चों को पोलियो की 2 बूंद तथा दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। पहले दिन 28 जून को जिले के 3,893 पोलियो बूथों पर बच्चों को दवा पिलाई जाएगी, जबकि 29 और 30 जून को स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर छूटे हुए बच्चों को खुराक देंगी। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब ₹2,500 शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 1 जुलाई से प्रभावी होंगे। एक रिपोर्ट।
2: पासपोर्ट की नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत ₹5,000 होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत ₹3,500 होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए ये लागत ₹6,000 होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत ₹1,500 और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत ₹2,000 है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी कराने के लिए ₹5,000 का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठ वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए ₹6,000 का शुल्क लिया जाएगा। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: जमशेदपुर के मानगो नगर निगम क्षेत्र में फायर सेफ्टी जांच अभियान के दौरान 17 संस्थानों के निरीक्षण में 14 संस्थान सुरक्षा मानकों पर फेल पाए गए। अपर नगर आयुक्त जितेंद्र यादव ने संचालकों को तत्काल फायर सेफ्टी उपकरण अपडेट करने का निर्देश दिया गया है। निगम ने अभिभावकों से भी नियमों की अनदेखी की सूचना देने की अपील की है। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह आज देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने विधि विधान से बाबा वैद्यनाथ की पूजा अर्चना की। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उन्होंने मंदिर के गर्भगृह में दर्शन किए और देश तथा समाज की सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान मंदिर प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे। केंद्रीय मंत्री के साथ पार्टी के कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हजरत इमाम हुसैन की शहादत को नमन करते हुए कहा है कि उनका बलिदान आज भी करोड़ों लोगों को सत्य, न्याय और इंसानियत की राह पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। सोशल मीडिया पर जारी संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि इमाम हुसैन की शहादत साहस, दृढ़ संकल्प और अटूट विश्वास का प्रतीक है। मुहर्रम के अवसर पर कल निकलने वाले जुलूस को देखते हुए रांची शहर की यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। सुबह 10 बजे से जुलूस समाप्त होने तक अपर बाजार, महावीर मंदिर चौक, शहीद चौक, अल्बर्टेका चौक, सरजना चौक, मेन रोड और राजेंद्र चौक सहित कई प्रमुख मार्गों पर सामान्य और यात्री वाहनों के परिचालन पर रोक रहेगी। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने और आवश्यक होने पर ही इन क्षेत्रों की ओर जाने की अपील की है, ताकि मुहर्रम जुलूस शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से संपन्न कराया जा सके। रांची नगर निगम चुनाव के 3 माह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी महापौर, उपमहापौर और पार्षदों का मानदेय तय नहीं हो सका है। रांची के मेयर रोशनी खलखो ने कहा है कि फंड और मानदेय नहीं मिलने से नगर निगम के नियमित कार्यों और विकास योजनाओं के संचालन पर असर पड़ रहा है।
3: मानदेय एक सम्मानजनक हो ऐसा हम लोग भी चाहते हैं, और पहले भी मानदेय की सुविधाएं थी, इसलिए सरकार से आग्रह किया है। जब चुनाव हम लोग जीत करके आए तो एक पत्र के माध्यम से सरकार को हमने अवगत भी कराया है, तो जल्द से जल्द उन्हें सम्मानजनक एक मानदेय मिलना ही चाहिए, ताकि सुविधाएं जनप्रतिनिधि है उनको मिल सके।
0: राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,33,500 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,30,000 रुपए प्रति किलो है। रामगढ़ बोकारो मुख्य मार्ग पर बारलोंग के पास हुए भीषण सड़क हादसे में बैंड ताशा पार्टी के 7 सदस्यों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस के अनुसार तेज रफ्तार कोयले लदे ट्रक ने ओवरटेक करने के दौरान सवारी वाहन को टक्कर मार दी। हादसे के बाद सभी घायलों को रामगढ़ सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां 7 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने NH-23 जाम कर सड़क सुरक्षा की मांग की। रांची के JSCA स्टेडियम में हुई भगदड़ की घटना को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने JSCA प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने कहा है कि इस मामले में JSCA अध्यक्ष अजय नाथ शाहदेव के खिलाफ तत्काल FIR दर्ज कर उन्हें पद से हटाया जाना चाहिए।
4: अगर उनका पास चेक नहीं होना है, फ्री एंट्री है, तो जैसे ही कोई आया उसको स्टेडियम के अंदर एंट्री मिलनी चाहिए, लेकिन उनको सुबह से शाम तक खड़ा रखा गया और भीड़ जब बेकाबू हो गई तो उस बेकाबू भीड़ में गेट खोला गया जिससे बैरिकेड टूटे, महिलाएं घायल हुई, बच्चे घायल हुए, कोई व्यवस्था महिलाओं के अलग से नहीं थी, बच्चों के लिए नहीं थी।
0: झारखंड T20 क्रिकेट लीग फाइनल के दौरान रांची स्टेडियम में हुई भगदड़ में कई लोग घायल हो गए हैं, जिसके बाद SSP राकेश रंजन के नेतृत्व में SIT गठित कर 15 दिनों में जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस पर उपराष्ट्रपति ने नशा मुक्त भारत के संकल्प को दोहराया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत ने ड्रग्स के खिलाफ लड़ी सबसे मजबूत लड़ाई। राजधानी रांची समेत राज्य भर में 28 जून से शुरू होगा राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान। केंद्र सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में की बढ़ोतरी, 1 जुलाई से नई दरें होंगी लागू। मुहर्रम जुलूस को लेकर रांची में ट्रैफिक व्यवस्था में किया गया बदलाव। 27 जून को कई प्रमुख मार्गों पर वाहनों के परिचालन पर रहेगी रोक। और रामगढ़ में भीषण सड़क हादसा, बैंड ताशा पार्टी के 7 सदस्यों की मौत, आक्रोशित लोगों ने NH-23 किया जाम। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्स और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। प्रस्तुत है उप शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी। आज की कलाकारा है गिरिजा देवी।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे चंद गजलें मिताली सिंह और भूपेंद्र सिंह की आवाज में।

अभी आप सुन रहे थे मिताली सिंह को सुगम संगीत के कार्यक्रम में। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें। और फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी मुकाबले में पराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया। अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए खतरा है। उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर भाग लेने की अपील की। श्री शाह ने यह बात नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी NCORD की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए की।
1: आज हमारा देश नार्कोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
0: गृहमंत्री ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों से इन पोर्टलों पर नशे से जुड़े मामलों की जानकारी तय समय सीमा के भीतर अपलोड करने को कहा।
1: नार्को ऑफेंडर्स आज टेक्नोलॉजी से सक्षम बने हुए हैं, वो नेटवर्क आधारित बन चुके हैं और मल्टी डोमेन अपराध के रूप में भी आज हमारे सामने खड़े हैं। ये सभी चीजें ये लड़ाई को और कठिन बनाती हैं। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड प्रतिक्रिया होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए और नेटवर्क सेंट्रिक लड़ाई हमने करनी पड़ेगी।
0: अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली एफआईआर के 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये एफआईआर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल यानी एसआईटी की सिफारिश के बाद श्रीराम जन्मभूमि थाने में दर्ज की गई। शिकायत ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने दर्ज कराई थी। एसआईटी ने मंगलवार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, जिसके बाद कल मामला दर्ज किया गया। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में जन विश्वास अधिनियम के अंतर्गत सुधार किए हैं। इसके तहत औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 और खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत आने वाले छोटे अपराधों को तर्कसंगत बनाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत आयात की जाने वाली दवाओं की बची हुई वैधता अवधि यानी शेल्फ लाइफ आयात के समय कम से कम 12 महीने होना अनिवार्य होगा। एक रिपोर्ट।
2: जैविक दवाओं और रेडियो फार्मास्यूटिकल दवाओं के लिए मौजूदा नियम लागू रहेंगे। इनके लिए आयात के समय कम से कम 60% शेल्फ लाइफ होना जरूरी होगा। मंत्रालय के अनुसार इस संशोधन से दवाओं की अनावश्यक बर्बादी कम होगी और दवा भंडार का बेहतर उपयोग हो सकेगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये प्रस्ताव केवल आयात के समय दवाओं की बची हुई शेल्फ लाइफ से संबंधित है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अमेरिका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के उप विदेश मंत्री जैकब हेलबर्ग ने कहा कि एआई अवसर पर शामिल होने वाले देशों ने एआई युग के लिए विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। एक रिपोर्ट।
3: श्री हेलबर्ग ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ अपनी साझेदारी को और गहरा करने के लिए उत्साहित है। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण संबंधों में से एक बताया। श्री हेलबर्ग ने कहा कि भारत के साथ द्विपक्षीय आदान प्रदान के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई, इनमें क्वाड और ट्रस्ट पहल शामिल है। शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन और भारतीय उद्योग के प्रतिनिधियों ने किया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उद्योग

0: जगत के नेताओं के साथ सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लचीली प्रौद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने अपनी दो दिन की दक्षिण कोरिया यात्रा के दौरान विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर व्यापक चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, वित्तीय सहयोग, जहाज निर्माण, रक्षा और सुरक्षा, उभरती तकनीकों, स्टार्टअप, संस्कृति, शिक्षा तथा लोगों के बीच संपर्क जैसी कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमिनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर काइल से बातचीत की है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने कहा है कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है। एक समाचार एजेंसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच व्यापार, राजनीति और रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर राजदूत एकरमैन ने आशा व्यक्त की कि इस पर जल्द सहमति बनेगी।
2: For our business, FTA हमारे व्यवसाय के लिए भारत में नए अवसर लेकर आएगा। मेरा मानना है कि इससे भारत में जर्मनी का निवेश बढ़ेगा, क्योंकि निवेश करना अधिक आसान हो जाएगा। रक्षा क्षेत्र में भी भारत जर्मनी सहयोग तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमें पनडुब्बियों से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर होने का इंतजार है, जो एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
1: जर्मन राजदूत ने कहा कि जर्मनी में रह रहे भारतीय समुदाय दोनों देशों की मित्रता का मजबूत आधार है।
2: जर्मनी में भारतीय मूल के करीब 60,000 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। अगर वे सही विश्वविद्यालय का चयन करते हैं तो उनके पास अच्छी नौकरी पाने के बेहतर अवसर होते हैं। जर्मनी में भारतीय समुदाय की बढ़ती मौजूदगी से दोनों देशों के बीच लोगों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे।
1: भारत ने किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO महिला फोरम में महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया। आज वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिलाएं न केवल विकास की लाभार्थी हैं, बल्कि 2047 तक विकसित भारत की सबसे शक्तिशाली प्रेरक शक्ति भी हैं। जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची 1 जुलाई से 3 जुलाई तक भारत यात्रा पर रहेंगी। वे नई दिल्ली में होने वाले 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस शिखर सम्मेलन में दोनों देश अपने द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा करेंगे और उसे और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही दोनों नेता आपसी हितों से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आज आशुराए मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत का प्रतीक है। हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों ने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी थी। आज के दिन शहीदों की याद में ताजिए निकाले जा रहे हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने ताजिया जुलूसों के संबंध में यातायात संबंधी चेतावनी जारी की है। इसके मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस बीच दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार नेताजी सुभाष मार्ग से जामा मस्जिद की ओर आने वाले वाहनों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। भीड़भाड़ से बचने और मुहर्रम के जुलूस के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए यातायात को नेताजी सुभाष मार्ग से होकर अन्य मार्गों पर जोड़ा जाएगा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि मोहम्मद हजरत इमाम हुसैन के बलिदान, साहस, करुणा, सत्य तथा न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता जैसे शाश्वत मूल्यों की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान आज भी लोगों को सत्य और

0: न्याय के लिए डटे रहने की प्रेरणा देता है। पश्चिम बंगाल में साहित्य सम्राट बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की 188वीं जयंती मनाई जा रही है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म आज ही के दिन 1838 को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के नेहाटी के काठलापारा में हुआ था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने राष्ट्रगान वंदे मातरम की रचना की, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में बंकिम चंद स्मृति ग्रंथागार में बंकिम चंद की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज ऑपरेशन अमिस्ताद की घोषणा की। इसके अंतर्गत भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्यों में सहायता के लिए भारतीय वायुसेना की 2 एमसीसी C-17 विमान वेनेजुएला के लिए रवाना हो गए हैं। डॉ जयशंकर ने सोशल मीडिया पर बताया कि अस्तिदाद का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत भारतीय सेना की फील्ड अस्पताल इकाई और 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण भेजे जा रहे हैं। इनमें 2 भीष्म क्यूब भी शामिल हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत इस कठिन समय में वेनेजुएला की सरकार और वहां के लोगों के साथ खड़ा है और हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। और अब खेल खबरों के साथ है आनंद पाठक।
1: भारत आज बेलफास्ट में आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला खेलेगा। ये मैच शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। टीम में 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी के अपने अंतिम मैच में पैराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली है। ग्रुप डी के एक अन्य मुकाबले में तुर्की ने अमरीका को 3-2 से हराकर टूर्नामेंट में अपने अभियान का जीत के साथ समापन किया। जापान और स्वीडन का मुकाबला 1-1 गोल की बराबरी पर समाप्त हुआ। दोनों टीमों ने अंतिम 32 में जगह बना ली है। अगले दौर में जापान का मुकाबला 5 बार के चैंपियन ब्राजील से होगा। वहीं ग्रुप ई के मैच में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। एक अन्य मुकाबले में कोट डी आइवर ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया। हॉकी में लंदन में आयोजित FIH प्रो लीग में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले हुए मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से हराया था।
0: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, बिहार, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियां अनुकूल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान। कहा, मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने राम मंदिर चढ़ावे में गबन मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया। भारत ने 34 देशों के साथ मिलकर अमरीका के नेतृत्व वाली पहल पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य मजबूत AI आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला आयरलैंड से। टीम में पदार्पण करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें। और फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी के एक मुकाबले में पराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्स और FM 100.5 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फौजी भाइयों का कार्यक्रम जय भारती। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म टसन से। आवाजें हैं उदित नारायण और महालक्ष्मी अय्यर की। धुन बनाई है विशाल शेखर ने।

आइए अब सुनते हैं फिल्म तेरे नाम से ये खूबसूरत सा गीत। समीर के लिखे इस गीत को संगीत दिया है हिमेश रेशमिया ने, आवाजें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

0: पड़े, घटना स्वयं ही घट पड़े। भारतीय सेना।
1: आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे हैं फौजी भाइयों का कार्यक्रम जय भारती। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म आर्यन से। आवाजें हैं सोनू निगम और श्रेया घोषाल की, धुन बनाई है आनंद राज आनंद ने।

कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में। शब्द रचना इरशाद कामिल के हैं, तर्ज बनाई है ए आर रहमान ने। फिल्म का नाम है आई।

0: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं शीला कुमारी। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में जन विश्वास अधिनियम के अंतर्गत सुधार किए हैं। इसके तहत औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 और खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत आने वाले छोटे अपराधों को तर्कसंगत बनाया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इन सुधारों का उद्देश्य जन स्वास्थ्य और उपभोक्ता सुरक्षा के लिए कड़े सुरक्षा उपायों को बनाए रखते हुए व्यापार करने में सुगमता को बढ़ावा देना है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। उन्होंने कहा कि उनके प्रयास एक मजबूत, स्वस्थ और नशा मुक्त भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने बंकिम चंद चट्टोपाध्याय को एक महान साहित्यकार बताया, जिनकी रचनाओं ने पीढ़ियों से भारतीयों में देशभक्ति और सांस्कृतिक गौरव की भावना को जागृत किया है। पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर क्षेत्र के करंजों में आयोजित दो दिवसीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने संगठन विस्तार पर जोर दिया और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2014 से शुरू की गई जन कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख करते हुए उन्हें आम लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने का आह्वान किया।
2: प्रशिक्षण के माध्यम से हम कार्यकर्ता का भी निर्माण करने का काम करते हैं और यह प्रक्रिया निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हमारे बूथ स्तर से लेकर के मंडल, जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर तक सभी कार्यकर्ताओं को इस प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते हैं। संगठन का आंतरिक विषय होता है, हम चर्चा करने का काम करते हैं।
1: सरायकेला चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने और समाज को नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से 1 से 15 जुलाई तक 15 दिवसीय योग, औषधि, दर्शन एवं नशा मुक्ति अभियान चलाया जाएगा। मारवाड़ी धर्मशाला में प्रतिदिन सुबह 6 से 7 बजे तक आयोजित होने वाले इस निःशुल्क शिविर का संचालन योग शिक्षक एवं आयुर्वेद विशेषज्ञ वैद्य किशोर मिश्रा करेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। गिरिडीह जिले में 28 से 30 जून तक आयोजित होने वाले राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के दौरान लगभग 5 लाख बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाई जाएगी। सिविल सर्जन डॉक्टर बच्चा सिंह ने बताया कि अभियान के सफल और शत प्रतिशत क्रियान्वयन के लिए स्वास्थ्य विभाग ने व्यापक तैयारियां की हैं।
3: 28 से 30 तारीख तक पल्स पोलियो की दवाइयाँ पिलाई गई। 28 तारीख को गिरिडीह जिले के टोटल जो बूथ है 2,337 बूथ, उस पर बच्चों को जो 0 से 5 साल के बच्चों को ओरल पोलियो वैक्सीन, जो अभी BOP भी बाइवेलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन की दो बूंद दवाइयाँ दी जाए।
1: आज आशूरा ए मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत का प्रतीक है। हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों ने करबला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। आज के दिन शहीदों की याद में ताजिए निकाले जा रहे हैं। मुहर्रम के अवसर पर कल रांची जिले में ताजिया और अखाड़ा जुलूसों के कारण यातायात प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने जिले के सभी सरकारी, गैर सरकारी और निजी विद्यालयों में अवकाश घोषित किया है। जिला उपायुक्त मंजुनाथ भजयंत्री के निर्देशानुसार केवल पूर्व निर्धारित परीक्षाएं अत्यंत आवश्यक होने पर जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचना देकर कराई जा सकेंगी। प्रशासन ने सभी विद्यालय प्रबंधन, अभिभावकों और नागरिकों से शांति और सौहार्द बनाए रखने में सहयोग की अपील की है। सिमडेगा जिले की जलडेगा थाना पुलिस ने गाजर तस्करी के मामले में फरार चल रहे आरोपी आशीष साह उर्फ आशीष साव को गिरफ्तार किया है। SDPO DD पासवान ने बताया कि 14 अप्रैल को बांसचोर ओपी क्षेत्र में एक कार से लगभग 28 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया था, जिसमें 3 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था। झारखंड में आज मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार राज्य के अधिकांश हिस्सों में मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। कुछ स्थानों पर तेज बारिश भी हो सकती है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्स और FM 100.5 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ आपका मित्र अजीत। आइए हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत विचार से, जिस विचार को हमें भेजा है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं, हम हर आने वाले दिन को आज के दिन से बेहतर बना सकते हैं, बस सकारात्मक रवैया चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है नगर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू। गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल। ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सोमांशु पांडे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इन संदेशों के लिए। अब एक बार फिर से आप सबका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओ, जैसा कि आप जानते हैं इन दिनों हम बात कर रहे हैं भारत की अनेक उन गुफाओं के बारे में जो अपने आप में अनूठी हैं, प्रकृति का चमत्कार हैं। ये भारत की सबसे पुरानी लंबी गुफाओं में से एक मानी जाती है। जी हाँ श्रोताओ, इन गुफाओं को प्रकृति ने बनाया है। आज हम चलेंगे भारत के मेघालय में गारो हिल्स के रमणीय वातावरण में स्थित सिजू गुफाओं की ओर, जो प्रकृति की कलात्मकता और भूवैज्ञानिक चमत्कारों का अद्भुत उदाहरण है। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि मेघालय राज्य में स्थित ये गुफाएं अपनी रोचक बनावट और विशाल चट्टानी कक्षों के लिए प्रसिद्ध हैं। इन कक्षों को एयरक्राफ्ट हैंगर भी कहते हैं। चूना पत्थर के ये हॉल नुमा कक्ष देखने में एयरक्राफ्ट हैंगर की तरह दिखाई पड़ते हैं। ये प्रकृति प्रेमियों को बहुत आकर्षित करते हैं। श्रोताओं, सिजू गुफाओं में विविध प्रकार की दुर्लभ वनस्पतियां और जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं। ये गुफाएं लगभग 40 करोड़ साल पुरानी हैं। इन गुफाओं में वैज्ञानिकों को कई विलुप्त जीव प्रजातियों के जीवाश्म भी मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि आज से लाखों साल पहले का जीव जगत कैसा था। एक और रोचक बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि इन गुफाओं को बैट केव्स या चमगादड़ों की गुफाएं भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ घोर अंधकार रहता है और इसके कारण हजारों की संख्या में यहाँ पर चमगादड़ मिलते हैं। श्रोताओं, ये गुफाएं अंधेरे नम वातावरण के अनुकूल ढल चुकी अनूठी प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करती हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के चमगादड़ और गुफाओं में रहने वाले कीड़े भी शामिल हैं। लाखों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी घोर अंधकार में रहने के कारण यहाँ के बहुत से जीवों की आँखें अभी तक अविकसित हैं। सिजू गांव के पास स्थित होने के कारण ये गुफाएं सिजू गुफाएं कहलाती हैं, जो एक विशाल गुफा प्रणाली का हिस्सा हैं। ये गारो पहाड़ियों में गहराई तक फैली हुई हैं। श्रोताओं, सिजू गुफाओं के मुख्य आकर्षणों में टूथ पैसेज विशेष रूप से जाना जाता है। आइए अब जानते हैं इसका नाम टूथ पैसेज क्यों पड़ा। इसका नाम टूथ पैसेज इसलिए पड़ा कि यहाँ चट्टानों की बनावट ऐसी है कि वे मनुष्य के दांतों की श्रृंखला जैसी दिखाई पड़ती हैं। एक और अनूठी बात आपसे साझा करना चाहते हैं और वो ये है कि यहाँ का स्थानीय गारो जनजातीय समुदाय इन गुफाओं को अलौकिक शक्तियों का निवास स्थान मानता है और समय समय पर इन गुफाओं में आकर अपने पूर्वजों के प्रति अनुष्ठान भी करता है। समृद्ध जैव विविधता के कारण ये स्थान पक्षी और जीव विज्ञानियों के लिए एक आदर्श स्थान है, क्योंकि यहाँ उन्हें गुफा में रहने वाले दुर्लभ जीवों का अध्ययन करने का अवसर मिलता है। गुफा के अंदर टपकते पानी की गूंज और कभी कभार चमगादड़ों के पंखों की फड़फड़ाहट एक अलौकिक वातावरण का निर्माण करती है। यही कारण है कि सिजू गुफाओं को स्थानीय गारो भाषा में डोवा कोल भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है चमगादड़ों का घर। इन गुफाओं की एक विशेषता है और वो ये है कि अन्य कुछ गुफाओं की तरह इसकी खोज किसी एक व्यक्ति ने नहीं की। स्थानीय जनजाति के लोग इसे हजारों वर्षों से जानते आए हैं। वैज्ञानिक अन्वेषण बाद में हुए, तब कहीं जाकर इसकी विचित्रता का पता दुनिया को चला। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न। सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों? 8800440559 है हमारा IBRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। जी हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आज

0: हमारा पहला कार्यक्रम है स्टीफन हॉकिंग। इस कार्यक्रम में प्रख्यात भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग के जीवन और भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उनकी महत्वपूर्ण खोजों के बारे में जानकारी दी गई है।
1: मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरिपाइये मन ही की परती।
2: आपने संत कबीर की इन पंक्तियों को अवश्य सुना होगा। इन पंक्तियों का आशय है, जीवन में जय और पराजय केवल मन के भाव हैं।
1: आज हम एक ऐसी महान विभूति की बात करेंगे जिन्होंने इन पंक्तियों को शत प्रतिशत अपने जीवन में चरितार्थ किया।
2: उस महान शख्सियत का नाम है स्टीफन विलियम हॉकिंग। उनका नाम 20वीं सदी के महानतम भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ बड़े आदर से लिया जाता है। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को ऑक्सफोर्डशायर ब्रिटेन में हुआ था। उनके पिता का नाम फ्रैंक और माता का नाम इजाबेल हॉकिंग था।
1: ये भी एक विचित्र संयोग ही था कि इस महान खगोल वैज्ञानिक का जन्म महान खगोल वैज्ञानिक गैलीलियो की मृत्यु के ठीक 300 वर्षों बाद हुआ था। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को हुआ था और गैलीलियो की मृत्यु 8 जनवरी 1642 को हुई थी।
2: उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ऑक्सफोर्ड के निकट सेंट एल्बान में ही पूरी की। स्कूली शिक्षा समाप्त करने के बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया।
1: ऑक्सफोर्ड से भौतिकी में वो प्रथम श्रेणी में प्रतिष्ठा यानी ऑनर्स के साथ उत्तीर्ण हुए। अध्ययन पूरा करने के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने अनुप्रयुक्त गणित और सैद्धांतिक भौतिकी यानी अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड थ्योरेटिकल फिजिक्स विषय लेकर ब्रह्मांड विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी पर गहन अध्ययन और शोध किया। प्रोफेसर और छात्र उन्हें प्यार से जूनियर आइंस्टाइन कहकर बुलाते थे।
2: फिर आया 1963 का साल। दिन था 8 जनवरी यानी उनका 21वां जन्मदिन। वे छुट्टियों में अपने घर आए।
3: स्टीफन, हैप्पी बर्थडे टू यू।
4: हैप्पी बर्थडे टू यू स्टीफन।
5: हाउ आर यू? हैप्पी बर्थडे स्टीफन।
6: थैंक यू।
5: कांग्रेचुलेशंस।
6: थैंक यू जॉन। थैंक यू सो वेरी मच। हाय मार्टिन, हाउ आर यू?
3: ओह फाइन।
6: Thanks for coming in. Please come in. Please.
4: Oh, sure. Yes. Why not?
3: Come. Hey.
4: Come.
3: John, please come here.
4: Oh, sure. Hey.

जन्मदिन की पार्टी बहुत अच्छी रही, लेकिन दूसरे ही दिन जो हुआ उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। हुआ यूं कि वे अपने घर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे कि तभी

0: अचानक उनके शरीर की सारी मांसपेशियां बुरी तरह से अकड़ गईं और वे अचेत होकर गिर पड़े। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने कुछ दवाएं देकर और इसे सामान्य कमजोरी बताकर उन्हें घर भेज दिया।
1: लेकिन ये क्या?
0: जब स्टीफन को ऐसे दौरे बार बार पड़ने लगे तो उन्हें लंदन के एक नामी अस्पताल में ले जाया गया। जांच के बाद डॉक्टर ने स्टीफन के माता पिता को बुलाया

0: मिस्टर फ्रैंक, मैंने आपके बेटे के बारे में एक खास जानकारी देने के लिए आपको यहाँ बुलाया है।
1: सब कुछ ठीक तो है ना?
0: देखिए, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ।
1: जी।
0: आपके बेटे को मोटर न्यूरॉन डिजीज है।
1: मोटर न्यूरॉन डिजीज?
0: जी हाँ। और इसका अभी तक कोई इलाज संभव नहीं है।
1: डॉक्टर साहब, इस बीमारी में क्या होता है?
0: इस बीमारी में मस्तिष्क का सिग्नल मांसपेशियों को नहीं मिल पाता है, इसलिए शरीर के सारे अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। बोलने और चलने फिरने में परेशानी होती है।
1: नहीं, नहीं।
0: देखिए, आप धीरज रखें, मैं ताकत की कुछ दवाइयां लिख देता हूँ, क्या पता कोई चमत्कार हो जाए।
1: ओ।

0: लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। स्टीफन की बीमारी बढ़ती ही चली गई। उन्हें बोलने में बहुत परेशानी होने लगी थी। एक बार जब तबीयत बहुत खराब हुई तो उनके मित्र उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कह दिया कि वे अब अधिक से अधिक 2 वर्ष ही जी पाएंगे।
1: डॉक्टर के क्लिनिक से जब वे बाहर आए तो आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर था एक असाधारण संकल्प का भाव। उन्होंने कहा,
2: मैं जीना चाहता हूं, तो 2 साल नहीं, 20 साल भी नहीं, पूरे 50 साल और जीऊंगा।
1: उस समय सबने उनका मन रखने के लिए, दिलासा देने के लिए हाँ में हाँ मिला दी थी, पर आज पूरा विश्व जानता है कि जो कुछ उन्होंने कहा था वो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से उन्होंने कर दिखाया।
0: उनकी बीमारी बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन इस हालत में भी सन 1965 में उन्होंने सर्वाधिक अंक लेकर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी पीएचडी की डिग्री प्राप्त की।
3: साथियों, हम बड़े हर्ष के साथ घोषणा करते हैं कि स्टीफन हॉकिंग ने बेहद अच्छे अंकों से अपना शोध पूरा कर लिया है। उनके शोध का विषय था प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, यानी विस्तारित ब्रह्मांड की विशेषता। मेरा अनुरोध है कि वो सामने आकर सम्मान ग्रहण करें।

0: विश्वविद्यालय में वे एक चलता फिरता आश्चर्य माने जाते थे। जब उनसे ये पूछा गया कि वे इतनी कठिनाइयों के बीच अपना शोध और अध्ययन का काम कैसे कर लेते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया,
1: मेरी क्षमता, मेरी दिव्यांगता से अधिक मजबूत है। दिव्यांगता शरीर से अधिक मन में होती है।
2: जनवरी 1965 में ही नए साल के जश्न में स्टीफन हॉकिंग की मुलाकात मिस जेन वाइल्ड से हुई। वे अंग्रेजी साहित्य की प्रख्यात लेखिका और शिक्षिका थीं। मिस जेन वाइल्ड स्टीफन के खुशदिल स्वभाव, बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प शक्ति से बहुत प्रभावित हुईं।
0: वे जानती थीं कि भविष्य में स्टीफन का स्वास्थ्य बिगड़ता चला जाएगा, लेकिन उन्होंने स्टीफन का साथ नहीं छोड़ा और वे विवाह बंधन में बंध गए। उनकी 3 संतानें हुईं। ५८ में उनकी आवाज खो गई। अब बोलना उनके लिए असंभव हो चुका था। उनके सभी अंग धीरे धीरे स्थिर होने लगे थे, इसलिए स्वीडन में उनके लिए एक स्मार्ट व्हीलचेयर बनाई गई जिसमें कई प्रकार के उपकरण लगे हुए थे।
2: इस चेयर में एक विशेष उपकरण था जिसे स्पीच सिंथेसाइजर कहा जाता था। कीबोर्ड की सहायता से वे जो जो टाइप करते थे, स्पीच सिंथेसाइजर उन्हें शब्दों में बदल देता था।
0: इसी के जरिए वे पूरी दुनिया से बात करते थे और भौतिकी पर दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में व्याख्यान देते थे। लेकिन वे बोलते कैसे थे, ये जानना दिलचस्प होगा।
2: दरअसल उन्हें आवाज दी थी प्रोफेसर डेनिस एच क्लैट ने, जो संभाषण और श्रवण विज्ञान में एक अमरीकी शोधकर्ता थे। आइए प्रोफेसर डेनिस क्लैट से बात करके जानते हैं कि प्रोफेसर हॉकिंग का ये स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता था।
3: प्रोफेसर डेनिस
4: जी,
3: स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता है, आपने इसका विकास कैसे किया?
4: देखिए, प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यानों को भाषा में बदलने के लिए हमने सबसे पहले स्पीच सिंथेसाइजर के कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा उनकी सारी भाषा सिखाई।
3: ओह।
4: और फिर विज्ञान से संबंधित सारे तकनीकी शब्द भी कंप्यूटर की स्मृति में डाल दिए।
3: ग्रेट, धन्यवाद सर, ये तो सचमुच बहुत रोचक है। यानी प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यान हमने आपकी आवाज में सुने?
4: जी।
3: अद्भुत, इट्स रियली वंडरफुल। तो सुनाइए ना प्रोफेसर हॉकिंग को आपकी आवाज में।
4: तो लीजिए, सुनिए।
5: Technology has transformed the outlook for the disabled. People like me can now move around independently, and they can communicate.
2: उन्होंने कुल 29 रचनाएं की, जिनमें पुस्तकें, शोध प्रबंध और विज्ञान लेख शामिल हैं। उनसे अंतरिक्ष समय, भारहीनता, शून्य गुरुत्वाकर्षण जैसे अंतरिक्ष के अनेक रहस्यों से पर्दा उठ गया और अनेक शोधों को गति मिली।
0: सापेक्षता का सिद्धांत, क्वांटम यांत्रिकी और अंतरिक्ष समय यानी स्पेस टाइम पर उनका काम हमेशा याद रखा जाएगा।
2: उनके सभी शोधों की ये विशेषता है कि ब्रह्मांड की व्याख्या के साथ साथ उन्होंने इसे विश्व पारिस्थितिकी, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से भी जोड़ा है।
0: उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट पत्रिका में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा था,
6: यदि पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा गया तो 600 वर्षों के अंदर ये पृथ्वी आग का गोला बन जाएगी। जनसंख्या बढ़ने के कारण धरती पर ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से धरती का तापमान असीमित रूप से बढ़ेगा और धरती गर्म होकर लाल हो जाएगी।
2: उनके द्वारा लिखित किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम उस समय की सबसे ज्यादा समय तक बिकने वाली किताब बनी। तब इस किताब की बिक्री लगभग रिकॉर्ड 237 हफ्तों तक चली। एक और पुस्तक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग भी बहुत प्रसिद्ध हुई। उन्हें राष्ट्रपति का मेडल ऑफ फ्रीडम सम्मान भी दिया गया था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है।
0: विद्यार्थियों और शोध करने वालों को वे अक्सर कहते थे,
7: ऊपर सितारों की तरफ देखो, अपने पैरों के नीचे नहीं। जो भी देखते हो उसका अर्थ जानने की कोशिश करो, आश्चर्य करो, उत्सुक रहो और प्रश्न करो।
2: जनवरी 2001 में अग्रणी ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग जब भारत आए थे, उन्होंने कहा था,
8: इंडियंस आर सो गुड इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स।
0: विश्व के दिव्यांग समुदाय के लिए प्रोफेसर हॉकिंग का अंतिम संदेश था,
9: यदि आप शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं तो मन को दिव्यांग न होने दें।
2: चौदह मार्च 2018 को 76 वर्ष की आयु में ब्रिटेन के कैम्ब्रिज में उनका देहांत हो गया। अपनी मृत्यु के समय वे सैद्धांतिक ब्रह्मांड विज्ञान केंद्र में अनुसंधान के निदेशक थे। दाह संस्कार के बाद लंदन के वेस्टमिंस्टर एबी चर्च में उनकी राख को चर्च के साइंटिस्ट कॉर्नर में सर आइजैक न्यूटन और चार्ल्स डार्विन की कब्रों के बीच दफनाया गया।
0: उनके स्मारक पत्थर पर ये शब्द अंकित हैं, यहाँ स्टीफन हॉकिंग के पार्थिव अवशेष दफन हैं। उस पत्थर पर उनका एक प्रिय समीकरण भी अंकित है, जिसका उपयोग उन्होंने दुनिया को ब्लैक होल के बारे में सिखाने के लिए किया था।
2: दिव्यांगता के खिलाफ अदम्य इच्छा शक्ति की ऐसी जंग छेड़कर अंतरिक्ष विज्ञान में सितारों की बुलंदियों को छूने वाले प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग, आपको हमारा नमन।
10: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्टीफन हॉकिंग, और आइए इस कार्यक्रम के बाद आप सुनते हैं कार्यक्रम आग का गोला। इस पहली नुमा कार्यक्रम में सूर्य और सौर मंडल के बारे में मनोरंजक जानकारी दी गई है।
11: चलो बच्चों आ जाओ, पहली टाइम आ जाओ, आ जाओ सब लोग आ जाओ। तो अब बिना देर करे शुरू करें पहली।
12: हाँ।
11: गुड़िया गौरव सब तैयार? वेरी गुड, तो ठीक है, ध्यान से सुनो आज की पहेली। मैं आग का गोला लेकिन फिर भी जीवन दाता हूँ।
13: आग का गोला?
11: हाँ, मैं आग का गोला लेकिन फिर भी जीवन दाता हूँ। दूजे काटे चक्कर मेरे लगे मैं चलता जाता हूँ। सर्दी गर्मी बनती मुझसे मैं दिन रात बनाता हूँ। दूं प्रकाश पर नहीं हूँ दीपक, बोलो क्या कहलाता हूँ?
12: सूरज।
11: ओ सूरज, वाह एकदम ठीक भाई, तुम सब लोग तो बहुत होशियार हो।
13: रोज बहुत आसान पूछते हो।
11: ओफो क्या करूँ, मुझे मुश्किल वाली आती ही नहीं
13: कि उस अगली बार में बहुत मुश्किल।
11: हाँ मैंने सोचा तो था लेकिन क्या करूँ, मैंने अपना पिटारा खोला पहेलियों का, उसमें से एक पहेली देखी फिर दूसरी देखी, कोई मुश्किल वाली मिली नहीं मुझे। मुश्किल वाली पहेलियाँ तुम्हारे पास होती है ना?
12: हाँ।
11: कितनी भी मुश्किल पहेली ले आऊंगी तुम सब तो जल्दी से जवाब बता ही दोगे मुझे, है ना?
13: मुझे पता है सूरज आग का गोला होता है।
11: बिल्कुल ठीक, सूरज आग का गोला होता है।
14: वो तारा होता है।
11: हाँ

0: ये भी बिल्कुल ठीक।
1: वो रात और दिन भी बनाता है।
0: एकदम सही, एकदम
2: वो
0: सही।
2: वो हमें धूप भी देता है।
0: बिल्कुल धूप भी देता है, सर्दियों में तो धूप अच्छी लगती है।
3: धूप से इतना अच्छी बात भी होती है।
0: हाँ, हमें क्या मिलता है पता है उससे?
3: विटामिन डी।
0: वेरी गुड, बहुत समझदार हो तुम तो। विटामिन डी मिलता है, अरे तुम्हें पता है? तुम बहुत अच्छे, शाबाश, बहुत अच्छे।
2: अगर सूरज की रोशनी नहीं होती तो हमारा बिल नहीं बचता।
0: हाँ हाँ बिल्कुल।
3: पेड़ों को खाना भी देता है।
0: बिल्कुल, एकदम ठीक कहा, एकदम ठीक कहा। इतने होशियार बच्चे मैंने कहीं नहीं देखे।
3: धीरे धीरे घूमते जब भी सुबह रात होती जाती है।
0: हाँ बिल्कुल, ये जो हमारा सौर मंडल है ना, इसके ग्रह सूरज के चक्कर काटते हैं। और लगता क्या है, जैसे सूरज चलता है पूर्व से पश्चिम की ओर, है ना?
3: हाँ,
1: जब भी तो सूरज सुबह पूर्व में आता है।
0: हाँ, हमें ऐसा लगता है ना कि सूरज चल रहा है धरती के चारों ओर। हाँ। इसलिए दिन और रात हो रहे, लेकिन असल बात क्या है, धरती सूरज के चक्कर काट रही है।
3: मौसी, जब मैं मम्मी के साथ घूमने जाती हूँ, जब मुझे लगता है चंदा मेरे साथ चल रहा है।
0: हाय हाय, क्या बात है, चंदा मामा तुम्हारे साथ चल रहा है। और कभी कभी जब हम ट्रेन से बाहर देखते हैं, चलती हुई ट्रेन से, तो लगता है ना पेड़ भी हमारे साथ साथ चल रहे हैं। लगता है ना
3: वो तेज चलती है, लगता है तेज चल रही है।
2: और जब हम लोग चलते हैं तो हमें लगता है कि हमारा सूरज भी हमारे साथ साथ चल रहा है
0: ना।
2: मुझे सूरज बहुत गंदा लगता है।
0: हाँ, और सर्दियों में अच्छा लगता है। तो बच्चों, सूरज नहीं चलता है ना, वो पृथ्वी के घूमने के कारण हमें चलता दिखाई देता है। जैसे जैसे मैंने अभी कहा कि अगर हम ट्रेन में से देखते हैं तो हमें पेड़ चलते हुए नजर आते हैं, है ना?
3: मौसी, वो बहुत बड़ा भी होता है।
0: बहुत बड़ा होता है
2: पर हमें छोटा लगता है आसमान।
0: हम क्योंकि कहीं
3: दूर होता है, इसलिए
0: हम बहुत दूर है ना सूरज से, इसलिए हमें लगता है ऊपर है। और कभी कभी मन करता है कि शायद इसको छू के देखें।
3: हमें सबसे छोटे इसलिए लगता है क्योंकि वो बहुत दूर है।
0: हाँ,
2: वो चांद से भी ऊपर होते हैं।
0: अरे वाह भाई, ये तो मुझे भी नहीं पता था। अच्छा, एक बात और, धरती का जो भाग सूरज के पास होता है वहाँ गर्मी होती है, और जो दूर वहाँ
4: सर्दी।
0: ऐसी वाली सर्दी ना। अच्छी लगती है सर्दी।
3: हाँ, पर सर्दी में ठंड बहुत लगती है।
0: हाँ, शुक्र है गर्मी में नहीं लगती
2: नहीं
0: है
2: करता।
0: सूरज आग का गोला, लेकिन
4: सूरज आग का गोला लेकिन
0: फिर भी जीवन दाता है।
4: फिर भी जीवन दाता है।
0: धरती काटे चक्कर इसके।
4: धरती काटे चक्कर इसके।
0: लगे ये चलता जाता है।
4: लगे ये चलता जाता है।
0: सर्दी गर्मी बनते इससे।
4: सर्दी गर्मी बनते इससे।
0: ये दिन रात बनाता है।
4: ये दिन रात बनाता है।
0: दे प्रकाश पर नहीं है दीपक।
4: दे प्रकाश पर नहीं है दीपक।
0: सूरज ये
4: कहलाता है।
0: शाबाश, सूरज ये कहलाता है। सूरज ये कहलाता है। चलो अब अगली बार के लिए अगली पहेली लेकर मैं फिर आऊंगी।
3: मौसी, एक और पहेली आज ही बता दो।
0: आज नहीं, अब मुझे देर हो रही है। ठीक है,
2: जल्दी आना मौसी।
0: बिल्कुल जल्दी आऊंगी बेटा।
3: हमें देर की तो फिर हम मुश्किल पहेली पूछ लेंगे आपसे।
0: मैं तो डर रही हूँ भाई। मैं कल आऊँ कि नहीं आऊँ?
3: वो भी दस पूछेंगे।
0: दस पहेलियाँ? अच्छा चलो, मैं भी फिर तैयारी करके आऊंगी ना। डर जाती
3: है। आपके कुल मिला के 70 हो जाएंगे।
0: 70 हो जाएंगे? वो 10 से एकदम 70
2: नहीं, 80 हो जाएंगे।
0: 100 हो जाएंगे, 200। ओके, इससे पहले कि ये 500 तक पहुंचे, मैं जा रही हूँ। टाटा, बाय बाय।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आग का गोला, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
6: उमंग उमंग उमंग उमंग।
7: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रांची मेलोडीज। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म आई हेट लव स्टोरी के इस खूबसूरत से गीत के साथ। कुमार के लिखे इस गीत को संगीत दिया है विशाल शेखर ने, आवाजें हैं श्रेया घोषाल और सोना महापात्रा की।

अगला गीत आइए सुनते हैं, रूप कुमार राठौर और श्रेया घोषाल की आवाजों में धुन बनाई है साजिद वाजिद ने, फिल्म का नाम है वीर।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है ये।

0: निकल पड़े, घटना स्वयं ही घट पड़े। भारतीय सेना।
1: आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रांची मेलोडीज। रांची मेलोडीज का अगला गीत हम्टी शर्मा की दुल्हनिया फिल्म से, शब्द रचना कुमार के हैं, आवाजें हैं अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की।

अगला गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में समीर के लिए इस गीत को संगीत दिया है निखिल विनय ने। फिल्म का नाम है मुस्कान।

0: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं शीला कुमारी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। उन्होंने कहा कि उनके प्रयास एक मजबूत, स्वस्थ और नशा मुक्त भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। देवघर सर्किट हाउस में आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य और राष्ट्रीय जनता दल के देवघर विधायक सुरेश पासवान के बीच करीब आधे घंटे तक बैठक हुई। हाल के राजनीतिक घटनाक्रम और राज्यसभा चुनाव के बाद हुई इस मुलाकात को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हैं। गिरिडीह जिले में 28 से 30 जून तक आयोजित होने वाले राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के दौरान लगभग 5 लाख बच्चों को पोलियोरोधी दवा पिलाई जाएगी। सिविल सर्जन डॉक्टर बच्चा सिंह ने बताया कि अभियान के सफल और शत प्रतिशत क्रियान्वयन के लिए स्वास्थ्य विभाग ने व्यापक तैयारियां की हैं। केंद्रीय पंचायती राज, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह और फुलालन सिंह ने आज देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में पूजा अर्चना की। उन्होंने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक और विधिवत पूजन किया। आज आशुराए मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत का प्रतीक है। हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों ने करबला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। आज के दिन शहीदों की याद में ताजिए निकाले जा रहे हैं। झारखंड में आज मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार राज्य के अधिकांश हिस्सों में मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। कुछ स्थानों पर तेज बारिश भी हो सकती है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। पेशे खिदमत में उर्दू कार्यक्रम, प्रस्तुति है प्रभु शरण की।

0: करबला का सबसे बड़ा पैगाम ये है कि जुल्म, जबर, नाइंसाफी के सामने खामोश नहीं रहना चाहिए, बल्कि हक व इंसाफ की हिमायत करनी चाहिए, सब्र और इस्तकामत से काम लेना चाहिए। कुर्बानी का जज्बा भी हमें ये सिखाता है, इत्तेहाद और भाईचारे का पैगाम भी देता है। राजदा नौजवानों के लिए हमारा यही पैगाम है कि आज के नौजवान कौम का सरमाया है, उन्हें चाहिए कि सच्चाई को इख्तियार करें, वालदैन और इसाज़ा का एहतराम करें, तालीम को अहमियत दें, अच्छे अखलाक बनाएं, मुआशरे की इस्लाह में अपना किरदार अदा करें, जुल्म, बदउनवानी और बुराई से दूर रहें।
1: तो शगुफ्ता, मुहर्रम का ये खास मौका है और इस खास मौके पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारी एक मेहमान है तरन्नुम बानो, जो कि एक मकाला हमें सुनाने वाली हैं मुहर्रम की अहमियत।
2: मुहर्रमुल हराम इस्लामी कैलेंडर यानी हिजरी तकवीम का पहला महीना है। ये इन चार महीनों में शामिल है जिन्हें कुरान मजीद ने हुरमात यानी हुरमत वाले महीने करार दिया है। सूरतुल तौबा की आयत 36 में इरशाद बारी ताला है, यकीनन अल्लाह के नजदीक महीनों की तादाद 12 है, इनमें से चार महीने हुरमत वाले हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने खुसूसी हुरमत और अजमत अता फरमाई है। इस महीने में हमें इबादत, तकवा, सबर और कुर्बानी का पैगाम मिलता है। 10वीं मुहर्रम यानी यौम आशूरा इस्लामी तारीख का एक अहम दिन है। इसी दिन नवासे रसूल जिगरे गोशा बतौल हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हा ने अपने अहल खाना और रुफका के साथ मैदान करबला में हक व सदाकत के खातिर अजीम कुर्बानी पेश की। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हा, हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह अन्हा और हजरत फातमा जहरा रजी अल्लाह अन्हा के फर्जंद और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब नवासे थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप से बेहद मोहब्बत फरमाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हा की पूरी जिंदगी आला इखलाक, तकवा, सखावत, शुजात और इंसान दोस्ती का हक नमूना थी। आपने हमेशा सच्चाई, इंसाफ और हक का साथ दिया। जब जुल्म और नाइंसाफी के हालात पैदा हुए तो आपने बातिल के सामने झुकने के बजाय हक पर कायम रहने की तरजीह दी। वाकई करबला महज एक तारीखी सानहा नहीं बल्कि ये इंसानियत के लिए एक अजीम दर्स है। ये वाकया हमें बताता है कि सच्चाई, इंसाफ और उसूलों की हिफाजत के लिए कुर्बानी देना ही अजीम इंसानों का शेवा है। कबल अल इस्लाम अरब के कबाइल साल भर आपस में बरसरे पिकार रहते थे, लेकिन मुहर्रम का महीना शुरू होते ही वो जंग बदल, कत्ल गारत, गिरी और लूट मार को मुकम्मल तौर पर बंद कर देते थे। अगर किसी को अपने बाप का कातिल भी सामने नजर आता तो वो इस महीने की हुरमत की वजह से इससे बदला नहीं लेता था। इस्लाम ने न सिर्फ इस रवायत को बरकरार रखा बल्कि इसे मजीद तकद्दस बख्शा। हिजरत मदीना के बाद जब सहाबा कराम के मशवरे से इस्लामी साल का इब्तदा का फैसला हुआ तो अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हा के दौरे खिलाफत में मुहर्रमुल हराम को साल का पहला महीना मुकर्रर किया गया, क्योंकि इसी महीने में हज के बाद मुसलमान अपने घरों को लौटते हैं और नए सफर का आगाज होता है। आशूरा की तारीखी अजमत और अंबिया की तारीख। मुहर्रमुल हराम 10वीं तारीख को यौम आशूरा कहा जाता है। ये दिन सिर्फ वाकया करबला की वजह से ही अहम नहीं है बल्कि कायनात की तखलीक से लेकर अंबिया अलैहिस्सलाम की तारीख तक इस दिन बेशुमार अजीमुश्शान वाकयात रूनुमा हुए हैं। तखलीक कायनात और हजरत आदम रवायात के मुताबिक इसी दिन जमीन व आसमान को पैदा किया गया और इसी मुबारक दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तोबा बारगाह इलाही में कबूल हुई। किश्ती नूह को नजात। जब दुनिया अजीम तूफान आया तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती महीनों पानी पर तैरती रही। आशूरा के दिन ही वो कश्ती जूदी पहाड़ पर जाकर रुकी और इंसानियत को नई जिंदगी मिली। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इसी दिन पैदा हुए और नमरूद की दहकती हुई आग से उन्हें इसी दिन सलामत निकाला गया। जब फिरौन ने बनी इसराइल पर जुल्म की इंतहा कर दी तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर निकले। 10वीं मुहर्रम को अल्लाह ताला ने बहरे खुलजुम यानी सुर्ख समुंदर में रास्ते बनाकर मूसा और उनकी कौम को पार लगाया और फिरौन को उसके लश्कर समेत से एजाज का इंतकाद करते हैं, जहां करबला के मसायब बयान किए जाते हैं, मातमी जुलूस निकाले जाते हैं और नूहा खानी के जरिए अपने गम का इजहार किया जाता है। जिक्र अहले बैत और रोजे। अहले सुन्नत व जमायत इन दिनों में इमाम आली मुकाम की सीरत पर सेमिनार और कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करते हैं। आशूरा के दिन मसाजिद में नफिल नमाज, कुरान खानी और रोजों का खुसूसी एहतमाम किया जाता है। सबीलें और सखावत। इमाम हुसैन की प्यास की याद में दुनिया भर में हर सड़क और गली में ठंडे पानी और शरबत की सबीलें लगाई जाती हैं और लंगर यानी खाना गरीबों और मुसाफिरों में तकसीम किया जाता है। मौजूदा दौर की जरूरत आज

अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम, प्रस्तुति थी प्रभु शरण की। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आपको आज प्रस्तुत होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों से अवगत करा दें। अब से कुछ ही देर में यानी 4:35 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम सांझ सरगम। पांच बजे का वक्त है प्रादेशिक मुख्य समाचार। पांच बजकर 2 मिनट पर आप सुनेंगे युवाओं का कार्यक्रम युववाणी। प्रस्तुति होगी गौरव कुमार पांडे। 5:30 पर आप सुनेंगे श्रमिक भाई बहनों का कार्यक्रम श्रमिक लोग। प्रस्तुति प्रशांत गौरव। 6 बजे का वक्त है प्रादेशिक मुख्य समाचार का। 6:02 पर आप सुनेंगे किसान भाई बहनों पर आधारित कार्यक्रम खेती बारी। 6:32 पर कार्यक्रम हमारी दुनिया। 7 बजे प्रादेशिक समाचार। सात बजकर 15 मिनट पर आप सुनेंगे आदिवासी अखड़ा। आज का कार्यक्रम आप सुनेंगे हो भाषा में। प्रस्तुत करता होंगे गौरव कुमार पांडे। 7:45 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम सहिया। 8 बजे आप सुनेंगे फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम रजनीगंधा।

8:30 पर आप सुनेंगे सुर्खियों में, 8:45 पर समाचार संध्या, 9:00 न्यूज एट 9, 9:15 पर उर्दू में समाचार और 9:30 पर करंट अफेयर।

10:30 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत में आज कलाकार होंगे उस्ताद सबरी खान। 11:00 हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम सांझ सरगम। क्या है ना दोस्तों, की जिंदगी की भागदौड़ तो बनी रहती है और इन जिंदगी की उलझनों में सुबह से शाम तक हम परेशान बेचैन रहते हैं और इन परेशानियों के बीच हमारे चेहरे पर कहीं ना कहीं उदासी भी आ जाती है। तो वो आपने सुना है ना, वो कहते हैं ना कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। परेशानी कुछ भी हो, जैसी भी हो, लेकिन चेहरे पर अगर मुस्कुराहट आ जाए तो आपकी आधी परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाती है। सही कहा ना मैंने, आप कभी आजमा कर देखिएगा। और जिंदगी की भाग दौड़ के बीच जब आधी परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाए तो संगीत ही वो साथी है जो थके हुए मन को सुकून देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं एक ऐसे गीत से जो प्यार एहसास और मधुरता से भरपूर है।

0: जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा।
1: जिंदगी कभी आसान नहीं होती, लेकिन एक सच हमेशा याद रखिए, मुश्किलें इंसान को तोड़ने नहीं तराशने आती हैं। अगर रास्ते में संघर्ष ना हो, मंजिल की अहमियत भी समझ नहीं आती। जो लोग गिरकर संभलना सीख जाते हैं ना, वही आगे चलकर दूसरों का सहारा बनते हैं। कभी अपने हालात को देखकर निराश मत होइए। आज का अंधेरा कल की रोशनी की तैयारी भी हो सकती है। वक्त बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, बस हौसला और मेहनत नहीं रुकनी चाहिए।
0: इसी के साथ ये सुनिए अगला गीत।

0: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी रांची। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सांझ सरगम। ये सांझ सरगम कार्यक्रम में आप जो गीत सुन रहे हैं, पुरानी यादों को ताजा करके होठों पर निश्चित आपके मुस्कान बिखेर रही होगी। क्या कहें, पुराने गीतों की यही खूबसूरती है कि समय बदल जाता है लेकिन इनकी मिठास कभी कम नहीं होती। गीत पुराने हो या नए, संगीत की ये खूबसूरती है। संगीत वह भाषा है दोस्तों, जिसे समझने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती। सुर सीधे दिल से संवाद करते हैं, क्यों, है ना?
1: So you were telling the truth.
2: You didn't believe.

0: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का रांची केंद्र। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम सांझ सरगम। फिल्मी गीत केवल मनोरंजन नहीं बल्कि हमारी भावनाओं, रिश्तों और यादों का भी आईना होते हैं। तो चलिए ये अगला गीत सुन।
1: Browser for Games.

ये थी सांस सरगम के आज की अंतिम प्रस्तुति। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब से कुछ ही क्षण पश्चात आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार।

0: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं शीला कुमारी। अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी निरोधक दिवस पर आज खूंटी के मुरहू स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। झालसा के निर्देश पर आयोजित इस कार्यक्रम में छात्राओं, शिक्षकों और स्थानीय लोगों को नशे के दुष्प्रभाव, NDPS अधिनियम के प्रावधानों तथा निःशुल्क विधिक सहायता की जानकारी दी गयी। नशा मुक्ति एवं अवैध तस्करी निषेध दिवस के अवसर पर साहिबगंज में जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष अखिल कुमार के मार्गदर्शन में आयोजित इस अभियान का उद्देश्य विशेष रूप से युवाओं को नशे के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक करना और नशा मुक्त समाज के निर्माण के लिए प्रेरित करना था। पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर क्षेत्र के करंजो में आयोजित दो दिवसीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियान में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने संगठन विस्तार पर जोर दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2014 से शुरू की गई जन कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख करते हुए उन्हें आम लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने का आह्वान किया। गढ़वा जिला प्रशासन की ओर से रक्त की कमी से जूझ रहे मरीजों की मदद के लिए कल गोविंद उच्च विद्यालय मैदान में मेगा रक्तदान शिविर आयोजित किया जाएगा। उपायुक्त पशुपतिनाथ मिश्र ने जिले के नागरिकों, युवाओं, सामाजिक संगठनों और स्वयं सेवकों से अधिक संख्या में शिविर में पहुंचकर स्वैच्छिक रक्तदान करने की अपील की है। मुहर्रम के अवसर पर कल रांची जिले में ताजिया और अखाड़ा जुलूसों के कारण यातायात प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने जिले के सभी सरकारी, गैर सरकारी और निजी विद्यालयों में अवकाश घोषित किया है। जिला उपायुक्त मंजुनाथ भजयंत्र के निर्देशानुसार केवल पूर्व निर्धारित परीक्षाएं अत्यंत आवश्यक होने पर जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचना देकर कराई जा सकेंगी। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक मुख्य समाचार। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है युवाओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी।

0: हेलो, गुड इवनिंग जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम युवानी में। और आज के इस सफर में मैं हूं आपका दोस्त रजत।
1: और मैं हूं आपका दोस्त ओमकार।
0: आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हम हर रोज की तरह हाजिर हैं आपके लिए ढेर सारी जानकारी लेकर, और साथ ही साथ दोस्तों हम सुनेंगे प्यारे प्यारे गाने भी, क्योंकि एंटरटेनमेंट बहुत जरूरी है और एंटरटेनमेंट के बिना लाइफ अधूरी है। दोस्तों, एंटरटेनमेंट के साथ साथ हमारा अवेयर रहना भी बहुत जरूरी है, इसलिए दोस्तों आज हमको बताने वाले एक ऐसे ही खास दिन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 26 जून को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य नशीले पदार्थों के सेवन को रोकने, अवैध तस्करी को खत्म करने और एक नशा मुक्त समाज का निर्माण करने के लिए वैश्विक जागरूकता और सहयोग को बढ़ाना है। क्यों ओमकार?
1: बिल्कुल सही कहा रजत तुमने। संयुक्त राष्ट्र ने 1987 में 26 जून को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग घोषित किया था, जिसका मकसद नशे की लत और ड्रग्स की तस्करी से होने वाले नुकसान के बारे में दुनिया भर में जागरूकता फैलाना था।
0: हाँ दोस्तों, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग 2026 की थीम है द एविडेंस इज क्लियर, इन्वेस्ट इन प्रिवेंशन, यानी कि हमें नशे की लत के इलाज के बजाय उसके बचाव पर ध्यान देना चाहिए। इलाज से बेहतर है कि लोग नशे की तरफ जाए ही नहीं।
1: दोस्तों, नशे के लत के शिकार सबसे ज़्यादा युवा ही होते हैं। स्ट्रेस, पीयर प्रेशर, क्यूरियोसिटी में नशे की ओर चलते जाते हैं। नशे का हमारे हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ता है। हेपेटाइटिस, लिवर डैमेज, डिप्रेशन इसके कई उदाहरण हैं।
0: नशा जिंदगी को तबाह कर देता है, इसलिए हमें नशे को ना करना होगा। दोस्त भी दबाव डाले तो साफ मना करें। कूल बनने के लिए जिंदगी दांव पर ना लगाएं। खेल, म्यूजिक, आर्ट, स्ट्रेस भगाने के लिए नशा नहीं हॉबी चुने।
1: दोस्तों, नशा 5 मिनट का मजा और पूरी जिंदगी सजा देता है। एक बार की लत पीढ़ियों को रुला देता है। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग का उद्देश्य दुनिया भर में नशीली दवाओं के मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन बनाना है,
0: और जो लोग नशे के आदि हैं उनके लिए ट्रीटमेंट, रिहैबिलिटेशन की सुविधा सुनिश्चित करना है। इस दिन नशा मुक्त भारत अभियान के तहत देश भर में जागरूकता कार्यक्रम, वेबिनार, योग सत्र और रैलियों का आयोजन किया जाता है। यदि आप नशा मुक्ति से जुड़ी मदद, परामर्श या रिहैब सेंटर्स की जानकारी चाहते हैं तो राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान NISD या सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर सहायता प्राप्त कर सकते हैं, या राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 14446 या 1933 या इसके वेबसाइट nmdp.nhp.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, हमें नशा छोड़ना चाहिए और जीवन चुनना चाहिए। नशा छोड़े जीवन चुने, ये सिर्फ नारा नहीं जिंदगी बचाने का मंत्र है। नशा छोड़ना सिर्फ एक आदत बदलना ही नहीं, बल्कि अपने और अपने परिवार के उज्जवल भविष्य को चुनना है। नशे से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बहुत नुकसान होता है। क्यों ओमकार?
1: बिल्कुल सही कहा रजत। मदद उपलब्ध है दोस्तों, और सही समय पर सही कदम उठाने से जीवन को पटरी पर लाया जा सकता है। नशा छोड़ने से हमारा स्वास्थ्य बेहतर होता है, लीवर, फेफड़े और दिल दुरुस्त होते हैं, पारिवारिक शांति रहती है, रिश्तों में विश्वास और खुशियां वापस लौटती हैं, आप सक्रिय और सकारात्मक महसूस करते हैं।
0: बिल्कुल दोस्तों, हम सभी को नशा मुक्त भारत अभियान से जुड़ना चाहिए। नशा मुक्ति और रिहैब सेंटर्स मौजूद हैं जो नशा छोड़ने में हमारी मदद करते हैं। नशे के इस अंधकार से बाहर निकलने में हमें कभी देर नहीं करनी चाहिए। आज ही नशा छोड़ने का संकल्प लें और बेहतर कल की ओर पहला कदम बढ़ाएं। नशा छोड़ना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। पहला कदम जरूर मुश्किल होता है, पर वही जिंदगी भी बदलता है। डॉक्टर, काउंसलर, नशा मुक्ति केंद्र में जाना कमजोरी नहीं बल्कि बहादुरी है। एक फैसला जिंदगी पलट सकता है, इसलिए आज ही वह फैसला ले, नशा छोड़िए, खुद को, परिवार को और अपने कल को चुनिए।
1: तो दोस्तों, बातें तो और भी करनी थी, लेकिन लेते हैं अब एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, आज का दिन इतिहास के विषय में भी काफी ज्यादा खास है। आइए दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं भारत तथा विश्व के इतिहास पर। 1955 को आज के ही दिन मध्य प्रदेश बना था बाघ राज्य। वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में भारत सरकार

0: सरकार द्वारा मध्य प्रदेश को आधिकारिक तौर पर टाइगर स्टेट बाघ राज्य घोषित किया गया था।
1: दोस्तों, आज ही के दिन बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता अर्जुन कपूर का जन्म हुआ था 1985 में।
0: दोस्तों, अगर हम बात करें विश्व विशेष के इतिहास की, तो हर साल 26 जून को दुनिया भर में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग मनाया जाता है। भारत में भी इस दिन को कई विशेष जागरूकता अभियान के जरिए मनाया जाता है। इसकी स्थापना यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा 1987 को की गई थी। दोस्तों, 26 जून 1980 को आज के ही दिन तेलुगु सिनेमा के जाने माने अभिनेता उदय किरण का जन्म हुआ था।
1: साथ ही दोस्तों, कोल्हापुर के महान मराठा राजा और समाज सुधारक साहू महाराज का जन्म आज ही के दिन 1874 में हुआ था।
0: आज ही के दिन 1945 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में 50 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा यूएन चार्टर पर ऐतिहासिक हस्ताक्षर किया गया था। इसके साथ ही दोस्तों, आज के ही दिन इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य यातना यानी टॉर्चर के खिलाफ आवाज उठाना है, पीड़ितों के साथ एकजुटता दिखाना और दुनिया भर के यातना पीड़ितों को न्याय और पुनर्वास प्रदान करने की जागरूकता फैलाना है। दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं करंट अफेयर्स पर। मध्य प्रदेश के कृषि और खाद्य उत्पादों जैसे इंदौरी मालवी आलू, कराड़ू कंद और रतलाम का बलम ककड़ी आदि को प्रतिष्ठित ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्रदान किया गया है। हाल ही में दोस्तों, जारी स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर 2026 रिपोर्ट्स के अनुसार भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जल जीव मत्स्य उत्पादक देश बन गया है। दोस्तों, शिक्षा मंत्रालय और UGC ने भारत में विदेशी उच्च शिक्षण स्थानों को के परिसरों की स्थापना एवं संचालन विनियम 2023 के तहत लिवरपूल यूनिवर्सिटी को बेंगलुरु में अपना ब्रांच कैंपस खोलने की अनुमति दे दी है।
1: दोस्तों, हम आपसे बातें और भी करेंगे, पर आपको लिए चलते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया में और सुनते हैं एक प्यारा सा गाना।

0: दोस्तों अब हम आपको लिए चलते हैं रोचक तथ्यों की दुनिया में और आपको बताते हैं कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों जैसा हमें पता है कि डॉल्फिन पानी की रानी है, लेकिन सांस रोकने के मामले में एक सुस्त जानवर उससे भी आगे है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्लॉथ की, जो पानी के अंदर अपनी सांस 40 मिनट तक रोक सकता है, जबकि डॉल्फिन को लगभग 10 से 15 मिनट में सांस लेने के लिए पानी की सतह के ऊपर आना पड़ता है। अपनी धीमी धड़कन की वजह से स्लॉथ ऐसा कर पाता है।
1: बिल्कुल सही कहा रजत। दोस्तों क्या हमें पता है कि अन्य जीवों के मुकाबले शार्क और रे मछली को कैंसर या ट्यूमर्स होने के चांसेस बहुत ही कम है। कार्टिलेज का शरीर कैंसर की कोशिकाओं को पनपने से रोकता है। इसके साथ ही इम्यूनिटी सिस्टम भी इनका बहुत मजबूत होता है और इनका डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म भी काफ़ी उन्नत होता है।

0: दोस्तों, जब हम शार्क की बात कर रहे हैं तो शार्क की कुछ प्रजातियों के बारे में चर्चा करते हैं जिन्हें हम लिविंग फॉसिल भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, फ्रिल्ड शार्क जो कि सांप जैसा दिखता है वो डीप ओशियन में पाया जाता है। इसके साथ ही दोस्तों गॉबलिन शार्क भी शार्क की एक किस्म है, वो भी डीप ओशियन में पाया जाता है। इनके शारीरिक बनावट में कभी बदलाव नहीं आया।
1: दोस्तों, आज हमने नशा मुक्ति के बारे में काफ़ी बातें की, हमने इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग के बारे में भी चर्चा की। दोस्तों, हम सभी को नशा छोड़ना चाहिए। नशा मुक्त भारत अभियान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रीय अभियान है, जिसका उद्देश्य देश को नशा मुक्त करना। यह अभियान 15 अगस्त 2020 को शुरू हुआ था, अब यह पूरे भारत में फैल चुका है। हम सभी को इससे जुड़ना चाहिए। नशा एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरी पीढ़ी को बर्बाद करती है, इसे रोकना हम सब की जिम्मेदारी है। नशा मुक्त भारत हम सब की जिम्मेदारी है, इसलिए हम सभी को इससे जुड़ना चाहिए और अपने आसपास के लोगों को भी इसके बारे में जागरूक करना चाहिए। दोस्तों, आपसे बातें तो और भी करनी थी पर घड़ी की सुइयां इशारा कर रही है, वक्त हो चला आपसे विदा लेने का। हम फिर मिलेंगे आपसे ढेर सारी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त रजत
0: और ओमकार
1: को दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवाओं का पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी। युवाणी में आपने फिल्म संगीत से मनोरंजन भी किया, इतिहास के बारे में जानकारी मिली, रोचक तथ्यों को जाना, समसामयिक की विषयों को भी जाना। प्रस्तुति थी गौरव कुमार पांडे की। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है श्रमिक भाई बहनों का कार्यक्रम श्रमिक लोक।

0: नमस्कार जोहार श्रमिक साथियों, मैं हूं आपका दोस्त आशीष और आप सभी साथियों का कार्यक्रम श्रमिक लोक में बहुत स्वागत करता हूं। आज मेरे साथ हैं सुषमा, आपको भी मेरा नमस्कार।
1: नमस्कार आशीष, और साथ ही सभी श्रमिक श्रोतागण को सुषमा का भी प्यार भरा नमस्कार। और साथियों, आशा करती हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। और साथियों, स्वस्थ शरीर और शांत मन जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव, अनियमित दिनचर्या और शारीरिक निष्क्रियता अनेक बीमारियों को जन्म देती है। क्यों आशीष, मैं सही कह रही हूँ?
0: बिल्कुल सही कहा आपने सुषमा। और ऐसे समय में योग एक ऐसी जीवन पद्धति के रूप में हमारे सामने आता है जो हमें तन, मन और आत्मा से स्वस्थ रखने का मार्ग दिखाता है। योग के विभिन्न आसन और प्राणायाम हमारे शरीर की कार्य क्षमता बढ़ाते हैं।
1: साथियों, योग हमारे रक्त संचार को बेहतर बनाता है, पाचन तंत्र को मजबूत करता है तथा हृदय और फेफड़ों को स्वस्थ रखने में सहायक देता है। इतना ही नहीं साथियों, नियमित योग करने से मधुमेह, मोटापा, उच्च रक्तचाप जैसे जीवन शैली संबंधी बीमारियों के जो जोखिम होते हैं उनको कम किया जा सकता है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और साथियों, हम लोगों को भी यह संकल्प लेना चाहिए कि योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएंगे।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि जब शरीर स्वस्थ होगा, मन प्रसन्न होगा और जीवन संतुलित होगा, तभी हम अपने सपनों को साकार कर पाएंगे।
1: बिल्कुल, ये आज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी में प्रतिदिन कुछ जो मिनट है योग के लिए निकालकर हम स्वस्थ, संतुलित और निरोग जीवन की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। तो साथियों, योग अपनाइए, स्वस्थ और खुशहाली अब पाइए। क्यों?
0: बिल्कुल सही कहा आपने। तो बड़ा अच्छा, इसमें एक लाइन भी आपने जोड़ दिया, लोगों को और अच्छे से समझ में आएंगी बातें।

0: और
1: चाहिए।
0: ये जो आपने कहा कि योग अपनाइए स्वस्थ और खुशहाली पाइए, ये लाइन मुझे
1: बिल्कुल।
0: बहुत पसंद आया। और मुझे लगता है कि ये जो 21 जून को योग करते हैं और फिर भूल जाते हैं, साथियों ऐसा ना
1: बिल्कुल, केवल एक दिन के लिए नहीं,
0: करें।
1: अपने दिनचर्या में इसे शामिल कीजिए, है ना?
0: बिल्कुल। और साथियों, अब हम बात करेंगे एक ऐसी बुराई की जो न केवल स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है बल्कि परिवार की आर्थिक स्थिति को भी कमजोर कर देती है, और वह बुराई है नशापान, जो आपके जीवन को हर तरह से प्रभावित करती है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। हर व्यक्ति मेहनत करता है ताकि अपने परिवार का भविष्य बेहतर बना सके, लेकिन जब कमाई का एक बड़ा हिस्सा शराब, तंबाकू, गुटखा या अन्य नशे की वस्तुओं पर खर्च होने लगता है ना, तो आर्थिक समस्याएं बढ़ने लगती हैं।
0: हाँ साथियों, जब नशे की लत लगने लगती है तो कई बार मन में ये विचार आता है कि मैं तो थोड़े से पैसे शराब और तंबाकू पर खर्च करता हूँ, इतने से मेरा क्या ही नुकसान होगा।
1: लेकिन साथियों, यही थोड़ा थोड़ा मिलकर महीने में हजारों रुपये बन जाता है। अगर यही पैसा बचाया जाए तो बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य और भविष्य में काम आ सकता है ना?
0: बिल्कुल सही कहा। और नशा केवल धन की बर्बादी नहीं करता बल्कि कई गंभीर बीमारियों का कारण भी बनता है। इलाज पर होने वाला अतिरिक्त खर्च परिवार की बचत और काम कर्ज कम कर देता है।
1: बिल्कुल साथियों, हमें ये दृढ़ संकल्प लेना चाहिए कि हमें नशे से दूर रहेंगे, अपनी मेहनत की कमाई को सही दिशा देंगे और परिवार के सुखद भविष्य का निर्माण करेंगे। बिल्कुल, नशे से दूर रहने से जो है हमारी कमाई जो है वो हम बचा पाएंगे और उसे परिवार के बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और उज्जवल भविष्य पर खर्च करेंगे। बिल्कुल, नशा छोड़िए, बचत जोड़िए और खुशहाल जीवन की ओर आगे बढ़िए।
0: नशा पान के बुराई को और अधिक समझने के लिए अब आपको सुनवाते हैं एक वार्ता। विषय
1: बिल्कुल
0: है
1: बिल्कुल, नशा केवल एक बुरी आदत नहीं है आशीष, बल्कि ये समाज, परिवार और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी गंभीर खतरा है। नशीले पदार्थों की तस्करी और उनकी बढ़ती उपलब्धता बच्चों और युवाओं के भविष्य को अंधकार की ओर धकेल रही है। इसी समस्या के कारण शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक मूल्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। तो आइए सुनते हैं ये वार्ता और जानते हैं कि नशे के इस जाल से बच्चों और समाज को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। आज के वार्ताकार हैं विशाल कुमार श्रीवास्तव।
2: जहाँ मासूमियत, सपने और बेपरवाह किलकारियाँ होती हैं, लेकिन आज के इस क्रूर यथार्थ में मासूमियत के इस आंगन पर नशे के जाल और अवैध तस्करी का एक काला साया मंडरा रहा है। जो उम्र हाथ में किताब थामने और तितलियों के पीछे भागने की होती है, उस उम्र में देश के कई मासूम बच्चे ड्रग्स के सौदागरों और मानव तस्करों के चंगुल में फंस कर अपना भविष्य दम तोड़ते हुए देख रहे हैं। यह सिर्फ एक सामाजिक बुराई नहीं बल्कि हमारे भविष्य पर मंडरा एक भयानक संकट। नशे की समस्या कभी वयस्कों या समाज के एक खास वर्ग तक सीमित मानी जाती थी, लेकिन पिछले कुछ दशकों में इसने अपनी सीमाएं तोड़ दी हैं। आज नशीले पदार्थों का बाजार बच्चों को अपना सबसे आसान और टिकाऊ शिकार मान रहा है। दवा और नशीले पदार्थों के तस्कर बहुत सोच समझ कर बच्चों को अपना निशाना बनाते। इसके पीछे कई रणनीतिक और आपराधिक कारण है, क्योंकि बच्चे अच्छे और बुरे के बीच अंतर करने में पूरी तरह सक्षम नहीं होते। उन्हें आसानी से बहलाया फुसलाया जा सकता है। बच्चे लंबे समय के उपभोक्ता हैं। यदि किसी बच्चे को 10 से 12 वर्ष की उम्र में नशे की लत लगा दी जाए तो वह जीवन भर के लिए उस आपराधिक सिंडिकेट का एक पक्का ग्राहक बन जाता है। कानून में किशोरों के लिए सजा के प्रावधान वयस्कों की तुलना में कम सख्त होते हैं। तस्कर इस कानूनी खामी का फायदा उठाते हैं और बच्चों को नशीले पदार्थों की हेरा फेरी के काम में लगा देते हैं, क्योंकि पकड़े जाने पर भी वे गंभीर सजा से बच जाते हैं। बच्चों में नशे की शुरुआत बहुत ही साधारण और कम खर्चीली चीजों से होती है, जो बाद में चलकर घातक और महंगे सिंथेटिक ड्रग्स में बदल जाती है। झुग्गी झोपड़ियों, रेलवे स्टेशनों और सड़कों पर रहने वाले अत्यंत गरीब बच्चों में इसकी शुरुआत बहुत भयानक है। ये बच्चे साइकिल के पंक्चर, जोड़ने वाले सोल्यूशन, एडहेसिव, नेल पॉलिश रिमूवर, थिनर, पेट्रोल और स्कूलों में इस्तेमाल होने वाले करेक्शन फ्लूइड, व्हाइट को रुमाल या कपड़ा पर लगाकर सूंघते हैं। यह बेहद सस्ता और आसानी से उपलब्ध होने वाला नशा है जो कि सीधे उनके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या

यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर हमला करता है। इसके बाद नंबर आता है सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, थैनी और शराब का। अक्सर बच्चे अपने बड़ों को देखकर या संगति के असर में आकर इसे स्टाइल स्टेटमेंट या उत्सुकतावश अपनाते हैं। दवाइयों का दुरुपयोग भी नशा का एक कारण है। खांसी के कफ सिरप, दर्द निवारक गोलियां और नींद की दवाइयों का अत्यधिक सेवन बच्चों द्वारा नशे के रूप में किया जा रहा है। और जब लत गहरी हो जाती है तो बच्चे गांजा, चरस, अफीम से होते हुए हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर तथा मेथामफेटामाइन जैसी खतरनाक केमिकल ड्रग्स तक पहुंच जाते हैं। नशे का यह जाल बच्चों के कोमल शरीर और मस्तिष्क को इस कदर खोखला कर देता है कि वे जीते जी एक लाश की तरह बनकर रह जाते हैं। नशे के कारण मस्तिष्क का विकास अवरुद्ध हो जाता है। मानव मस्तिष्क का विकास 25 वर्ष की आयु तक चलता रहता है। बचपन या किशोरावस्था में नशीले पदार्थों का सेवन मस्तिष्क के उस हिस्से को अस्थायी रूप से क्षतिग्रस्त कर देता है जो निर्णय लेने, भावनाओं को नियंत्रित करने और सीखने की क्षमता के लिए जिम्मेदार होता है। सुलेशन और थिनर सूंघने वाले बच्चों के फेफड़े, लीवर और किडनी बहुत जल्दी काम करना बंद कर देते हैं। नशीले इंजेक्शन साझा करने के कारण इन मासूमों में HIV, एड्स और हेपाटाइटिस बी व सी जैसी जानलेवा बीमारियां फैल रही हैं। नशे की लत से पीड़ित बच्चे तीव्र अवसाद, अत्यधिक आक्रामकता, मति भ्रम जिसे हम हेलुसिनेशन भी कहते हैं और सिज़ोफ्रेनिया जैसी गंभीर मानसिक बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। कई बार नशा न मिलने से बच्चे आत्महत्या जैसा आत्मघाती कदम भी उठा लेते हैं। अवैध तस्करी या मानव तस्करी आधुनिक युग का गुलामी प्रथा का दूसरा रूप है। यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा संगठित अपराध नेटवर्क है जिससे हर साल अरबों डॉलर की अवैध कमाई होती है। इस व्यापार में सबसे ज्यादा मांग और सबसे कम कीमत बच्चों की ही होती है। तस्करी कर लाए गए बच्चों का जीवन किसी नरक से कम नहीं होता। उन्हें मुख्य रूप से घिनौने और अमानवीय दलदलों में ढकेल दिया जाता है, जैसे कि जबरन बाल श्रम जिसे हम फोर्स्ड चाइल्ड लेबर भी कहते हैं। सस्ते श्रम की चाह में बच्चों को उनके परिवारों से अलग कर सुदूर राज्यों या शहरों के कारखानों में भेज दिया जाता है। ईंट भट्टे और चूड़ी कारखानों में बच्चों को अत्यधिक उच्च तापमान और धूल से भरे माहौल में 15-15 घंटे तक काम करवाया जाता है। पटाखा और माचिस उद्योग में बारूद और रसायनों के बीच काम करने से इन बच्चों की उम्र आधी रह जाती है। कालीन और कपड़ा उद्योगों में छोटे और कोमल हाथों से बारीक बुनाई कराने के लिए बच्चों को बंधक बनाकर रखा जाता है, जहां उन्हें पेट भर खाना भी नसीब नहीं होता। मानव तस्करी का सबसे घिनौना और शर्मनाक पहलू है व्यवसायिक यौन शोषण। विशेषकर छोटी बच्चियों और किशोरों को बहला फुसला कर या अपहरण कर शहरों के रेड लाइट इलाकों में बेच दिया जाता है। यहां उनका शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक शोषण इस सीमा तक किया जाता है कि उनकी आत्मा तक लहूलुहान हो जाती है। वे कभी सामान्य सामाजिक जीवन में वापस लौटने की स्थिति में नहीं रह पाती। महानगरों के चौराहों, ट्रैफिक सिग्नलों, धार्मिक स्थलों और रेलवे स्टेशनों पर भीख मांगते बच्चे हम सब रोज देखते हैं। लेकिन यह कोई व्यक्तिगत लाचारी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा संगठित माफिया नेटवर्क है। तस्कर बच्चों को अगवा करते हैं और सहानुभूति बटोरने के लिए कई बार उनके हाथ पैर काट दिए जाते हैं, उन्हें अंधा कर दिया जाता है या गर्म तेजाब से जला दिया जाता है। इन बच्चों को रोज एक निश्चित रकम कमाकर अपने अकाओं को देनी होती है, अन्यथा उन्हें बेरहमी से पीटा जाता है और भूखा रखा जाता है। नशे और अवैध तस्करी का घातक गठजोड़ है। नशे का जाल और अवैध तस्करी कोई दो अलग अलग समस्याएं नहीं है बल्कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इन दोनों के बीच का गठजोड़ इतना गहरा और व्यवस्थित है कि यह एक दूसरे को पोषित करता है। जब तस्कर बच्चों का अपहरण करते हैं या उनसे उन्हें खरीदते हैं तो बच्चे शुरुआत में भागने का प्रयास करते हैं, रोते हैं और विद्रोह करते हैं। उनके इस प्रतिरोध को तोड़ने और उन्हें पूरी तरह अपने नियंत्रण में लेने के लिए तस्कर उन्हें जबरन नशे की हैवी डोज देना शुरू कर देते हैं। एक बार बच्चा जब नशे का आदि हो जाता है तो वह भागने की सोचना बंद कर देता है। अब उसकी सबसे बड़ी जरूरत वह नशा बन जाता है जो सिर्फ उसका शोषक या मालिक ही उसे दे सकता है। इस प्रकार नशा बच्चों को मानसिक और शारीरिक रूप से गुलाम बनाए रखने का सबसे क्रूर औजार बन जाता है। अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय नशीले पदार्थों की तस्करी में बच्चों का इस्तेमाल कुरियर के रूप में धड़ल्ले से किया जा रहा है, क्योंकि रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों या सीमाओं पर सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस को आमतौर पर छोटे बच्चों पर शक नहीं होता। जो बच्चे किसी न किसी तरह खुले समाज में रहते हुए नशे के जाल में फंस जाते हैं वे बहुत जल्द अपनी आर्थिक सीमाओं तक पहुंच जाते हैं। नशा महंगा होता है और उसे खरीदने के लिए पैसों की जरूरत होती है। जब घर से पैसे मिलना बंद हो जाते हैं तो तस्कर और पेडलर्स इन बच्चों के सामने एक ही रास्ता छोड़ते हैं। अगर नशा चाहिए तो हमारे लिए काम करो। इस तरह एक
सामान्य परिवार का बच्चा

0: पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा का अभाव होने के कारण लोग तस्करों के झूठे वादों जैसे शहर में अच्छी नौकरी मुफ्त शिक्षा के झांसे में आसानी से आ जाते हैं। आज का समाज तेजी से बदल रहा है। इस बदलते दौर ने बच्चों पर एक अलग तरह का मानसिक दबाव बना दिया है। दोस्तों के समूह में खुद को आधुनिक कूल या बड़ा दिखाने की चाह में बच्चे पहली बार नशीले पदार्थों का स्वाद चखते हैं। नशे के जाल और अवैध तस्करी को रोकने के लिए कई कानून बनाए गए हैं, पर फिर भी बचपन लगातार तबाह क्यों हो रहा है। इसका सीधा सा उत्तर यह है कि हमारे कानून और उनकी जमीनी हकीकत के बीच एक बहुत बड़ी खाई है। अवैध तस्करी और ड्रग्स के मामलों में गवाहों का मुकर जाना, सबूतों का अभाव और लंबी अदालती प्रक्रिया के कारण दोषियों को सजा मिलने की दर बेहद कम है। जो बच्चे नशे के जाल से छुड़ाए जाते हैं या तस्करी से मुक्त कराए जाते हैं, उन्हें रखने के लिए सरकारी शेल्टर होम और नशा मुक्ति केंद्रों की संख्या न केवल बहुत कम है बल्कि उनकी स्थिति भी बदतर है। हमारा समाज नशे की लत से पीड़ित बच्चे को एक अपराधी या चर्सी के नजर से देखता है, न कि एक पीड़ित के रूप में। जब समाज और परिवार ही बच्चे को धुतकार देते हैं तो उनके पास दोबारा उसी अंधेरी दुनिया में लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। नशे का जाल और अवैध तस्करी जैसी वैश्विक और गहरी जड़ें जमा चुकी बीमारी का कोई आसान या रातों रात निकलने वाला समाधान नहीं है। इसके लिए एक बहुआयामी दीर्घकालिक और एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जैसे प्रशासनिक और कानूनी मुस्तैदी होना, शैक्षणिक संस्थानों की समाज को शिक्षित कर जागरूक करने की भूमिका होना। बचपन किसी भी राष्ट्र का वर्तमान और उसका आने वाला कल होता है। यदि हम अपने बच्चों को एक सुरक्षित, स्वस्थ और भय मुक्त वातावरण नहीं दे पा रहे हैं तो हमारी सारी आर्थिक प्रगति, गगनचुंबी इमारतें, तकनीकी विकास और वैज्ञानिक उपलब्धियां पूरी तरह से बेमानी और खोखली हैं। नशे का जाल और अवैध तस्करी केवल उन बच्चों की समस्या नहीं है जो इसका शिकार हो चुके हैं, बल्कि यह हमारे पूरे समाज की सामूहिक विफलता का एक आईना है। हम एक मूक दर्शक बनकर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला नहीं झाड़ सकते। जब तक समाज का आखिरी व्यक्ति इस लड़ाई को अपनी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं मानेगा, तब तक मासूमियत का यह कत्लेआम थमेगा नहीं। समय आ गया है कि हम सब मिलकर एक ऐसी फौलादी दीवार खड़ी करें जिसे न तो ड्रग्स के काले सौदागर भेद पाएं और न ही इंसानों की मंडी लगाने वाले तस्कर। आइए आज यह प्रतिज्ञा करें कि हम अपने आसपास किसी भी बचपन को मुरझाने नहीं देंगे। हर बच्चे के हाथ में किताब होगी, उसके चेहरे पर एक बेफिक्र मुस्कान होगी और उसकी आंखों में उड़ने के लिए एक असीमित आसमान होगा, क्योंकि जब बचपन बचेगा तभी देश बचेगा और तभी एक सुंदर मानवीय संसार का निर्माण हो सकेगा। नशे के धुएं को चीर कर तस्करी की बेड़ियों को तोड़ना होगा। हर मासूम के बचपन को अब खुशियों के संग जोड़ना होगा।
1: नशे का जाल और तस्करी, तबाह होता बचपन। आज की इस वार्ता से स्पष्ट होता है कि नशा केवल व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज को प्रभावित करता है। बच्चों और युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।
2: बिल्कुल आशीष, जागरूकता, सतर्कता और सकारात्मक मार्गदर्शन के माध्यम से ही हम एक सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। नशे के विरुद्ध आवाज उठाना और अपने आसपास के बच्चों को सही दिशा में सक्रिय भूमिका निभाना हमारी, हम सब की जिम्मेदारी है, है ना। और आशीष, वैसे नशे को लोग कहते हैं ना कि जब ज्यादा गम हो जाए, गम हो जाए या फिर जब ज्यादा खुशियां हो जाए तो नशे का सहारा लेते हैं या नशे का सेवन करते हैं। और
1: क्या बोलते
2: हैं, बाद में कहते हैं कि मुझे शराबी मत कहो। अब इस गाने से ही ज्यादा स्पष्ट हो सकता है ये बात, मेरी बात है।
1: बिल्कुल।

0: वाह, क्या गाना आपने सुनवाया सिचुएशन के अनुसार। मुझे शराबी ना समझो, लेकिन हाँ ये जरूर है कि शराब और नशापान जो भी चीज का है वो लत बहुत खराब है,
1: वो
0: इससे
1: कहते
0: हमेशा
1: हैं ना
0: दूर रहना
1: किसी भी
0: चाहिए।
1: चीज की अति हानिकारक होती है, तो आप उसे लत में ना बदलें। और आशीष, आज हम स्मरण कर रहे हैं महान समाज सुधारक, दूरदर्शी शासक और सामाजिक न्याय के अग्रदूत छत्रपति शाहू जी महाराज की जयंती का। उन्होंने अपना जीवन समाज के वंचित, शोषित और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्रभावी माध्यम मानते हुए उन्होंने सभी वर्गों के लिए शिक्षा के द्वार खोले और समान अवसरों की व्यवस्था को बढ़ावा दिया।
0: साथियों, छत्रपति शाहू जी महाराज ने सामाजिक भेदभाव, ऊंच नीच और असमानता के विरुद्ध संघर्ष करते हुए न्यायपूर्ण समाज की नींव मजबूत की। उनके विचार आज भी हमें समावेशी विकास, सामाजिक समानता और मानव गरिमा का संदेश देते हैं।
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों, उनकी जयंती पर हम एक ऐसे समाज के निर्माण का प्रण लें जहां समानता, शिक्षा और न्याय प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार हो। यही होगी छत्रपति शाहू जी महाराज के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि।
0: बिल्कुल, और साथियों, स्वस्थ समाज की नींव स्वस्थ माँ और स्वस्थ बच्चे पर टिकी होती है। इसी उद्देश्य को लेकर पोषण अभियान के तहत पूरक पोषण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं और बच्चों को आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध कराकर कुपोषण को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है।
1: बिल्कुल सही कहा आशीष आपने। पूरक पोषण बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और वही गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को पर्याप्त पोषण मिलने से उनका स्वास्थ्य बेहतर रहता है और शिशु का विकास भी स्वस्थ रूप से होता है। संतुलित आहार, हरी सब्जियां, दालें, फल, दूध और पौष्टिक खाद्य पदार्थों का नियमित सेवन परिवार को स्वस्थ बनाता है।
0: स्वस्थ माँ होगी तो परिवार खुशहाल होगा और मुस्कुराता बचपन ही विकसित भारत की पहचान बनेगा। पोषण अभियान का संदेश है सही पोषण, देश रोशन। इसी संदेश को हमको बढ़ाना चाहिए, तो क्या एक और गीत सुनवा दिया जाए?
1: बिल्कुल सुनवाते हैं।

0: तो साथियों, इसी गीत के साथ हमारे आज के कार्यक्रम का समय यहीं समाप्त होता है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए। इसी संदेश के साथ अपनी दोस्त सुषमा
1: और आशीष को दीजिए इजाजत। नमस्कार, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे श्रमिक भाई बहनों का कार्यक्रम श्रमिक लोक, प्रस्तुति थी प्रशांत गौरव की। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है आदि प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं शीला कुमारी। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले कल एक दिवसीय झारखंड दौरे पर रहेंगे। तय कार्यक्रम के अनुसार वो सुबह 11:50 पर रांची पहुंचेंगे और वहां से सीधे रामगढ़ रवाना होंगे। रामगढ़ स्थित राधा गोविंद यूनिवर्सिटी में दोपहर 1 बजे आयोजित एक विशेष सेमिनार में वो मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के 46वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय झारखंड के किसानों की आशाओं और ग्रामीण विकास का महत्वपूर्ण केंद्र है। उन्होंने लैब टू लैंड पर जोर देते हुए कहा कि कृषि अनुसंधान की सफलता शोध पत्रों से नहीं बल्कि किसानों की आय बढ़ाने और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव से मापी जानी चाहिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, परमाणु अंतरिक्ष और क्वांटम प्रौद्योगिकियां भविष्य के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करेंगी। उन्होंने नई दिल्ली में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में तेजी से एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। दुमका में आज हुल दिवस के अवसर पर पदयात्रा निकाली गई। इस पदयात्रा में कांग्रेस नेता डॉ. प्रदीप बलमोचू सहित पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस अवसर पर डॉ. बलमोचू ने कहा कि पदयात्रा का उद्देश्य संथाल समाज को हुल आंदोलन के इतिहास, उसके आदर्शों और सामाजिक अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति एवं अवैध तस्करी निषेध दिवस के अवसर पर साहिबगंज में जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष अखिल कुमार के मार्गदर्शन में आयोजित इस अभियान का उद्देश्य विशेष रूप से युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना और नशा मुक्त समाज के निर्माण के लिए प्रेरित करना था। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक मुख्य समाचार। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है किसान भाई बहनों का कार्यक्रम खेती बारी।

0: जय जवान जय किसान।
1: खेती बाड़ी कार्यक्रम सुनवाइया सौ भाई बहन मन के शांति बहन बटले जोहार। और आज मोर संगे है अरविंद दादा, तो अरविंद दादा राव के भी बहुत बहुत जोहार।
0: जोहार जोहार शांति बहन, और कार्यक्रम सुनवाइया सौ भाई बहन मन के हमर बटले भी बहुत बहुत जोहार। और शांति बहन किसन हाल समाचार?
1: हाल समाचार तो बेसे बेसे रावरे बटे बताओ।
0: हमरो बटे एकदम बहुत बढ़िया है। और देखो अब भरखर खेती बाड़ी कर दिन है, सब्जी खेती भी आदमी मन करत हैं, अब धान खेती कर भी तैयारी अब शुरू कर दे हैं किसान मन। अब बीच बीच में बरखा पानी जो हुआ थे उकर ले जोत कोड़ करे के लिए बहुत आसानी हुआ थे, सब किसान मन एकदम खेत में लग जाए हैं, जुट जाए हैं। और सब किसान मन एखन सांझ पहर घुर भी हो गए, एखन खेत बड़ से थाकल फेदाल एकदम।
1: हाँ, और देखो कि एखन जोत कोड़ के तो घुर हो गए, और एखन तो बरखा करी तो एखन तो बीड़ा मन करे कर भी बेरा होइए लागल है।
0: एकदम सही कहा थी, बेड़ा माने बहुत भरखर पानी तो नहीं आया है, बहुत बगरा पानी आवल से तनी बीड़ा नियर हो गई, लेकिन फिर भी जे गाढ़ा दोइन है जेकर में पानी जमा है सेकर में बहुत किसान मन बीड़ा कर तैयारी कर चुकी खूब है। और जरूरी भी है शांति बहिन, कारण है कि कहना नहीं कि आगे आगे खेती आगे आगे और पाछे खेती भागे जोगे, कहे ना नी।
1: हाँ।
0: तो पछुआक नखे भाई अगुआक है, पानी अगर हमरे मन के बेस समय पर अगर आए जाते बढ़िया पानी, बहुत ठाव में आए भी है पानी, तो किसान मन खेती बाड़ी कर तैयारी एकदम से जोर शोर से शुरू कर दे है नहीं।
1: हाँ दादा, तो देखो ये तो है लग कि बीड़ा एखन कोई कोई करे लायक है ना, और एखन खेती बाड़ी में रे साग सब्जी मन तो लगाई।
0: हाँ हाँ साग सब्जी मन है और बेचत भी है, और बहुत किसान मन लगाए भी हैं और लगा कर तैयारी भी करते हैं। देखो शांति बहन का है नहीं कि खेती बाड़ी हमरे मन कर जिंदगी से चलते आवत है, हमरे मन खेती नहीं करब तो हमरे कर कैसे घर दूरा चली है नहीं। लेकिन सबसे बड़ बात का है कि खेती बाड़ी में हमरे मन का करेला कि बहुत उपज लेवे कर कोशिश में हमरे मन का करेला कि रासायनिक खाद और कीटनाशक मन कर अंधाधुंध प्रयोग करे शुरू कर दे, और से चलते एक साल तो हमरे मन बढ़िया उपज ले लेवीला, लेकिन अगला साल धीरे धीरे का हो लानी कि माटी कर जो उर्वरा शक्ति है धीरे धीरे कम शुरू हो जाएला।
1: हाँ, तो देखो कि ये बात तो नगद कहली कि रासायनिक खाद कर हमरे मन बगरा उपयोग करेला, तो से कर लागिन हमरे मन की जैविक खेती के अपनाप तो बेस होई।
0: एकदम नगद कहती, और बहुत किसान मन ऊपर बटे आगे बढ़ भी चुके हैं, और जैविक खाद बनाए के बहुत घर में आदमी मन बनाए सके ना बड़ा सस्ता में, और अगर कीनत भी है बाजार में तो बाजार में भी बड़ा सस्ता दाम में भेटाएल, तो रासायनिक खाद बहुत महंगा है, कीटनाशक बहुत महंगा है। अगर आपन से अगर हमरे मन कोशिश करती तो घरे में तैयार हो जाते, कारण है कि माल मवेशी हमरे मन कर घर में रहे ना, उगर से गोबर हमरे मन के मिल जाएला, और सरकार बटले भी अब बहुत मदद मिलत है किसान मन के, तो जैविक खाद घर में तैयार कर सकीला।
1: और देखो कि हमरे मन के तो घरे में पूरा खाद कर ये है सामान मन है, काले कि हमरे मन जे बिहान के काठी मन जोरीला से कर राख निकलेला, गरु छगरी मन मुर्गी मन का लेढ़ी मन रहेला, गोबर पतुर मन रहेला, और हमरे मन जे थी गाछ से जे पतुर मन झड़ेला से सब तो हमरे कर खादे कर काम करेला।
0: एकदम नगद कहती, एक ठो खाली बढ़िया बेड तैयार कर लो एक है, और उकर में सब के जमा करके अगर केचुआ रोठी ना है तो बहुत बढ़िया, केचुआ नखे तो उलट पलट के डी कम्पोस्ट मिलेला उके भी डाल के हमरे मन जैविक खाद तैयार कर सकेला खुद से, यानी तो बाजार में भी बहुत सस्ता दाम में उपलब्ध है। तो हमरे मन के खेती बाड़ी में अब ज्यादा से ज्यादा जैविक खाद कर हमरे मन के प्रयोग करे है। बहुत किसान मन से भेंट करते रहिला, शांति बहन तो मन बढ़िया बढ़िया का बताए ना नी कि जे गोबर है गोबर कर प्रयोग मन करत हैं, और गौमूत्र कर भी प्रयोग करत हैं जेकर में जीवामृत है घन जीवामृत है, उसन से प्रयोग करके कीटनाशक भी घर में तैयार कर लेते हैं। बहुत किसान मन जे का कहे ना वो नीम आवेला नीम पतई जे है उकर से भी कीटनाशक तैयार करे ना, तो घरे में हमरे मन हर तरह कर कीटनाशक हो चाहे खाद हो हमरे मन तैयार कर सकीला, और उके जब हमरे मन अपन खेत में लगाब निशांति बहन तो उपज भी बढ़िया होवे, और हमरे मन कर जे माटी है उकर स्वास्थ्य भी बनल रही।
1: और देख उपज तो होए ला, लेकिन हर तरह से जैविक खाद है कि लाभदायक है, काले कि हमरे कर स्वास्थ्य भी बेस रहेला, और जे हुआ से जैविक खाद से जे फसल रहेला उपज होएला से भी बेस।

0: रहे ला हमारे मन के स्वास्थ्य के हानिकारक नहीं पहुंचाएगा।
1: एकदम सुपर कहती रासायनिक जे दवाई है उकर प्रयोग और खाद कर प्रयोग करके आज देखो जे भी उत्पाद हमरे मन ले लो थी वो 1 से 2 दिन कर बाद खराब हो जाए लगो। अच्छा खाए में भी उतना स्वादी नहीं रहेला, अगर वो के हमरे मन खाती तो हमरे का स्वास्थ्य भी गड़बड़ाते। कहना नहीं कि रोग जे लड़े कर क्षमता हमरे मन कर शरीर में है रोग से लड़े कर वो भी धीरे धीरे कम होते जाते, तो बड़ बीमारी भी धरेला हमरे मन के बहुत जल्दी। तो जैविक खाद अगर हमरे मन प्रयोग करती उकर से जे उत्पाद हमरे मन लेव थी उकर 4 से 5 दिन भी रखती तो खराब नहीं हुआ थे, उके खाती तो हमरे कर जीव समांग भी बढ़िया हुआ थे और माटी का स्वास्थ्य भी बनल है। और संगे संगे देखो रासायनिक खाद कर अगर और कीटनाशक का प्रयोग करते तो पर्यावरण में भी नुकसान पहुंचाते,
0: हाँ
1: तो जैविक खाद अगर हमरे मन प्रयोग करते तो पर्यावरण भी ठीक हुआ थे, हमरे कर भी जीव समांग बढ़िया है, माटी कर भी स्वास्थ्य बनल रही, तमाम फायदा है हमरे मन के। तो हमरे मन के जैविक खाद कर प्रयोग जरूर से जरूर करे चाहिए।
0: और जे हमरे कर किसान भाई बहन मन सुनत होबे उमन जरूर से जरूर इकर लाभ लेबे।
1: एकदम शांति बहन, बोला दिन बाद जरूर से भेंट होलक, तो आई जे लंबा हमरे मन कर गोइठ हुई गलक, लेकिन अब किसान मन इंतजार करत हो कि कुछ गीत संगीत हुई जात लग।
0: हाँ दादा, तो एगो नागपुरी लोकगीत है देवदास विश्वकर्मा और संगी मनकर।

0: शांति बहिन बड़ा नगद गीत रहे देवदास विश्वकर्मा और संगी मनकर गावल। और देखो गीत गोविंद कर संगे संगे अगर कुछ जानकारी भी हुई जाए तो बढ़िया है। और जानकारी देखो आजकल किसान मन से भी हमारे मन के बहुत कुछ मिलेला, कारण है कि किसान मन अनुभवी हुए ना। और आजकल किसान तो तरह तरह कर जो प्रयोग अपन खेत में करे के लाई गए उकर से मन के ठीना और भी जानकारी हो जाएगा बहुत बढ़िया बढ़िया। तो आज भी एक ठो बढ़िया किसान है इनकर
1: तो
0: से
1: चलो हम जानकारी करवाए। आज के किसान मुर्गी पालक से भी है संबंधित, तो बहाल महतो है और इकन से भेंट कर है सुकेश कुमार महतो।
2: जोहार जे किसान मन है सालों भर खेती बाड़ी मन करे ना संगे संगे अपन अतिरिक्त आय खातिर के मुर्गी पालन करेला के बकरी पालन करेला के खेती बाड़ी सब्जी कर खेती बाड़ी करे ना हम ही आई छे एक किसान जे मुर्गी पालन करेला और वो मुर्गी पालन कैसन करेला उकर सुकर काम मुनाफा होला उकर बारे में हमरे जानब। तो चलू हमरे मन बात करीला उ किसान से और बतियाईला कि कैसन उकर मुनाफा होला का करे खोला मुर्गी पालन में उकर बारे में विस्तार से हमरे मन जानकारी करब। तो जोहार
3: जोहार।
2: तो अपन परिचय का होलक?
3: हमर नाम बहाल महतो है के गांव एरंडा कर रहे के वाला है कि
2: मुर्गी पालन में का कर व्यवस्था करल जाएला।
3: मुर्गी पालन में हमरे मन सबसे पहले तो सेट बनाइला।
2: हाँ
3: सेट बनाल कर बादे सारा सेट जब तैयार हो जाएला सेट कर दिशा मतलब हमेशा मैंने पूरा पश्चिम तो हम तो कही रही।
2: मुर्गी पालन कर प्रेरणा कहाँ से आला?
3: मुर्गी पालन कर प्रेरणा हम पशुपालन विभाग कांके रांची से दिन कर हम ट्रेनिंग कर रही उकरे से हमके मुर्गी पालन कर कुछ शिक्षा और दवा दारू कर हमके मतलब शिक्षा मिललक और हम अपन मैंने विचार से सोच ली कि हम भी अब मुर्गी पालन करब।
2: बहाल भाई ये बताओ कि पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हो है?
3: हमार मैट्रिक तक हो है।
2: ये कितना एरिया है?
3: ये 30 डिसमिल करीब करीब में है और चौड़ाई है 30 फीट मतलब 30 से 32-33 फीट।
2: अच्छा लंबाई कितना है?
3: लंबाई 200 फीट।
2: मुर्गी का शेड कर लंबाई चौड़ाई 200 फीट लंबाई है और 30-32 फीट इकर चौड़ा है। इके बनाए में एक लागत तो हो हुई?
3: हाँ लागत तो है कम से कम इकर लागत है मतलब 15 से 20 लाख रुपया।
2: मैंने मुर्गी पालन में जो शेड बना ली शेकर में कम से कम 15 से 20 लाख तक का खर्चा है।
3: खर्चा है।
2: ती कब से शुरू करी थी?
3: मैंने 2022 में हम चालू करे 2023 से हम ये मुर्गी पालन कर काम चालू।
2: जो चूजा मन होला ओकर कैसन व्यवस्था करीला?
3: चूजा कर व्यवस्था हम कंपनी कर माध्यम से करीला।
2: कंपनी कैसन करेला?
3: कंपनी हमके लाइन के चूजा देवेला दाना देवेला और दवा देवेला।
2: ये चूजा छोड़ल के बाद में कितना दिन में तैयार होला?
3: मुर्गी चूजा छोड़ल कर 35 से 40 दिन कर अंदर तैयार हो जाए ना 2 kg 100 तक हो जाए ना।
2: अच्छा इकर बाजार व्यवस्था कहाँ है कहाँ ले जाके बेचीला?
3: कंपनी अपन मतलब गाड़ी लगाएला और मैंने एक बार सब माल थोके ले जाएला और जो मुनाफा होला वो के हमरे के दवा दाना और चूजा कर पैसा वैसा काट के जे हमरे कर पैसा जो बनेला वो के

0: আমাকে দেবেলা,
1: ইয়ানি কি চুজা দেবেলা, দাওয়া দেবেলা, ফির দানা ভি দেবেলা, ফির উকার যে লাগত হয়লা সেকে উ জব মুরগি কে লে যায়লা হিয়া সে উকার বাদ মে উকার সে কটৌতি কইর রেলা।
0: হ্যাঁ, কটৌতি কইর কে হামকে জব মুনাফা চুজা ভি ছোড়ি।
1: আচ্ছা বহাল ভাই, ইয়ে ভি বাতাও কি জব মুরগি পালন এতনা বড়কা শেড মে করত হি তো একলে কর তো বাত নে কই, কর মাউর আদমি মন ভি লাগা হি?
0: হ্যাঁ, দু জন লাগা হি, एगो लड़का लड़की लगा है, परिवार के लगा है, उसका साथ साथ हम भी रहिला। और हम जितना जितना दावा कर जरूरत पड़ेला मुर्गी में कितना दावा साथे साथ हो मन के काम करवाइला।
1: यानी कि मुर्गी पालन कर ही संगे संगे दू जन के रोजगार भी दे ही।
0: मुर्गी पालन का साथ साथ हम दू जन के रोजगार भी दे ही और उकर संगे हम हो करेला।
1: बिल्कुल बात है, और अपन भी जीवन यापन चलक लाइक है ताकि उकर से घर परिवार भी चलत है, छुआ मन का पढ़ाई लिखाई से लेके घर कर खर्चा भी उकरे से निकला ले।
0: हाँ, निकला ले वेला।
1: तो जिसे साल भर में कई बार चूजा छोड़ल जाएला और निकल जाएला?
0: साल में 7 बार हम छोड़ीला, उकर से ज्यादा तो नहीं छोड़ीला। बरसात आवेला तो एक आध 2 महीना बंद भी कर दिला।
1: मन बरसात के दिन में परेशानी होला से ले है नहीं
0: परेशानी,
1: जे शेड है उकर में गंदगी भी होला तो उकर का उपाय करीला?
0: उके साफ सफाई करवाइला, साफ सफाई करवाल कर बाद मुर्गी तैयार हो गेला से अपन गाड़ी लगाओ और मतलब माने बाजार मार्केटिंग करके ले।
1: तो उ आधार पर यहां से पूर्ति निकल पावेला?
0: तो हमर यहां से करीब करीब माल ढेरे रहेला, करीब से माध्यम से जुड़ली और कंपनियां अपन सामान माने ले जाएला और जे भी होला हमर जे पैसा निकलेला वो देवेला, उकरे से हमर रोजी रोजगार चलत है।
1: चूजा छोड़े के 50,000 तक कर लागत आवेला, जब पूरा तैयार हो जाए ना उकर बाद में वो कितना तक हो जाएला, जैसे दाना पानी मन में चाहे वो चूजा छोड़क में कितना? 50 लाख
0: मने बोले करीब 3 लाख 4 लाख कर तो दाना खाई दान से सब कट छाँट के चूजा कर खाई,
1: चूजा कर हलक, दवा कर हलक और उकर दाना कर मिलाए के कम से कम 2.5 से 3 लाख तक कर लागत आवेला। जब इके बेचाएला मन
0: 35 से 40 दिन में 50,000 तक हमर इतना बड़ा शेड में आ जाएगा।
1: मन एक बार कर लगाल में मैंने 50 से 60,000 तक कर मुनाफा रोरे के कंपनी देवेला
0: देवेला।
1: बीच में भी उकर में साफ सफाई करते रहिला?
0: नहीं, बीच बीच में तो जैसे साफ सफाई तो मैंने जैसे चूजा रहे ना से बेरा तो साफ सफाई करे कर जरूरत नहीं पड़ेला, एक बार लास्ट में सफाई करे एक से मन करते रहे।
1: पानी मन कर भी जरूरत होला तो पानी कर व्यवस्था कैसे कही?
0: पानी कर व्यवस्था हम छप्पर में मतलब मैंने हल्का फुल्का अपन तरफ से हम कीन के देवेला।
1: तो ये दिखाई देवा थे ये टांगल टांगल है वो सब का चीज़ है के पानी पिए कर है कि चारा कर है के?
0: वो पानी पिए कर है और चारा कर है,
1: माने ऑटोमेटिक कर से पानी आते रहेला फिर उकर में चारा देते जाइला और मुर्गी मन जरूरत से हिसाब से उन खाते जाए ना पीते जाए ना,
0: माने दवा और पानी एक साथ ऑटोमेटिक जाएला और दाना के तो मतलब अपन हाथ से देवे खोला डब्बा में।
1: अच्छा, डब्बा
0: से मतलब पानी डायरेक्ट जाएला।
1: अच्छा बहाल भाई, ये भी बताओ कि जब मुर्गी पालन कर थी कभी कभी मुर्गी मन में बीमारी भी हो जाए ना तो उसन स्थिति में क्या करी?
0: उसन स्थिति में हम मतलब जैसे हमरे कर जैसे कि भाई कौन सा बीमारी लागल है तो वह आधार से वो अपन कंपनी हमके दवा देवेला और मात्रा मतलब जितना देव कर रहेला उतना मात्रा हम पानी के साथ मिला के दे देला।
1: यानी कि अगर बीमारी होकर संभव ना होना चाहे उकर लक्षण दिखाई देवेला तो उसन स्थिति में कंपनी से रौरे संपर्क करेला और वो आय लेला और उके देख के दवा देवेला।
0: व्यवस्था करे पड़ जाएला, पंखा लगाईला नहीं तो
1: कहे कर मतलब यही है कि मुर्गी मन के जे मौसम कर आधार पर वो मन ले व्यवस्था करल है, गर्मी कर दिन के लिए उमन में छप्पर में हमेशा पानी देते रहे खोला और ठंडा कर दिन में उमन ले गर्म कर भी व्यवस्था करल जाए। तो बहाल भाई बहुत जानकारी अच्छा दिली, इकर ले धन्यवाद, जोहार
0: जोहार।
2: तो दादा एखन हमरे मन नगद सुंदर जानकारी करत रही मुर्गी पालक से संबंधित जेके बतियात रहे सुकेश कुमार महतो। तो कार्यक्रम के हमरे मन आगे बढ़ाएला
3: एकदम, और जिसन तखन हमरे मन शुरू में गोइठ करत रहनी कि जैविक खाद कर बारे में हमरे मन और जैविक खेती कर बारे में बात करत रही, तो आज देखो हमरे कर राइज में जैविक खेती कर बहुत संभावना है और बहुत किसान मन के अपनाए चुक हैं और लगातार इकर ऊपर काम करते जाते हैं और देखो माटी भी बढ़िया होते जाते उमन कर उपज भी दुगुना होते जाते और किसान कर सेहत भी मजबूत होते जाते। शांति बहन,
2: तो चलो एक विस्तार रूप से जानकारी करेला कि झारखंड में जैविक खेती कर संभावना एकर से विशेषज्ञ है सिमी सिंह।
3: रिमी सिंह है।

0: अरिकर से भेंट गए हैं एसके लाल।
1: मित्रों नमस्कार, जोहार। मित्रों अपने प्रदेश झारखंड की हम बात करें तो यहाँ जैविक खेती की अपार संभावनाएं हैं। वक्त आ गया है, समय की मांग है कि हम जैविक खेती की ओर अपने कदम बढ़ाएं। जैविक खेती करने के एक फायदे आपके साथ ये है कि इसमें किसी भी तरह की रासायनिक दवाओं का छिड़काव नहीं होता है। फसल की जो उत्पादन होती है उसकी गुणवत्ता अच्छी होती है, दाने में चमक होती है और स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा होता है। क्योंकि यदि हम रासायनिक दवाओं छिड़की हुई फसल का खाते हैं, उसका उपयोग करते हैं, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं ये शरीर पर अपना प्रभाव छोड़ जाती है। तो वक्त की मांग है, समय की चाहत है कि हम जैविक खेती की ओर अपने कदम को आगे बढ़ाएं। धीरे धीरे ही सही, शनै शनै ही सही। और हमारे कृषि मंत्री जी भी कहते हैं कि ऐसे फसल हमारे किसान साथी लगाएं जिसमें लागत कम हो और उत्पादन ज्यादा हो। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि जैविक खेती की कितनी संभावनाएं हैं झारखंड में और कौन सी फसलों का हम चयन करें जो कम खर्च में, कम लागत में बम्पर मुनाफा दे, अच्छा उत्पादन दे। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आमंत्रित हैं कृषि उद्यमी श्रीमती रिमि सिंह साहब। रिमि सिंह जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में।
2: जी नमस्कार संजीव जी, और किसान भाइयों को भी जोहार।
1: देखिए, झारखंड की मिट्टी लाल है और लाल मिट्टी इस बात का घोतक है कि इसमें पौष्टिकता भरी हुई है, पोषक तत्व तो इसमें प्रचुर मात्रा में है। तो क्यों ना इस मिट्टी को हम दोहन करें और अच्छा उत्पादन हम इससे ले पाए। तो क्या संभावनाएं आपको दिखती है झारखंड में जैविक खेती की और कौन से फसलों का हम चयन करें?
2: झारखंड की मिट्टी लाल है, यहाँ आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा है और इसमें संभावना बढ़ जाती है कि हम मिलेट्स का उत्पादन कर सकते। झारखंड इसके लिए जाना भी जाता है और अब भारत सरकार के सहयोग से, पहल से मिलेट को दुनिया भर में पहचान मिली है। झारखंड में मड़ुआ, सावा, कोदो, चीना जैसे कई सारे मोटे अनाज उगाए जाते हैं और जाहिर सी बात है जैविक खेती सिर्फ पुण्य कमाने के लिए नहीं करना होगा। किसानों का पेट भी भरा होना चाहिए, उनका जेब भी भरा होना चाहिए। जेब होगी भरी तो मिजाज भी होगा हरा। इसलिए आप सिर्फ धान, गेहूं इस पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। एकीकृत जो जैविक कृषि मॉडल है उसको अपनाइए। खेती में आप मोटे अनाज भी उगाइए, उसको इंटरनेशनल मार्केट मिलता है। यहाँ के किसान ना दुनिया के किसी भी कोने में इन चीज़ों को बेच सकते हैं। इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है आज के डेट में, कीमत बहुत अच्छी मिल जाती है।
1: जी, मड़ुआ यहाँ काफ़ी डिमांड में है और मड़ुआ के बहुत सारी प्रोडक्ट, चाहे वो लड्डू हो, चाहे वो केक हो या मड़ुआ की रोटी हो, इसकी पौष्टिकता बहुत है। प्रधानमंत्री जी भी इसके लिए आह्वान कर चुके हैं कि मोटे अनाज की ओर हम अग्रसरित हों और मोटे अनाज स्वास्थ्य की दृष्टि से काफ़ी लाभदायक है। समय को देखते हुए, समय चक्र को देखते हुए किन किन फसलों का चयन किया जाए ताकि हम जैविक खेती सही से कर सके, उत्पादन अच्छा मिल सके?
2: देखिए, जैसे मोटे अनाज तो झारखंड के लोग बहुत समय से उगा रहे हैं, बल्कि हम कह सकते हैं कि वो एक्सपर्टाइज उनके पास है इसके लिए। पर उसके साथ साथ हम दो चार चीज़ें और कर सकते हैं। जैसे मौसम के हिसाब से हम बेमौसमी सब्जी जब उगाते हैं, अभी के मौसम में अगर आने वाले कुछ महीनों में बाजार में हरी सब्जियाँ लगभग गायब हो जाएंगी, तो अभी अगर किसान भाई मोटे अनाज की खेती के साथ साथ कुछ सब्जियाँ जैसे लौकी, करेला या बैंगनी वाली फूल गोभी, पीला वाला तरबूज ये भी लगाते हैं ना, तो बाजार में जब ये सब्जियां अगले 2-3 महीने बाद तैयार होके आएंगी तो इसकी बहुत अच्छी कीमत उनको मिलने वाली है।
1: अभी समय है कि अभी इसे तैयारी शुरू कर दी जाए।
2: मशरूम भी झारखंड में बहुत ज्यादा उगता है और उसको पसंद भी किया जाता है, बाजार भी अच्छा मिल जाता है और छोटे जगह में हो जाता है, छोटे से कमरे में भी हो जाता है, तो मशरूम भी उगा सकते हैं।
1: जी, तो फसलों के चयन में यदि हम सावधानी बरतते हैं तो जाहिर सी बात है हम बढ़िया उत्पादन ले पाएंगे। और समय का भी ध्यान रखें, जब नए नए फसल, नई नई सब्जियां मार्केट में आती हैं तो उसकी कीमत भी अधिक होती है। रमेश सिंह जी, जैविक खेती के हम बात कर रहे हैं तो जैविक खाद है आपके खेतों पर ही उपलब्ध हो जाता है, तो किस प्रकार हम ध्यान दें, किसान साथी किन किन बातों का ख्याल रखें कि बहुत सारे सूखा कचरा आपके पास होता है, सूखी पत्तियाँ होती हैं आपके पास पशु होती है तो जो उसके गोबर है उससे भी हम जैविक खाद का निर्माण कर सकते हैं और कम पैसे में बढ़िया खाद खेतों में ही निर्माण कर सकते हैं, तो कैसे किसान साथी इस चीज़ों का दोहन करें?
2: जी, ये आपने बिल्कुल सही कहा, खेती के साथ साथ पशुपालन लगभग सभी लोग करते हैं। अब वो चाहे कुक्कुट पालन करें, मुर्गी बत्तख पालें या फिर बकरी गाय, तो उनका जो अवशेष होता है, जो उनका मलमूत्र होता है, उसको खाद बनाने के लिए उपयोग करते हैं। सूखी पत्तियां, सड़े गला, किचन का कचरा, वो सब भी खाद बनाने में उपयोग होता है। अगर आप मशरूम उत्पादन कर रहे हैं तो मशरूम उत्पादन के बाद जो बचा हुआ

0: स्ट्रॉ या पुआल रहता है जिसपे आपने मशरूम उगाया है, वो तो समझिए काला सोना है। उसको आप अपने खेतों में डालते हैं तो उसमें यूरिया से ज़्यादा नाइट्रोजन है, साथ में फॉस्फोरस है, कैल्शियम है। तो यूरिया और डीएपी पे जो आप खर्च करते हैं और जो रसायन खेत में डाल रहे हैं, वो खर्च भी बच जाएगा, उससे बेहतर वो प्रोडक्टिविटी देगा, फसल ज़्यादा अच्छा आएगा आपके पास, उसकी कीमत भी आपको अच्छी मिलेगी। हाँ, अच्छी कीमत के लिए एक चीज़ आप और कर सकते हैं कि आप अपने खेत के बाहर बोर्ड लगाइए, यहाँ जैविक उत्पादन होता है। आप जिस स्टोर में या जहाँ अगर आपका सब्जी का ठेला है या कहीं भी आप बेच रहे हैं, वहाँ पे एक बोर्ड लगाइए, साफ शब्दों में वहाँ लगाइए कि यहाँ जैविक बिना रसायन का या रसायन मुक्त सब्जियां मिलती हैं, फल मिलता है। लोग 10 रुपए ज्यादा देके आएंगे और आपके पास जरूर आएंगे।
1: लोगों में जागरूकता धीरे धीरे बढ़ रही है और लोग जैव उत्पाद की ओर काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। आवश्यकता इस बात की है किसान साथियों कि आप मोटे अनाज का या जैविक उत्पाद का बाजारीकरण करें। जब तक आप मार्केट में नहीं जाएंगे, अपने प्रोडक्ट को मार्केट में दर्शाएंगे नहीं, तब तक आपको बढ़िया रकम नहीं मिल पाएगा, बढ़िया आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। तो पहचानने की आवश्यकता है कि किन फसलों में जिनमें हमारी लागत कम आ रही है और उत्पादन बम्पर हो रहा है, भरपूर उत्पादन हो रहा है। यदि उस चीज़ को हम पहचान जाते हैं और जैसा आपने रिमी सिंह ने बताया कि वहीं पर आपके खेतों में ही आपके पास ही वहीं पर सारा चीज़ है, उपलब्ध है, पहचानने की ज़रूरत है। गाय है, भैंस है, बत्तख है, कुकुट है, बहुत सारी चीज़ें आपने पाल रखा है, आपने एकीकृत फार्मिंग कर रखा है, वहीं पर तालाब भी है। तो इस चीज़ को पहचानने की आवश्यकता है। जो बढ़िया किसान है, जो बढ़िया कृषक है, वो इंटीग्रेटेड फार्मिंग कर रहा है, जैसे हम एकीकृत फार्मिंग कर रहे हैं, खेती किसानी के साथ साथ पशुपालन का भी काम कर रहे हैं, मुर्गी पालन भी कर रहे हैं और साथ साथ मछली भी पाल रहे हैं। तो एक साथ जब हम फार्मिंग करते हैं तो जाहिर सी बात है आप अच्छा कमाएंगे और देश के विकास में, देश के इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका हो जाएगी।
2: बड़ा नगद जानकारी झारखंड में जैविक खेती कर संभावना कर बारे में हमरे मन के बतात रहे रिमी सिंह और इनकर से बात करत रहे संजीव कुमार लाल।
3: तो दादा इकरे संग है हमरे कर खेती बाड़ी कर कार्यक्रम यही जगह सिरात है। तो सुनवैया भाई बहन मन कहीं नहीं जाब, यही ठीना रहब, हमरे मन फिर हाजिर हो गए हमारी दुनिया कार्यक्रम में
2: एकदम। और देखो आज कर दिन में, खास करके शुक्रवार कर दिन में, हर हफ्ता हमरे मन अपन नौजवान भाई बहन मन वास्ते युवा सभा करीला हमारी दुनिया में। तो सब नौजवान भाई बहन मन के फिर से हमरे मन स्वागत करीला अपन कार्यक्रम में, मन के स्वागत है, जोहार है मुनकर।
3: तो दादा देखो कहल भी जाएला कि युवा जो है उद्देश्य कर आन बान शान है, युवा है कि उमन में नवा जोश रहेला, नवा उमंग रहेला, कुछ कर गुजरे कर क्षमता रहेला। तो युवा से ही नवा सोच नवा देश कर निर्माण होएला।
2: एकदम ठीक कहा थी। और देखो कोनवे देश है नी उकर सबसे शक्तिशाली अगर कोनवे अगर कहब नी तो युवा मन होए ना, युवा मन कर सोच, युवा मन कर जे विचार है, उन में जे ऊर्जा है, उकर सही दिशा में अगर इस्तेमाल अगर करल जाए नी तो वो देश बहुत तेजी से आगे बढ़ेला। कहल भी जाएला नी जोन दिशा में युवा कर गोड़ आगे बढ़ेला नी, वो देश बहुत तेजी से प्रगति कर डहर में आगे बढ़ेला।
3: हाँ, तो देखो कि युवा है कि युवा मन में कोनो भी चीज है कि तुरंत कोई भी चीज तुरंत आ जाए लोकर मन मस्तिष्क में कि हाँ ये चीज सही है ये चीज गलत है, क्योंकि नवा उमन में हार्मोन रहेला, नवा कुछ सोचे का क्षमता रहेला, सेकर चलते उमन में कोनो भी काम के करे में सक्षम रहेना।
2: एकदम भाई, तो सब नौजवान भाई बहन मन के कहे खोजिला कि देखो हमरे मन के हर चीज जरूरी है लेकिन सही दिशा में। जैसे माई लो अगर रो रहे अगर घर में ही, और अगर माई लो कोनो किस्म से अगर रोड़ के सरकारी नौकरी नहीं मिलत है, चाहे अगर रोठीना रोजगार कर कमी है, तो आई जरूर अपन से भी प्रयास कर सकीला, कुटीर उद्योग लगा सकीला, कोई भी दिशा में रोड़े आगे बढ़ सकीला, कोनवे काम छोट नहीं होएला, शुरुआत खाली होए के चाहिए। अगर वो रोड़े कर लेते नहीं तो आगे बढ़े कर डहर अपने आप में मिलेला। तो नौजवान मन के हमारे मन के सोचे है कि कैसे अपन के पहले हमारे मन के विकास कर डहर में आगे बढ़ाए के है, हमारे मन के ये मजबूती लाने के है कि हमारे मन कोनवे काम के कर सकू। अगर हमारे मन शुरुआत करत थी तो गाँव हमारे कर आगे बढ़त है, समाज आगे बढ़ी, देश आगे बढ़ी, यह तरी आगे बढ़ते चल जाती हमारे मन। लेकिन क्या है कि आज कर युवा अपन दिशा से भटके शुरू हो जाए हैं शांति बहन, और कह धाव तो देखब कि नशापान कर बहुत लत लग जाए हमारे मन कर युवा भाई बहन मन में, और उकर चलते नुकसान काफी उठाए पड़त है सब कोई के।
3: हाँ, तो सही बात है कि

0: के लायक है। तनिकुन अगर कोनो काम नहीं बने ला तो मन तनिकुन निराश हताश हो जाए ना, और गलत दिशा की ओर अपन रुख करे लागे ना, नशा में उतर जाए ना, और ई नहीं सोचे ना कि अगर हम आज मेहनत करे के लायक ही तो कल सफलता मिली। अब धैर्य बनाए के भी चले के है और आत्मविश्वास के साथ कोनो भी काम के करे के है, तभी एक न एक दिन सफलता मिली।
1: एकदम भाई। और देखो, मजबूती के साथ काम करते जाओ और सफलता निश्चित तौर पर उनके मिलते जाए। और सब युवा अगर सही रास्ता में अगर चल बें तो हमरे कर देश कर निर्माण भी बढ़िया हुई, हमरे कर देश प्रगति के डहर में आगे बढ़ते जाए। तो शांति बहन, देखो बातचीत तो हमरे मन करते रहब, लेकिन हमरे मन के चलो एक ठो जे नागपुरी कलाकार हैं, बहुत बढ़िया गीतकार हैं और गायक हैं जबरदस्त, और देखो कई भाषा नागपुरी में भी गीत गावें ना तो कुड़ुख में भी गीत गावें ना, बहुत पुरना कलाकार, बढ़िया माजल कलाकार हैं क्षितिज कुमार राय। इनका से हमरे मन चलो करल बातचीत के सुना थी।
0: टीकर से भेंट कह रहे कृष्ण जीवन पौराणिक।
2: नदी नाला पहाड़ पर्वत ऊंच नीच ठाँव सुंदर गच्छ वृक्ष तहाँ बैठल नाना रंगक चरे चुनगुन कर बसेरा, कहल जाए कि हियाँ बोले की गीत है और चलेक नाच। ऐसन हमर झारखंड प्रदेश में कवि कलाकार मन नहीं सिरजवें तो कहाँ सिरजवें, ओहे लखे हियाँ सिरजन होलक एगो रावरिन कर जानल पहचानल नाव श्री क्षितिज कुमार राय जी। नागपुरी भाषा कर कवि और गायक, लेखक, वादक और नर्तक आज हमरे कर बीच हमर स्टूडियो में आए हैं। तो क्षितिज दादा, रौर के जोहार है।
3: यो है,
2: सबसे पहले तो रौरे अपन परिचय दे दो हमर सुनवैया भाई बहन मन।
3: हमार नाम होलक क्षितिज कुमार राय, बाबा का नाम पांडे सुधांशुनाथ राय, ग्राम बारीडीह, थाना बेड़ो, जिला रांची।
2: देखो रौर के तो हमरे बचपन से जाना थी चिन्ह थी और गीत के और जो रचना है से मन के सुनते हमरे बाढ़ली। तो क्षितिज दादा, रावर से आज हमरे जाने चाहिए कि रावरे गायक भी ही, वादक भी ही, नर्तक भी ही, तो रावर ठिन इतना इतना गुण कहाँ से आला?
3: देखो गुण तो खानदानी आवेला, जिसन किसिम कर माए बाप,
2: हाँ,
3: आजा आजी, नाना नानी, तो इसने किसिम कर उकर छुआ पुता हुआ है ना।
2: सही बात है।
3: तो कहल जाए कि परंपरा में जैसन जैसन आदमी कर गुण दोष रहन सहन इ किसिम से जोन वातावरण में आदमी जन्मेला उकर ओहे किसिम से भाव विचार ज्ञान वर्धन होवेला। संजोग रहे कि हमार नाना घर,
2: हाँ हाँ,
3: ग्राम सकरा, थाना मांडर, जिला रांची है। हमार नाना भी रिजवार, हमार मामा भी रिजवार, हमार माए भी रिजवारिन।
2: कहे का मतलब है कि और पीढ़ी दर पीढ़ी से आते जाते।
3: हाँ। तो हमार सौभाग्य का होलक कि हम नाना घरे बेसी दिन रहत रही, हुमे हम करीब करीब ज्ञान हमके तनी बगरा होलक। हमारा मामा का नाम रहे पांडे दुर्गानाथ राय, जे आकाशवाणी रांची में शिवू भाई के नाम से जानत रहे।
2: शिवू भाई के नाम से जानत रहे।
3: हम उनकर भगिना हकी।
2: हाँ हाँ हाँ।
3: तो उनकर संगे रहल चलते जैसन मामा कर संगे गुण, तैसने भगिना का गुण भी उनकरे लेके आए गेल। तो हम जखन 10 बच्छर कर रही तखने से हम गीत मन के उनकर गुनगुनात रही, गावत रही, और कई दूठो लोक गीत पर सुन रही, सीख रही, सीखे है, खाली दोहरात रही
2: उनकर गीत मन के।
3: उनकर गीत के भी जे लोक गीत में रहे से के हम तनी बनी सुन रही हवा में।
2: अच्छा अच्छा।
3: कहीं कहीं से तो से खे हम गावत रही, और कुलम दुए को गीते जानत रही से गीत के हम बराबर उके हैं रटत रही, जहाँ जाए जहाँ कहें तहाँ उके हैं गावत रही।
2: तो वो कौन सा ऐसा गीत रहे जेके रौरे गावत रहे, तनी कुन गुनगुनाए के सुनाए दो।
3: बड़ा नगद कहली रौरे, माने हमके तो जे बात के चाहत रही से खे रौरे उठाए दिली।
2: हाँ हाँ।
3: वो गाना रहे राग डमकच में।

0: है, यह दूगो गीत के हम हर समय हर ठीना गाते रहते रही।
1: तो खोर भूले कर का बात भेलक भाई?
0: खोर भूले माने तखन कर तैसन परंपरा रहे, स्वतंत्र समय रहे और गांव घर भी बड़ा नगद बिल्कुल माने बिना डर भय कर रहे।
1: हाँ हाँ हाँ,
0: सतयुग नियर तखन कर गांव रहे।
1: हाँ हाँ,
0: केकरो से केकरो डर नहीं रहे, आज जिके पार तके जखन पार तखन भूल भूलत रहे, फिर घूर आवत रहे, क्योंकि कोई तनिको कोई किसिम कर बात नहीं बोले पारत। तो ओकर में खोर भूले कर है सब बात है। तो मन के कहत रहे कि तो काले दिन भर भूल भूल दिला, रात होते सांझ होते खन ले, तो नहीं मैं जा रहा हूँ, सहिया है बुलाए रहे खने जून जा रहा हूँ, तो ईसन किसी के आदि मन भूलत रहे।
1: तो अपने जो है से बचपने से गीत संगीत से जुड़ लें और जे गीत के अपने छुआ बेरा गावत रहें वही गीत के अपने सुना लें, सेकर बाद का होलक कैसन रावर जिंदगी में माने दिन अलग जे रावरे खुद लिख ली खुद गाली बाजा बजाय ले सीख ली और कहल जाए कि सब गुण रावर में भर गेलक।
0: तो जैसन संगत करब तैसने गुण होवी। तो संगत भी हम बढ़िया बढ़िया आदमी से, कलाकार मन से, साहित्यकार मन से, जानकार मन से, नचैया गवैया बजवैया मन से संगत कर ली, से ले हमार गुण इस सब में तनी मनी आलक। और वो गुण बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे जब हम स्कूल में चल गेली तो हम 9 क्लास से कविता बनाई शुरू कर ली। 9 क्लास में हम कविता मन बना ली, करीब करीब 16 गो नियर कविता बना ली। एकदम ऐसा होलक कि हमारे को संगी रहें वो मांग देना है कि तैसन देव दादा के उतराए ले उतराए के मैं दे देमू, तो ना रोले चिंता करब, हम हो विश्वास पर दे दिली। और देखू ऐसा होला कि 16 हो गीत के उलेगल तले उके देबे नहीं कर, हम बहुत दुखी होली सेखन से तले कविता लिखे छोड़ दिली।
1: अच्छा,
0: लेकिन फिर हम 12वां मैट्रिक पास जब कर ली तो फिर हम कविता शुरू कर ली। ऐसा करते करते करते करते करते आज तक हम अपन तरफ से करीब करीब 400 गाना नागपुरी में लिखी। तो तखने से हम रोम गेली गीत गोविंद मन में, तले तो फिर हमार बहाली हो गया मास्टरी में, चल गेली हम देखो सिसई थाना कर आदिम जाति सेवा मंडल मिडिल स्कूल बर्री में रहे के मौका लागलक। बगले में एगो गांव संगीत साहित्य और बिल्कुल कला से भरपूर गांव सहीजाना पहुंच गेली।
1: सहीजाना, हाँ।
0: सहीजाना में एक बहुत बड़ उपलब्धि हमके मिललक कि वासुदेव राय महाप्रभु कर जन्म उठाव होलक और सहीजना उकरे से बहुत बड़ा नामी गिरामी जानल जा गेलक। और हुआ खाली गीत गोविंद कर भंडार रहे, हुआ कर जो देवघरिया परिवार जो हैं वो दृगपाल रामदेव घरिया कर खानदान जो बहुत महान कवि के रूप में जानल जाए ना अखन भी उनकर खानदान हुआ बसत रहे।
1: और ओके हम सुन रही कि सही जाना जो भी तरे महाप्रभु अवतारे
0: अवतारे। तो हम हुए 10 साल तक रहली और हुआ रहल से हम गीत गोविंद हमार ढेर बगरा सृजन होलक। लगभग लगभग हुआ 100 गाना हम उठाव में बनाए पारली। तले तो हमके जहाँ तहाँ बुलाहट होत रहे कवि गोष्ठी मन में, तो वहाँ हम जात रही और अपन कविता मन के आदमी के प्रभावित करत रही सुनात रही। और इस किस्म से हमार जिंदगी धीरे धीरे बढ़े लागलक। तले हम 74 में नौकरी के छोड़ छाड़ दिली और फिर समाज कर सेवा में ही ने आगे बढ़ली। ओहे बेरा से ई हमार आगे बढ़लक।
1: तो सबसे पहले ये बताओ कि रावरे जब गीत के लिख ली तो कौन ऐसा गीत के लिख ली जेके रावर से घरी घरी आदमी रंगमंच मन में फरमाइशी करत रहे?
0: तो गाना तो हम पहले तो हम लिख ली माँ शारदा कर वंदना।
1: हाँ हाँ,
0: तो माँ शारदा कर वंदना जो लिख ली से कहीं हम सुनाए चाहती सुनाए देती ले सुनू।
1: हाँ, गुनगुनाए के सुनाओ तनी।

0: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ई रचना के रवरे अपने कर ली तो सबसे पहल रचना रहे।
1: हाँ, पहला रचना होला।
0: तो ई रचना के जब अपने कर ले रहे तो सेवरा अपने कर उम्र कते रहे?
1: सेखने हमार उम्र लगभग है 24-25 करीब।
0: 24-25
1: कर रहे।
0: तो नागपुरी गीत संगीत में हमारे जानने चाहिए कि जैसे जैसे दिन रहत रहे, जैसे जैसे मौसम रहत रहे, से अनुसार गीत चलत रहे। तो आज कर समय में वो गीत गोविंद जी है से सुनने के में नहीं मिलेला। तो अपने से यह जानकारी करे चाहिए कि समय कर अनुसार और ऋतु कर अनुसार जे गीत फागुन से लेके चैत तक जे चलत रहे से हरेक महीना कर अपने दो दो कड़ी गुनगुनाए के सुनाए।
1: देखो तखन कर ऐसन रहे माने हमारे पूर्वज मनक आचरण रहन सहन संस्कार वही हिसाब से हमरे मनकर गांव घर में गीत गोविंद चलत रहे। मौसम से परे गाना के कोई सुने के नहीं चाहत रहे। आजाजी कहत रहे कि देखबे बेगर सीजन कर गाना के ना गावे नहीं तो का कहने से गुरा होवेला।
0: अच्छा,
1: तो ये सब सुन के बहुत जोर डर लागत रहे। भगवान ईश्वर कई देर तो गुरा हो जाए तो गीत मन के उसन के नहीं गावे खोत रहे, नहीं गावत रही। हमारे मन सीजने के गीत के गावत रही, मौसमे कर गीत के गावत रही। तो गाना कर जे मैंने प्रचार होलक नहीं सच कहब तो फगुआ से शुरू होलक।
0: हाँ, फागुन
1: फगुआ तो ऐसा है कि सब रीज में आगे से सुन के फगुआ में रंग मर खेला कह के मरे बहुत रिझत रहे। तो इसलिए फागुन गीत के शुरुआत मौसम के अनुसार में शुरू होत रहे।
0: फगुआ से शुरू
1: फगुआ से शुरू होत रहे। तो हम चाहत थी कि जब फगुआ से शुरू होत रहे तो हम काले नहीं फगुए राग के सुनाए दे रुर के।
0: हाँ हाँ।
1: और रावरे जे बात के जे चर्चा कर रही हमरे करीब बीच में झारखंड कर या नागपुर या छोट नागपुर कर कि जंगल झाड़ पहाड़ पर्वत नदी नाला टका टुकू ऐसा ठाव है। तो ई ठाव में जंगल झाड़ में चरई चुनगुन भी रोरे कही।
0: हाँ हाँ।
1: तो हम रोर के आए जी 90 को चरई कर नाम के सुनाए चाह थी।
0: अच्छा,
1: ले सुनो कैसन फगुआ गीत में बनाल है।

कौवा किलकिला पपिया चातक चील चाची गीद जांगिल हरिला धनेश धुम्पिया घाघर घाटो तीतिर गुणरी पाज सुतुर मुर्गी मुर्गा जुहा सिकरायो भेंगरा चकोवा चकोर चोचा दुंदू से भी दूबू नोचा चकवा चकोर चोचा दुंदू से भी दूबू नोचा केरे

0: होरी
1: एते एते चरई कर नाम रे फगुआ गीत में सुना ली है नी। और इके तो हमरे बहुत बचपने से सुनते आवत रही और रौरे रंगमंच में भी कार्यक्रम के दिली। आप फगुआ कर बाद में जे समय में आवेल से के सुनाए दो।
0: तो देखो अब तो आ गया करीब करीब होते होते उदासी कर सी में आ गया फगुआ के बाद तो चैत चैत के बाद तो बैसाख होने बहुत जोर रौद कर मौसम आवेला तो रौद बेरा तो आदमी मन तनी उदासी गीत
1: हाँ, के गावे रौद बेरा तो उदासी हो जाए
0: तो उदासी गीत मन के गावे ना तो है क्रम में हम राव मन के उदासी मने बिरह राग कर गीत एगो बहुत नामी गीत मन है झारखंड कर माटी में हवा पानी में से के गीत के सुनाए देती। शीर्षक है रूपू
1: रूपू
0: तो हम रूपू के रूप में सुनाए देती।

0: तो ये गीत के तो हमरे के याद है कि बहुत चर्चित होलक रहे, है नहीं, बहुत पहले गीत बाजत रहे। तो ये कौन राग कर गीत हके?
1: ये राग हके झूमर, माने भिनसरिया गीत हके झूमर। तो ये झूमर माने तो रो बरसात मन जब होवे लागेला, तो बरसात गिर जाएला, पानी गिर जाएला, से खने गीत मन के ये राग।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

0: मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: तो शांति बहिन, अब हमारे मन के विदा लेवे कर बेरा हो गेलक, अब चले के चाहिए और जाते जाते सब बता देवेल की कार्यक्रम कर प्रस्तुति रहे
2: संजीव कुमार लालकर।
1: चले के चाहिए लगे तब
2: जोहार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारी दुनिया। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब से कुछ ही क्षण पश्चात आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान। कहा, मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कृषि अनुसंधान को किसानों तक पहुंचाने पर दिया जोर। कहा, शोध की सफलता किसानों की आय बढ़ाने से तय होगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने प्रमाण पत्रों में त्रुटि सुधार के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर तक बढ़ाई। वर्ष 2024 तक की सभी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को मिलेगा लाभ। दुमका में कांग्रेस की ओर से निकाली गई हुल दिवस पदयात्रा। संथाल समाज को हुल आंदोलन के इतिहास, आदर्शों और अधिकारों से जोड़ने पर जोर। और CISCE जोनल कराटे चैंपियनशिप में झारखंड के खिलाड़ियों ने 5 स्वर्ण सहित जीते 8 पदक। और अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए खतरा है। उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर भाग लेने की अपील की। श्री शाह ने ये बात नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी NCORD की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए की।
1: आज हमारा देश नार्कोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
0: राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के 46वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय झारखंड के किसानों की आशाओं और ग्रामीण विकास का महत्वपूर्ण केंद्र है। उन्होंने लैब टू लैंड पर जोर देते हुए कहा कि कृषि अनुसंधान की सफलता शोध पत्रों से नहीं बल्कि किसानों की आय बढ़ाने और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव से मापी जानी चाहिए। राज्यपाल ने बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन और लाख उत्पादन में संभावनाओं का जिक्र करते हुए छात्रों से जॉब सीकर नहीं जॉब क्रिएटर बनने का आह्वान किया और विश्वास जताया कि विश्वविद्यालय स्वर्ण जयंती तक देश के अग्रणी कृषि संस्थानों में शामिल होगा। झारखंड के सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर करने की दिशा में राज्य सरकार एक और कदम बढ़ाने जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 29 जून को रांची के टाना भगत स्टेडियम खेलगांव में आयोजित समारोह में 1042 चयनित सहायक आचार्यों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर राज्य के विभिन्न जिलों से चयनित अभ्यर्थी उपस्थित रहेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत आयात की जाने वाली दवाओं की बची हुई वैधता अवधि यानी शेल्फ लाइफ आयात के समय कम से कम 12 महीने होना अनिवार्य होगा। एक रिपोर्ट।
2: जैविक दवाओं और रेडियो फार्मास्यूटिकल दवाओं के लिए मौजूदा नियम लागू रहेंगे। इनके लिए आयात के समय कम से कम 60% शेल्फ लाइफ होना जरूरी होगा। मंत्रालय के अनुसार इस संशोधन से दवाओं की अनावश्यक बर्बादी कम होगी और दवा भंडार का बेहतर उपयोग हो सकेगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये प्रस्ताव केवल आयात के समय दवाओं की बची हुई शेल्फ लाइफ से संबंधित है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले कल एक दिवसीय झारखंड दौरे पर रहेंगे। रामगढ़ स्थित राधा गोविंद यूनिवर्सिटी में दोपहर 1 बजे आयोजित एक विशेष सेमिनार में वो मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। सेमिनार का विषय आर्थिक असमानता और बेरोजगारी के संदर्भ में डॉ भीमराव अम्बेडकर का समग्र दृष्टिकोण रखा गया है, जिसमें सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता और समावेशी विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, परमाणु अंतरिक्ष और क्वांटम

0: प्रौद्योगिकियां भविष्य के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करेंगी। उन्होंने नई दिल्ली में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में तेजी से एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि मिशन ने अपने शुभारंभ के 3 वर्ष में ही अधिक से अधिक लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। झारखंड अधिविद परिषद जैक ने शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में त्रुटि सुधार के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 सितंबर 2026 कर दी है। पहले इसके लिए अंतिम तिथि 30 जून 2026 निर्धारित थी। परिषद के अनुसार ये सुविधा प्रारंभ से लेकर वर्ष 2024 तक आयोजित JAC की सभी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध होगी। छात्र छात्राएं पंजीयन रसीद, प्रवेश पत्र, अंक पत्र, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट और मूल प्रमाण पत्र सहित अन्य शैक्षणिक दस्तावेजों में नाम, जन्मतिथि तथा अन्य स्वीकृत त्रुटियों के सुधार के लिए निर्धारित अवधि तक आवेदन कर सकेंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। दुमका में आज आदिवासी कांग्रेस कमेटी की ओर से हुल दिवस पदयात्रा निकाली गई। इस पदयात्रा में कांग्रेस नेता डॉ. प्रदीप बलमुचू सहित पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस अवसर पर डॉ. बलमुचू ने कहा कि पदयात्रा का उद्देश्य संथाल समाज को हुल आंदोलन के इतिहास, उसके आदर्शों और सामाजिक अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के नमस्कार केंद्रीय पंचायती राज, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने आज देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में पूजा अर्चना की। उन्होंने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक और विधिवत पूजन किया। पूजा के बाद श्री सिंह ने देश में अमन चैन, किसानों और मजदूरों की समृद्धि तथा बिहार झारखंड सहित पूरे देश की खुशहाली की कामना की। रामगढ़ जिले के रजरप्पा थाना क्षेत्र के लारी के पास देर रात एक सवारी वाहन और ट्रक की आमने सामने की टक्कर में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। घायलों को रामगढ़ सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां से गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को रिम्स रांची रेफर किया गया। घटना के बाद कुछ देर के लिए सड़क जाम रही, जिसे प्रशासन के आश्वासन के बाद हटाया गया। आजसू नेता पीयूष चौधरी ने कहा कि इस स्थान पर लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं।
1: लगातार तीसरा दिन हादसा हो रहा है। कल 4 लोग मरे थे और लगातार एक एक दिन छोड़ के यहाँ पे हादसा होता आ रहा है। आज हमेशा से हमने प्रशासन को, अपने यहाँ के बालों गांव के पब्लिक ने प्रशासन को कोऑपरेट किया है कि भाई रास्ता ना रोका जाए, निकला जाए। लेकिन
0: मुहर्रम के अवसर पर कल रांची जिले में ताजिया और अखाड़ा जुलूसों के कारण यातायात प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने जिले के सभी सरकारी, गैर सरकारी और निजी विद्यालयों में अवकाश घोषित किया है। जिला उपायुक्त मंजुनाथ भजेंद्र के निर्देशानुसार केवल पूर्व निर्धारित परीक्षाएं अत्यंत आवश्यक होने पर जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचना देकर कराई जा सकेंगी। प्रशासन ने सभी विद्यालय प्रबंधन, अभिभावकों और नागरिकों से शांति और सौहार्द बनाए रखने में सहयोग की अपील की है। झारखंड में आज मौसम आंशिक रूप से धूप वाला और उमस भरा रहा। हालांकि राजधानी रांची सहित कुछ इलाकों में आंधी के साथ बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली और तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार कल राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है। वहीं 28 जून से पूरे झारखंड में मॉनसून फिर से पूरी तरह सक्रिय होने का पूर्वानुमान है, जिससे कई जिलों में अच्छी बारिश हो सकती है। बिशप वेस्टकॉट गर्ल्स स्कूल डोरंडा में आयोजित CISC जोनल कराटे चैंपियनशिप में इंटरनेशनल मार्शल आर्ट एकेडमी के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण सहित कुल 8 पदक जीते। लोरेटो कॉन्वेंट की मारिया लवलिन खेस, वृष्टि मोनिका क्रिकेटा और शाइनी शिमोना टुपो ने स्वर्ण पदक जीते। वहीं बिशप वेस्टकॉट नामकुम की मिस्टी कुमारी और बिशप स्कूल बहुबाजार के प्रीत सोनी ने भी स्वर्ण पदक अपने नाम किए। अध्यक्ष अनिल किस्पोट्टा ने कहा कि अब खिलाड़ियों को बिहार में होने वाली रीजनल कराटे प्रतियोगिता के लिए तैयार किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान। कहा, मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कृषि अनुसंधान को किसानों तक पहुंचाने पर दिया जोर। कहा, शोध की सफलता किसानों की आय बढ़ाने से तय होगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने प्रमाण पत्रों में त्रुटि सुधार के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर तक बढ़ाई। वर्ष 2024 तक की सभी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को मिलेगा लाभ। दुमका में कांग्रेस की ओर से निकाली गई हूल दिवस पद यात्रा। संथाल समाज को हूल आंदोलन के इतिहास, आदर्शों और अधिकारों से जोड़ने पर जोर। और सीआईएससी जोनल कराटे चैंपियनशिप में झारखंड के खिलाड़ियों ने 5 स्वर्ण सहित जीते 8 पदक। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: प्रस्तुत है जिले में आजकल

0: इस अंक में आप सुनेंगे पूर्वी सिंहभूम जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे जमशेदपुर संवाददाता।
1: जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के तत्वाधान में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बिरसा नगर किफायती आवास परियोजना के लाभुकों के लिए गृह प्रवेश कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान कुल 322 लाभुकों को मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद सांसद विद्युत वरण महतो एवं जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू के हाथों नए आवास की चाबी सौंपकर गृह प्रवेश कराया गया। इस दौरान विद्युत वरण महतो ने लाभुकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना जरूरतमंद परिवारों को सम्मानजनक जीवन और पक्की छत उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।
2: आज एक ऐतिहासिक दिन में ऐतिहासिक समय में लगभग 300 से ज्यादा लाभुकों को आज मकान का चाबी दिया जा रहा, इसलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी को और राज्य सरकार को सभी को मैं अपने हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ।
1: विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर जमशेदपुर प्रधान डाकघर परिसर में आयोजित स्वैच्छिक रक्तदान शिविर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। डाक विभाग द्वारा आयोजित इस शिविर में डाक कर्मियों और स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़ कर रक्तदान किया। डाक विभाग की ओर से नियमित रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान वरिष्ठ डाक अधीक्षक उदय भान सिंह ने कहा कि रक्तदान किसी जरूरतमंद को नया जीवन देने का माध्यम है।
3: इसका थीम है इस वर्ष का 2026 का मानवता की एक बूंद जिंदगियां बचाए। तो अगर हमारे डाक परिवार के स्टाफ से ग्रामीण डाक सेवकों जो रक्तदान करेंगे उनसे अगर किसी की जिंदगी बचती है तो इससे बड़ा दिन मेरे लिए कुछ हो नहीं सकता है।
1: जमशेदपुर के साक्षी स्थित बंगाल क्लब की आचार्य नंदलाल बोस कला दुर्गा में 3 दिवसीय सीमूल 26 चित्रकला एवं मूर्तिकला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसमें 40 चयनित कलाकारों की चित्रकला और मूर्तिकला कृतियां प्रदर्शित की गई, जिनमें प्रकृति, समाज, संस्कृति और मानवीय भावनाओं को रचनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया। इस दौरान आयोजक समिति के सदस्य शुभेंदु विश्वास ने बताया कि
4: हमारी ये जो एग्जीबिशन आप देख रहे हैं ये आर्टिस्ट फोरम की तरफ से एक वर्कशॉप किया गया था साक्षी हाई स्कूल में 8 तारीख और 9 जून को, जिसमें 40 कलाकारों ने भाग लिया था। उसमें 3 स्कल्प्टर भी थे जिन्होंने अपना काम किया है और उसी का जो काम हुआ है वही हम दर्शक के लिए एग्जिबिट किया जा रहा है। अभी हमारे पास 38 पेंटिंग्स है और 3 स्कल्पचर है। एक जनता के सामने में अपना प्रोडक्ट को लेके नहीं आएंगे, क्रिएटिव काम को लेके नहीं आएंगे, वो अपने आप को प्रूव नहीं कर सकते, अपने आप को इम्प्रूव भी नहीं कर सकते हैं।
1: जमशेदपुर में नशा मुक्त भारत अभियान की औपचारिक शुरुआत जिला मुख्यालय से की गई। इस अवसर पर पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त राजीव रंजन ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करेगा तथा नशा मुक्त समाज के निर्माण का संदेश देगा। कुमार कुणाल, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर।
0: अभी आप सुन रहे थे पूर्वी सिंहभूम जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

अभी आप सुन रहे थे खबरों पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है आदिवासी अखड़ा। आदिवासी अखड़ा आज आप सुनेंगे हो भाषा में।

हा गांडो मिसिको दुरंग हिसे शुक्रवार रे मोराबादी पैते आयुम रांसाओ तनाको तुराम देवगम सीता बोधरा गीतापूर्ति बुद्राम बोबंगा सीता देवगम ओंडो सदानंद तेको आयुम आयुम लियाबू दुरंग दुरंग तनकिन दो दुकु सिंह ओंडो जुड़ी को

हगांडो मिसिको रांची चैबासा टोली ते दुरंग आयुम रासाओ तनको सविता सुंडी लालमाई पूर्णिमा कालुंडिया हेमंत तामसोय ओंडो जुड़ीको दुरंग तनकिन दो प्रेम सिंह पूर्ति ओंडो जुड़ीको दुरंग बु आयुम लिया।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आदिवासी अखड़ा। आज का कार्यक्रम आपने सुना हो भाषा में, प्रस्तुतकर्ता थे गौरव कुमार पांडे। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम सहिया।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड, स्वास्थ्य विभाग झारखंड सरकार है।

0: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का सहिया रेडियो कार्यक्रम सुन रहे हैं आप सभी श्रोता भाई बहन को चंपा मुनि का जोहार। आज के अंक में हम खास चर्चा करने जा रहे हैं सहिया बहनों में संचार कौशल के विकास, प्रशिक्षण और इस क्षमता के उपयोग के बारे में। इससे जुड़ी जानकारियां आप तक पहुंचाने में हमेशा की तरह हमारा साथ देती हैं हमारी पूर्णिमा बहन। तो जोहार पूर्णिमा बहन। आपको भी जोहार चंपा मुनि दीदी। अपने श्रोता भाई बहन को हम बताना चाहते हैं सहियाएं समुदाय के लोगों के बीच घुल मिलकर अपना काम करती है। लोगों से संपर्क के दौरान उचित व्यवहार के साथ अपने विचार ठीक से व्यक्त करना तो जरूरी है ही, दूसरों की बात ठीक से सुनना और समझना भी उतना ही जरूरी है। इसलिए सहिया बहनों में पारस्परिक संचार कौशल का होना बहुत जरूरी है। ये कौशल उन्हें समुदाय के लोगों से संवाद करने, लोगों से स्वास्थ्य समस्याओं की जानकारी लेने, परामर्श देने और लोगों तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच आसान बनाने में सहायक होता है।
1: पूर्णिमा बहन, सबसे अच्छी बात ये है कि चाहे गृह भ्रमण हो, फॉलोअप हो, लोगों को स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ दिलाना हो या समय समय पर आयोजित होने वाली बैठकों में आने के लिए प्रोत्साहित करना हो, इन कामों के लिए सहियाओं का आचार व्यवहार कैसा हो, भाषा कैसी हो, लोगों से क्या बातें करनी चाहिए और क्या नहीं, इसके लिए सहियाओं को संचार कौशल से जुड़ा प्रशिक्षण भी दिया जाए है, ताकि वे अपना काम पेशेवर तरीके से कर पाए।
0: सही बात है चंपा मुनि दीदी। मेरे हिसाब से इस विषय पर और भी अधिक जानकारी लेने के लिए हमें सहिया कार्यक्रम की राज्य समन्वयक अकय मिंज जी से जरूर मिलना चाहिए, ताकि हमारे श्रोता भाई बहन को भी इसका लाभ मिल सके।
1: इससे अच्छी बात और क्या होगी पूर्णिमा बहन। चलिए अकय मिंज जी से मिलते हैं।

0: जोहार अकाई दीदी, हमको पूरा भरोसा था कि इस समय आप फुर्सत में मिलेंगे।
1: कहो कैसी हो पूर्णिमा, लगता है आजकल ज्यादा व्यस्त हो, तभी तो इतने दिनों के बाद आई हो।
0: अकाई दीदी, दरअसल आज हम लोग सहिया रेडियो की श्रोताओं को ये बता रहे हैं कि समुदाय के लोगों से बेहतर तालमेल और सहयोग के लिए सहियाओं में संचार कौशल का होना कितना जरूरी होता है। इस बारे में आपसे कुछ जरूरी जानकारी लेने आए हैं।
1: सचमुच ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम सिलसिलेवार ढंग से पूछो पूर्णिमा, मुझसे जो भी जानना चाहती हो।
0: सबसे पहले हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि समुदाय के लोगों से बेहतर संवाद और तालमेल के लिए सहियाओं में संचार कौशल का होना कितना महत्वपूर्ण है।
1: संचार कौशल का मतलब ही है कि हमें अपनी बातचीत को लोगों तक रखना, लोगों को उन बातचीत को समझने के लिए सहायता करना और लोगों को उन बातों के अनुसार निर्णय लेकर के अपने जीवन में लागू करना।

0: करने के लिए सहायता करना। और संचार कौशल का मतलब है कि आप अपनी बातचीत से, आप अपने रहन सहन से, आप अपने भाव भंगिमा से और अपने व्यवहार से लोगों को कैसे आकर्षित करके आप अपनी बातों में उनको सहमति दिलाते हैं। सहिया हर एक गांव में एक स्वैच्छिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता है जिसे गांव ने बहुत विश्वास के साथ चुना है। और जो हमारी सहिया बहनें हैं वो 10वीं क्लास पास हैं, कुछ लोग कॉलेज भी पढ़ी लिखी हैं, परंतु जब बातचीत होती है गांव में तो गांव में हमारे विभिन्न तरह से हमारे सामाजिक वर्गीकरण हैं, तौर तरीके हैं और संबंधों का एक अलग हमारा प्रावधान और नियम है। तो सहिया जब समुदाय के साथ में एक गांव की बहू लोगों के साथ बात करती है तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। जब गांव की बहू स्वास्थ्य की दूत बन करके गांव के सामने आती है तो उसके पूरे व्यक्तित्व में, ना सिर्फ बोली में परंतु उसके पूरे व्यक्तित्व में, उसके सोचने और समझने की शक्ति और बोलने की क्षमता में विकास करना ज़रूरी होता है और इसलिए संचार कौशल की आवश्यकता होती है।
1: अब ये बताएं कि सहियाओं को संचार कौशल के विकास के लिए किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है?
0: सहियाओं को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत विभिन्न बीमारियों के बारे में और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का तो प्रशिक्षण दिया ही जाता है, परंतु हर एक इन सारे मॉड्यूलर प्रशिक्षण के समय में भी विशेष करके संचार कौशल का भी प्रशिक्षण दिया जाता है कि बहुत आसान तरीके हैं। जैसे जब एक सहिया गृह भ्रमण में जाती है, शिशु का नाप और भार लेना है, तो सबसे पहले जब वो घर पहुंचती है तो वो अभिवादन करे, जोहार बोले, बातचीत करे, परिवार से दुख सुख की बात करे, अपने हाथ धोए, साफ सुथरे हाथ धोने के बाद बच्चे को छुए, माँ से बातचीत करे, माँ की समस्याओं के बारे में बातचीत करे। तो इस तरह से कोशिश की जाती है कि हर एक प्रशिक्षण में उन्हें संचार कौशल का, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो कहते हैं, अंतर व्यक्तिगत संचार की जो क्षमता है, कौशल है, उसको बढ़ाने के लिए सिखाया जाता है। ना सिर्फ पढ़ा के परंतु उनको वहाँ पे एक्टिंग भी करना होता है, उनको ड्रामा की तरह वो करके सीखती हैं और दूसरे लोग फिर बताते हैं कि नहीं दीदी आपको इस जगह ऐसे बोलना था, क्योंकि हर समय सभी जगह एक ही परिस्थिति नहीं होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि परिवार में दुख का समय है या ऐसे जगह चली गई जहाँ पे कि परिवार के लोग नहीं चाहते हैं कि वहाँ आए, तो कभी कभी उनको गुस्सा का भी सामना करना पड़ता है। तो उस समय अगर सहिया भी गुस्सा करने लगे तो वो गलत होगा, परंतु उस जगह वो क्षमा प्रार्थी होकर के वहां से अगले दिन आने की बात करे तो अच्छा होता है। तो इस तरह की चीजों को भी सहियाओं को प्रशिक्षण में सिखाया जाता है।
1: जब सहियाएं समुदाय के लोगों से संपर्क करती है तब उनका व्यवहार और संवाद कैसा होना चाहिए ताकि सहयोग एवं भरोसे का रिश्ता कायम हो और लोग सहज महसूस कर सके?
0: जब सहिया समुदाय में जाती है तो समुदाय में हमारे पास में बहुत अलग अलग आयु वर्ग के लोग हैं। जब बच्चों से मिलती हैं तो उनके साथ दोस्त और माँ की भावना से मिलना होता है। जब किशोर किशोरियों के साथ मिलती हैं तो उनके साथ एक उनके दिल को जीतने वाली उनकी हमराज दोस्त के रूप में सहियाओं को आना होता है। जब गर्भवती माताओं के साथ में मिलती हैं या धाती माताओं के साथ तो सहिया एक बहन के रूप में उनके साथ मिलती हैं और एक माँ के रूप में उनके साथ मिलती हैं। जब परिवार नियोजन की बातचीत करनी होती है तो सहिया उन दंपतियों के साथ में बड़ी बहन की तरह का व्यवहार करती हैं। और जब बुजुर्गों के साथ मिलती हैं, विशेष करके NCD की स्क्रीनिंग के लिए या बुजुर्ग व्यक्तियों की देखभाल के लिए, तो उनकी बेटी और बहू के रूप में सहिया अपने रोल के साथ में उनसे मिलती हैं ताकि उनके दिल को जीत सके और उनकी सहायता कर सके। हमारे गांवों में बहुत सारे मजदूर वर्ग हैं, जब उनके साथ मिलती हैं तो उनके श्रम की बातों को, उनकी तकलीफों में भी बातचीत करती हैं। जब वो गांव के मुखिया से मिलती हैं तो एक बड़े भाई के अभिवादन के साथ उनके साथ मिलती हैं। तो विभिन्न समुदाय के विभिन्न लोगों के साथ में सहिया की भूमिका अलग होती है, पर उसका जो मुख्य उद्देश्य होता है कि वो स्वास्थ्य की दूत बन करके गांव समुदाय में कार्य करती है।
1: सहियाओं के लिए अपनी बात ठीक से कह पाना और किसी मरीज, परिजन या देखभालकर्ताओं की बातें धैर्य से सुनना कितना जरूरी होता है?
0: संचार कौशल में

0: केवल बोलना ही कौशल नहीं है, परंतु संचार कौशल का जो एक आधार है वो है धैर्य से सुनना। जैसे एक बच्चे, अगर कोई बच्चा रो रहा है और बच्चे की माँ बताना चाह रही है कि मेरा बच्चा, चूंकि रात से उसको उल्टी हो रहा है इसलिए रो रहा है, पर सहिया कहती है कि बिना सुने अगर कहती कि नहीं तुम दूध जल्दी जल्दी पिलाओ तो ठीक हो रहेगा, तो जो उपचार वहाँ पे प्राथमिक रूप से होना है वो नहीं हो करके और गड़बड़ी हो सकती है। तो ये ज़रूरी होता है, क्योंकि जब सैया स्वास्थ्य की दूत है, जब परिवार में कोई समस्या आती है तो लोग घबराते हैं, और घबराने के समय में बहुत बार होता है कि लोग सही बातों को बता नहीं पाते हैं। तो सैया का उस जगह काम होता है कि बहुत धीरज से उनके साथ बातचीत करें, सुने, और सुनने के बाद में उन्हें सलाह दें ताकि जो भी समस्याएं हैं उसका निदान हो सके।
1: समुदाय के लोगों से मुलाकात, गृह भ्रमण या फॉलोअप के दौरान क्या सहियाएं लोगों को स्वास्थ्य योजनाओं अथवा चिकित्सा सेवाओं की भी जानकारी देती है?
0: जब सहिया निकलती है समुदाय में स्वास्थ्य की गतिविधियों के लिए, तो उसको विभिन्न प्रकार की जानकारियां भी उसके साथ होती हैं। जैसे उनके पास में विभिन्न बीमारियों के बारे में जानकारी, फ्लिप चार्ट और छोटे छोटे बुकलेट्स, और उनको साथ में कुछ चित्र के साथ बना हुआ लीफलेट्स भी दिया जाता है ताकि वो लोगों को उसको दिखा के भी बातचीत कर सकें। इसके साथ साथ जब सहिया बच्चों के लिए गृह भ्रमण में जाती है तो MCP कार्ड में बहुत सारे परामर्श की जानकारी रहती है, वो भी बात करती है। उसके पास HBNC और HBYC जो बैग मिला है उसमें टूल्स है, उसके माध्यम से वो बच्चों के विकास की भी के भी जरियों को देखती है। सैया जब 30 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के साथ में CBAC फॉर्म भरती है तो उनके साथ बातचीत करती है कि अभी जो गैर संचारी रोग हो रहे हैं उससे बचाव का क्या उपाय है और कितने लोगों को उसकी जांच की आवश्यकता है। तो सैया ना सिर्फ गृह भ्रमण के दौरान केवल माँ और बच्चे की देखभाल करती है, पर इससे संबंधित और भी जो नए नए सरकारी योजनाएं आ रही हैं उसके बारे बताती है। अभी सहिया हरेक लोगों का आभा कार्ड भी बनवा रही हैं, जिसके द्वारा लोगों को उसका लाभ होगा कि उनके स्वास्थ्य के बारे में सारी जानकारियां एक कार्ड में, एक चिप में होगा कि जब किसी अस्पताल में जाएंगे तो वो निकल के आएगा कि इस फलाना व्यक्ति को 2 साल पहले भी कोई बीमारी थी। अभी सहिया गोल्डन कार्ड भी बनवा रही हैं और स्वास्थ्य की विभिन्न योजनाओं से लोगों को जोड़ रही हैं।
1: अकय मिंज जी, आपने समय निकालकर सहियाओं में संचार कौशल के विकास को लेकर जो इतनी अच्छी जानकारी साझा की, उम्मीद है कि इससे हमारे श्रोताओं और सहिया बहनों का काफी लाभ होगा। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: सच में बहन, अकय मीन जी से बहुत काम की जानकारी मिली जो हमारी सहिया बहनों और श्रोताओं के लिए उपयोगी साबित होगी।
1: हाँ चंपा मुनि दीदी, इसके अलावा एक और अच्छी बात ये है कि मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत गर्भवती महिलाओं के प्रारंभिक पंजीकरण और 4 प्रसव पूर्व जांच सुनिश्चित कराने पर ग्रामीण सहियाओं को 300 रूपए और शहरी सहियाओं को 200 रूपए प्रोत्साहन राशि के रूप में मिलता है।
0: इतना ही नहीं पूर्णिमा बहन, स्वास्थ्य सुविधा केंद्र पर प्रसव कराने और टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए भी ग्रामीण सहियाओं को 300 रूपए और शहरी सहियाओं को 200 रूपए मिलते हैं।
1: बिल्कुल चंपा मुनि दीदी, अब श्रोताओं को ये भी याद दिला दे, आप जन स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में किसी भी जानकारी या शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर फोन कर सकते हैं।
0: हाँ तो प्यारे श्रोता भाई बहन, आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे कुछ नई स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी जानकारियों के साथ। अब दीजिए इजाजत,
1: जोहार।
0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड, स्वास्थ्य विभाग झारखंड सरकार है।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम सहिया, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। श्रोताओं अब प्रस्तुत

0: दोस्तों, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी रांची। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम रजनीगंधा। जिंदगी है और ये गीत सुनने के बाद आपको सुकून जरूर मिलता है। और ज़िंदगी में अगर बुरा वक्त नहीं आता है तो अपने में छुपे हुए और गैरों में, गैर छुपे हुए अपनों में कभी नज़र भी नहीं आते। और इन सब नज़रियों को देखने के बाद दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ज़िंदगी आपकी है और आपको जीना है अपने हिसाब से। तो चलिए आपको सुनाते हैं अगला ये प्यारा सा मधुर संगीत जिसमें आप खो जाएं।
1: थोड़ा

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम रजनीगंधा। रजनीगंधा में लेते हैं एक छोटा सा विराम, विराम के बाद हाजिर होते हैं कार्यक्रम रजनीगंधा के साथ।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: विराम के बाद आप सबों का फिर से स्वागत है कार्यक्रम रजनीगंधा में। बनके बरसात मेरे आंगन में आ जाओ, सूंधी गंध बंद कर जीवन में छा जाओ। चुनकर लाई हूँ कुछ फूल चमन से, बनाकर गजरा अपने जूड़े में सजाओ।

मोहब्बत से महकती है जिंदगी की हर राह, दिल में उम्मीद हो तो आसान लगता है हर सफर। प्यार और जिंदगी के इसी खूबसूरत एहसास को एक सुरीले नगमे के साथ चलिए महसूस करते हैं।

0: जाने दो ना।
1: ओ छोकरा, चलो चलो अंदर चलो, जल्दी करो।

0: ये तुम्हारा टिकट और ये पानी, बैग में कुछ खाने का सामान है।
1: हर दुआ मुकम्मल हो ये जरूरी तो नहीं, हर चाहत को मंजिल मिले ये जरूरी तो नहीं। प्यार जिंदगी का सबसे अनमोल एहसास होता है, लेकिन यह हर किसी के किस्मत में नहीं होता।

0: ये थी रजनीगंधा कार्यक्रम की आज की अंतिम प्रस्तुति। जिंदगी हमें हर दिन एक नया मौका देती है खुद को बेहतर बनाने का, हार कर फिर मुस्कुराने का और गिर कर दोबारा उठ जाने का। तो बिल्कुल मुस्कुराते रहिए और आकाशवाणी रांची सुनते रहिए। दीजिए चित्रलोक कार्यक्रम में इजाजत। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। श्रोताओं, प्रस्तुत है खबरों पर आधारित कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक, ऊर्जा क्षेत्र में बढ़ते सहयोग पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं रणनीतिक विश्लेषक अतुल अनेजा। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
2: 2026 में भारत की अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स सदस्य देशों के ऊर्जा मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक आज गुरुग्राम में सम्पन्न हुई। वैश्विक ऊर्जा चुनौतियों और अवसरों पर और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग पर हुई चर्चा के बाद ब्रिक्स देशों के सामूहिक दृष्टिकोण और सहमति को दर्शाते हुए एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी की गई। इस घटनाक्रम के महत्व, इसकी बारीकियों और विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं रणनीतिक विश्लेषक अतुल अनेजा। अतुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी में।
3: धन्यवाद सोनू जी।
2: अतुल जी, जो ये 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक हुई है, इसके महत्व को सर्वप्रथम आप बताएं कि कैसे आंकते हैं, खासकर जो वर्तमान ग्लोबल एनर्जी इकोसिस्टम है, जिस तरह के उसमें चैलेंजेस हैं, उसको देखते हुए ये जो सहयोग ब्रिक्स देशों के बीच उभर के आ रहा है, इसके सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या हैं?
3: सुनील जी, अगर आप देखें किसी संदर्भ में अब ये बैठक हुई है, और संदर्भ अगर हम देखें तो जो ईरान के ऊपर जो युद्ध चला इतने दिनों का, अब लगता है कि समाप्ति की ओर है, उसने एक चीज दर्शाई कि हमारी फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर बहुत वल्नरेबिलिटी है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ऊपर खासकर बहुत वल्नरेबिलिटी है, गल्फ देशों से। तो अब भारत की अगर हम बात करें तो हमारा जो इम्पोर्ट कंटेंट है बहुत हाई है, 80% के प्रतिशत हम बाहर से लेते हैं। इसलिए हमें एनर्जी के ऊपर सेल्फ सफिशियंट होने की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास तेल के उतने भंडार नहीं है, गैस के भंडार उतने नहीं है, इसलिए हमें अल्टरनेटिव फ्यूल्स पे जाने की जरूरत है ताकि हम आत्मनिर्भर हो सके। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो है कि जो देश मिलके ये काम सोच रहे हैं या ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं वो इमर्जिंग इकोनॉमीज है, यानी कि ये पश्चिमी देश नहीं है, ये उभरते हुए देश है जिसमें भारत है, चीन है, रूस है, ब्राजील है और 11 देश आपने जैसे कहा था, यूएई आ गया, ईरान भी उसमें आ गया। तो ये जो कॉन्क्लेव बना है ये उभरते हुए देशों का है, तो एक नई दुनिया की तरफ हम जा रहे हैं, जो पोस्ट वेस्ट वर्ल्ड जो कहते हैं उसके ऊपर हम एनर्जी की बात कर रहे हैं। और तीसरी इसमें एक बात जो जुड़ी हुई है वो है कि आफ्टर ऑल दो चीजों पे एम्फोसिस किया गया, एक तो अफोर्डेबिलिटी, क्योंकि इमर्जिंग इकोनॉमीज अब इस तरह से सो कॉल्ड रिच देश नहीं है, इसलिए अफोर्डेबिलिटी बहुत जरूरी है। और फाइनली जो बात जा रही है कि जो डेवलप होगी टेक्नोलॉजीज, रिन्यूएबल या फ्यूचर टेक्नोलॉजीज, जो एनर्जी टेक्नोलॉजीज होगी, उसको हमें शेयर करना है किसके साथ, ग्लोबल साउथ के साथ। तो एक ग्लोबल साउथ का एलिमेंट भी ब्रिक्स के साथ जुड़ जाता है। तो मुझे लगता है ये एक तो कॉन्टेक्स्ट हो गया और उसका जो एक तरह से डायरेक्शन है वो भी बहुत क्लियर हो गया है इस बैठक के बाद।
2: बिल्कुल। और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में भारत के स्वच्छ ऊर्जा बदलाव और भविष्य के लिए तैयार ऊर्जा रोडमैप पर प्रकाश डाला। उन्होंने सर्वेषां ऊर्जम के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा।
4: गाइडेड बाय द विजन ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर एंड द ब्रिक्स चेयरशिप थीम बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, इंडिया सीक्स टू स्ट्रेंथन ब्रिक्स कोऑपरेशन टुवर्ड्स बिल्डिंग एनर्जी सिस्टम्स दैट आर रेसिलियंट, फ्यूचर रेडी, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल एंड पीपल सेंट्रिक। इंडियाज ओन एनर्जी जर्नी रिफ्लेक्ट्स दिस अप्रोच फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ सर्वेषां ऊर्जम, दैट इज energy for all. Our vision extends beyond meeting today's energy needs. India seeks to build a future-ready energy system that is digital, centralized, and consumer-centric. Clean power, smart grids, energy storage, and emerging fuels will work together to create a more reliable and sustainable energy ecosystem. This will support economic growth and improve the lives of over 1.4

0: million people. Today, India is the world's third largest producer and consumer of electricity.
1: जिस तरह से खट्टर जी ने बताया कि आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति के मुख्य आधार के रूप में किफायती, भरोसेमंद और टिकाऊ ऊर्जा बहुत ही जरूरी है और हम विश्व के तीसरे सबसे बड़े प्रोड्यूसर कंज्यूमर हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और उन्होंने जो हमारा रैपिड क्लीन एनर्जी एक्सपेंशन है, चाहे वो सोलर एनर्जी हो, बायो एनर्जी हो, उसमें जो हमारा लीडरशिप रोल है उस पर भी बल दिया. सो आपको लगता है कि भारत ग्लोबल एनर्जी इकोसिस्टम में एक नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है?
2: सोनू जी, देखिए कि एक दिशा मिली है, डॉक्ट्रिन मिला है, एनर्जी फॉर ऑल. छोटा सा तीन वर्ड्स का है लेकिन इसमें बहुत कुछ कहा जाता है. एनर्जी फॉर ऑल मतलब हम सिर्फ अपने लिए नहीं देख रहे हैं, पूरे विश्व के लिए देख रहे हैं. और अगर अब इससे जोड़े पहले वाला स्लोगन जो है, जो सोलर एनर्जी के ऊपर बात हुई थी, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, तो वो भी पूरे विश्व को देखते हुए उसके कॉन्टेक्स्ट या पर्सपेक्टिव में बात हुई थी. तो इसलिए जो दिशा जो आप कह रहे हैं वो लीडरशिप का है या नेतृत्व का है, लेकिन मंशा जो है वो ग्लोबल है. और खास करके जो आपने बात की, इसमें ग्लोबल साउथ हमारा फोकस रहा है, चाहे वो G20 की हमारी मीटिंग हुई या उसके बाद की कोई मल्टीलैटरल्स हुई है, तो हमने ग्लोबल साउथ को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है, बल्कि केंद्र बिंदु बनाया है हमारी सोच की दिशा का. तो एक तरह से ये दोनों चीजें अभी बैठक हुई है उसमें भी दर्शाई जा रही है. साथ में फिर इसको करना कैसे, इसके रोड मैप्स क्या हो सकते हैं, जो पावर मिनिस्टर ने कहा है उसमें वो चीजें भी आती हैं कि आपको स्मार्ट ग्रिड्स कैसे बनानी है, मतलब डिजिटली कंट्रोल ग्रिड्स जो ऑटोमेटिकली कंट्रोल करें, जैसे जैसे पावर डाउन जाती है अप जाती है उसको ऑटोमेटिक कंट्रोल उसका होता है डिजिटली, तो वो स्मार्ट ग्रिड होती है. स्मार्ट ग्रिड की बहुत जरूरत है अगर आप शेयर करना चाहें एनर्जी. और सबसे बड़ी बात होती है खास करके रिन्यूएबल एनर्जी की हम बात करें तो स्टोरेज की, भाई सन चला गया विंड चली उसके बाद स्टोर कैसे करनी है, ये एक बहुत बड़ा रिसर्च का टॉपिक. और उसके ऊपर भी इस बार जो है एक संस्था बनाई है जिसपे आप स्मार्ट ग्रिड्स और स्टोरेज के ऊपर खास करके रिसर्च होगी. तो ये भी सिर्फ बात सोच की नहीं है लेकिन कैसे करना है इसको, इस बड़े प्रयास को, क्योंकि सब कुछ पहले से लिखा हुआ नहीं है, ये नए प्रोटोकॉल्स आ रहे हैं. अब इसमें एक और चीज आएगी, तो लोग चाहिए, नए स्किल्ड मैन पावर चाहिए, ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए, सबको इसमें ट्रेनिंग की जरूरत है. उसके लिए भी संस्था बनाई गई है इस बार कि जहां पर ये ट्रेनिंग भी दी जाए. तो सिर्फ बात ही नहीं हो रही बट इसको कहते हैं ना वॉक द टॉक, वो भी साथ साथ हो रहा है कि भाई करना तो है, कैसे करना है वो भी, कैसे हम लक्ष्य पे पहुंचेंगे, और जो गोल है वो ग्लोबल है.
1: बिल्कुल, आपने जैसे कहा कि ये ब्रिक्स ऊर्जा अनुसंधान सहयोग प्लेटफॉर्म जिसकी बात हुई है, जिसके अंतर्गत स्मार्ट ग्रिड और ऊर्जा भंडारण की बात हुई है, और जो ये प्लेटफॉर्म है इसमें ब्रिक्स देशों के बीच जो अनुसंधान, तकनीकी सहयोग और नॉलेज शेयरिंग होगी, आपको लगता है कि ये सारे इन देशों के एनर्जी सिक्योरिटी को और एनर्जी स्टेबिलिटी को मजबूत करने में सहायक होगा?
2: बिल्कुल, क्योंकि बात सुनी जी हो रही है इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग की. जब तक इंस्टीट्यूशंस नहीं बनेगी, संस्थान नहीं बनेगी, तब तक आप जो है एश्योर तरीके से आगे नहीं बढ़ सकते. तो पहले से एक बनी हुई है ये संस्था, ब्रिक्स एनर्जी रिसर्च कॉपरेशन प्लेटफॉर्म. ये बड़ा प्लेटफॉर्म है, ये वर्चुअल है सिर्फ, इसमें कोई फिजिकल हेडक्वार्टर्स नहीं है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म के संदर्भ में रिसर्च और उसके रिकमेंडेशन वगैरह वगैरह सारे जो देश हैं ब्रिक्स के इसमें कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं. आप स्टडीज जिसपे करनी है वो एलोकेट की जाती है, ये जो मंत्रालय हैं ये इसको कोऑर्डिनेट करते हैं, उसके बाद फिर एक्सपर्ट्स आ जाते हैं और डाउनस्ट्रीम होके स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन से रिसर्च वर्क करती है. एक तो ये ERCP एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, और इसके साथ साथ एक तो गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या है, क्योंकि बात फिर आती है स्मार्ट ग्रिड्स और एनर्जी स्टोरेज की, उसके भी गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं, किस आधार पर हम काम करेंगे, क्योंकि बहुत से देशों की अपनी रेगुलेशंस होती है, इसको एक गाइडिंग प्रिंसिपल्स की जरूरत होती है जो कॉमन प्लेटफॉर्म पे सबको लेके आता है. तो वो भी इस बार बात हुई है, यहाँ पर ये गाइडिंग प्रिंसिपल भी अडॉप्ट किए गए हैं. तीसरी बात है कि इसके ऊपर जो रिसर्च है स्मार्ट ग्रिड और एनर्जी स्टोरेज की, एक सेपरेट एक संस्था बनी है जो इसके ऊपर डिटेल में फोकस से और विस्तार से इसके ऊपर रिसर्च करेगी.
1: एक और बड़ा रोचक केंद्र बिंदु निकल के आया है कि भविष्य की ऊर्जा प्रणालियों को आकार देने में युवा भागीदारी की भूमिका को बहुत बल दिया है, और ब्रिक्स युवा ऊर्जा शिखर सम्मेलन के आयोजन का समर्थन किया ऊर्जा मंत्रियों ने, ये आपको कितना महत्वपूर्ण लगता है?
2: देखिए, सोच नहीं है और सोच फ्यूचरिस्टिक है, डिजिटल है, न्यू इकोनॉमी की है, तो इसमें यूथ की भागीदारी तो बहुत जरूरी है, उसके बिना ये होगा नहीं का. तो एक तरह से एक नया साइकिल शुरू हुआ है फ्यूचर एनर्जी का, जिसमें यूथ की भूमिका जो होगी मेरे को लगता है वो सेंट्रल रहेगी. जैसे आपने कहा उससे साथ में क्योंकि रिसर्च का एलिमेंट भी आ जाता है, R&D का एलिमेंट आता है, इसमें स्टार्टअप्स वगैरह की भूमिका आएगी, यूथ का इंटीग्रेशन इसमें

0: जरूरी है क्योंकि उसके बिना होगा नहीं काम। तो एक सेंट्रल फोकस रहेगा यूथ को इंटीग्रेट करने के लिए और ट्रेन करने के लिए। हमारी जो जेंजी जनरेशन है उसको खासकर इसमें शामिल होगी। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही अहम और बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। और साथ में अगर हम देखा जाए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन फाइनली हमको यूथ के लिए क्रिएट करनी, तो उसके लिए क्रिएट करने के लिए पुरानी तरीके नौकरियां मिलने वाली नहीं है, अब आपको खुद ही क्रिएट करनी पड़ेगी। तो इंटीग्रेट करना इसको, यूथ को स्किल्ड करना इन नई टेक्नोलॉजीज में बहुत जरूरी है हमारे फ्यूचर के लिए।
1: अतुल जी, ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों ने राष्ट्रीय परिस्थितियों, विकास प्राथमिकताओं और ऊर्जा प्रवाह को सम्मान देने के महत्व को भी दोहराया। इसको आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं, खासकर विकासशील देशों के लिए जिनके लिए एनर्जी ट्रांजिशन जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ इस स्टेज में फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल भी जरूरी है?
0: बिल्कुल, क्योंकि आप इस वक्त क्लाइमेट फंडामेंटलिस्ट नहीं बन सकते कि सिर्फ रिन्यूएबल ही करेंगे। भारत में देखिए कोयले के कितने बड़े भंडार है, आप उसको छोड़ तो नहीं सकते। आप क्लीन कोल की तरफ जा सकते हैं कि वो पोल्यूटिंग ना हो, लेकिन फॉसिल फ्यूल तो जरूरी है। जो गैस है, अगर आप भारत में देखें तो हमारे बहुत सारे व्हीकल्स जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह में इन्वॉल्व है या ऑटो रिक्शा वगैरह है, सब सीएनजी पे चलते हैं। तो आपको एक अच्छा मिक्स की जरूरत है, बायोफ्यूल्स की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि ये जो बैलेंस है बिटवीन फॉसिल फ्यूल्स या क्लीन फॉसिल फ्यूल्स और रिन्यूएबल्स के ऊपर बहुत अच्छा बैलेंस इस बैठक में देखने को मिला है, क्योंकि बात क्लाइमेट चेंज की भी हो रही है, सस्टेनेबिलिटी की भी हो रही है। इसलिए वो कॉम्बिनेशन जो एक तरह से एक मॉडल बनाने की जरूरत है, वो शायद भारत दिखा सकता है बाकी विकासशील देशों के लिए। और फाइनली बात यह है कि विकासशील देश जब जुड़ जाते हैं तो स्केलेबिलिटी और भी मिलती है, आपकी जो अफोर्डेबिलिटी, उसकी जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है। तो इसलिए विकासशील देशों का उसमें जुड़ना बहुत जरूरी है। और भारत की सोच में ये बहुत ही क्लियर है कि शेयर करना है, और शेयर करना सिर्फ ये नहीं कि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर होगा, लेकिन इट मेक्स इकोनॉमिक सेंस कि फाइनली अगर आपको कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से एनर्जी प्रोवाइड करनी है दुनिया की मेजोरिटी पॉपुलेशन को, तब ये जुड़ना बहुत जरूरी है और शेयर करना बहुत जरूरी है।
1: जी बिल्कुल, जिस तरह से इंटरनेशनल सोलर अलायंस भारत ने शुरू किया और जो उसमें प्रगति हुई है उसके बारे में भी उन्होंने बात करी कि 2014 में सौर ऊर्जा क्षमता 3 गीगावाट थी, उससे बढ़कर आज वो 154 गीगावाट से अधिक हो गई है। और छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने में तेजी लाने और नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार जो सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लाई है, आपको लगता है कि इस तरह के मॉडल्स ये बाकी देश भी अडॉप्ट कर सकते हैं और हम भी दूसरे देशों से सीख सकते हैं?
0: बिल्कुल, जैसे आपने बात की सोलर अलायंस की, देखिए अब उससे क्या हुआ है कि 2014 से पहले तो स्केल आप देखिए 3 गीगावाट से फाइनल फिगर आपकी कितने गुना बढ़ चुकी है, 3 से 150, इट्स ए रेवोल्यूशन, एनर्जी रेवोल्यूशन है इसको कहते हैं। इससे एक्सपीरियंस आपका गेन हुआ है, अब इसको आप शेयर कर सकते हो क्योंकि एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। अगर सन के साथ किया है तो शायद और तरीके से भी हम कर सकते हैं, बाकी जो रिन्यूएबल सोर्सेज है उसमें भी हो सकता है। इसमें जब आपने शुरू में बात की लीडरशिप की, एक नेचुरल लीडरशिप आती है क्योंकि एक्सपीरियंस आ गया आपके पास, और इसकी एप्लीकेबिलिटी बाकी कंट्रीज के लिए बिल्कुल है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सपीरियंस रहा है, और अब हम आगे इसको दूसरे जो सोर्सेज आ रहे हैं जैसे हाइड्रोजन की बात हो रही है उसमें आप अलग फिर कॉन्फिडेंस से जा सकते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन की बात हो रही है, उसके ऊपर भी रिसर्च बहुत जरूरत है। तो नाउ यू कैन पुट योर फुट फॉरवर्ड विद कॉन्फिडेंस। मुझे लगता है भारत ने जैसे डीपीआई किया है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारे देशों में आपको ये मिल जाता है डीपीआई जो हमारा पेमेंट सिस्टम है, उसी तरह से एनर्जी के ऊपर भी हमारा भी एक सारा है। और मॉडल वही है, शेयर करना है और ग्लोबल साउथ के साथ शेयर करना है, क्योंकि भारत में स्केल बहुत बड़ा है, क्यों हमारा एक्सपीरियंस इतना हो जाता है फिर आसान हो जाता है हमारे लिए वो शेयर करना। तो मुझे लगता है कि ये एनर्जी के ऊपर भी रिन्यूएबल एनर्जी हो या न्यू एनर्जी हो, तो हम नेचुरल लीडर एक तरह से बन रहे हैं। ये नहीं कि हमारी मंशा लीडरशिप के अपने आप को ज्यादा जबरदस्ती आगे करने की, लेकिन वो एक्सपीरियंस ऐसा है कि आप शेयर कर सकते हो, आप लीड कर सकते हो। ये एक बहुत ही फॉरवर्ड लुकिंग स्टेप्स लिए गए हैं एनर्जी के फील्ड के ऊपर।
1: जैसा आपने कहा कि धरातल पर हमने निर्धारित समय से पहले 20% एथेनॉल मिश्रण हासिल किया, बहुत सारे जो हमारे गोल्स थे उनको हमने समय से पहले क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए या क्लाइमेट फ्रेंडली जो स्टेप्स थे उनको हासिल किया। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद सर मुझे।
2: अभी आप सुन रहे थे 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक, ऊर्जा क्षेत्र में बढ़ते सहयोग पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे रणनीतिक विश्लेषक अतुल अनेजा। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया

0: मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए 3 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नशा रोधी अभियान को सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग करने को कहा। केंद्र सरकार भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों को तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत करेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई। भारत ने वायुसेना के 2 जहाजों से आपातकालीन राहत सामग्री भेजी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, अमेरिका और ईरान भविष्य में किसी भी टकराव को टालने के लिए सीधा सैन्य संपर्क स्थापित करने पर सहमत। भारतीय निशानेबाज
1: आईएसएसएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण सहित 24 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहे और यूएस ओपन बैडमिंटन में रौनक चौहान, किदांबी श्रीकांत सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रूपये है। गृहमंत्री ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया।
2: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
1: गृहमंत्री ने कहा कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों और इससे संबंधित तस्करी नेटवर्क के खिलाफ अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
2: ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज कार्गो, डार्कनेट, क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, ये सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामूहिक और संगठित होनी चाहिए, एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए।
1: श्री अमित शाह ने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच करीब 26 लाख किलो सिंथेटिक मादक पदार्थ जब्त किए गए थे, जबकि 2014 से 2026 के बीच ये मात्रा बढ़कर 1,18,00,000 किलो से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की लगातार कार्रवाई को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, एआई, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि समझौते में पात्र भारतीय पेशेवरों को ब्रिटेन में सामाजिक सुरक्षा अंशदान से छूट मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत फ्रेजाइल 5 से निकलकर विश्व के सर्वाधिक संभावनाओं वाले देश के रूप में सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के हितों पर केन्द्रित है। इस बीच श्री गोयल ने लंदन में एचएसबीसी के ग्लोबल ट्रेड सॉल्यूशंस के प्रमुख विवेक रामचंद्रन से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत यूके व्यापार आर्थिक और व्यापार समझौते से कारोबारी विस्तार का परिवेश निर्मित करने के बारे में बात की। श्री गोयल ने कहा कि मजबूत व्यापार हित और सीमा पार बैंकिंग व्यवस्था के जरिए नए बाजारों में उद्योगों की मदद करने में वित्तीय संस्थानों की

0: महत्वपूर्ण भूमिका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्तात के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के दो विमानों से भेजे हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि अमिस्तात का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत सेना की फील्ड अस्पताल इकाई भी भेजी गई है। अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमरीका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर और अमरीकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। इस बीच अमरीका और खाड़ी सहयोग परिषद ने आज बहरीन के मनामा में एक मंत्रिस्तरीय बैठक में अपनी रणनीतिक साझेदारी की पुष्टि की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में यूरोपीय देशों के पत्रकारों के समूह से बातचीत की। डॉ जयशंकर ने भारत में क्रांतिकारी बदलाव और वैश्विक स्थिति तथा भारत और यूरोप के बीच बढ़ते संबंधों का उल्लेख किया। उन्होंने भरोसा जताया कि यूरोपीय पत्रकारों की भारत यात्रा से उनकी भारत और भारत यूरोप भागीदारी की संभावनाओं के बारे में समझ बढ़ेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भूटान के शिक्षा मंत्री यीजांग दे थापा से मुलाकात की। इस दौरान शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर चर्चा हुई। श्री प्रधान ने कहा कि दोनों देशों के पास शिक्षा, नवाचार और क्षमता निर्माण के व्यापक मंचों पर सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमाणु, अंतरिक्ष और क्वांटम प्रौद्योगिकियां भविष्य के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करेंगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि भारत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में तेजी से एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि मिशन ने अपने शुभारंभ के 3 वर्ष में ही आधे से अधिक लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि इस मिशन की गति भारत की बढ़ती वैज्ञानिक क्षमताओं और उभरती प्रौद्योगिकियों में वैश्विक के नेता बनने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि एआई नवाचार, पारदर्शिता और दक्षता को नया रूप दे रही है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शेखावत ने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्व में बदलाव लाने और व्यक्तियों के जीवन को सुगम बनाने के लिए तैयार है।
1: आने वाले समय में टूर ऑपरेटर्स की भूमिका को, ट्रैवल गाइड की भूमिका को, डेस्टिनेशन सिलेक्शन की भूमिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी से बहुत बड़ा रोल प्ले करने लगी है। भारत जैसा देश जिसकी 10,000 साल से भी ज्यादा की पुरानी कंटिन्यूटी की सभ्यता है, हम अपने सभ्यगत यात्रा को दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए एआई बेस्ड कंटेंट बना करके उनको आकर्षित कर सकते हैं, उनके बेहतर अनुभव दे सकते हैं।
0: विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने आज नई दिल्ली में सभी राज्य विद्युत नियामक आयोगों और संयुक्त विद्युत नियामक आयोगों के अध्यक्षों के साथ नियामक मंच की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने कहा कि विश्वसनीय, गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, शिकायतों के त्वरित निवारण और व्यापार में सुगमता तथा जीवन यापन में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए एक पारदर्शी, पूर्वानुमानित और उत्तरदायी नियामक ढांचा अत्यंत आवश्यक है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 28 जून को नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 2 दिन के सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी तथा विशेषज्ञ समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित होंगे। बैठक में प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा और ग्रामीण भारत के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अयोध्या की एक अदालत ने राम मंदिर दान में कथित अनियमितता बरतने के मामले में सभी गिरफ्तार

0: आठ आरोपियों को आज 29 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आरोपियों से 79,85,000 से अधिक रुपए बरामद किए गए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सदस्य कृष्ण मोहन ने कल प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कोलकाता के ताराताला दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। घायलों का उपचार कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में एक सरकारी अधिकारी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार ने घटना की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। बचाव अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की। राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई, बेंगलुरू और विशाखापट्टनम में कई अभियानों में 23 करोड़ रुपए का 15 किलो सोना जब्त किया है। संगठित सोने की तस्करी करने वाले गिरोह से जुड़े इस मामले में 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान सूरत में 2 किलो कोकीन जब्त कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पिछले महीने से अब तक निदेशालय ने कुल 26 किलो कोकीन जब्त की है और 14 विदेशी नागरिकों सहित 22 लोगों को गिरफ्तार किया है। आज देशभर में आशूराए मुहर्रम पूरे श्रद्धा और सद्भाव के साथ मनाया गया। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके समर्पित साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस अवसर पर ताजिया जुलूस निकाले गए, जिन्हें बाद में शाम को निर्धारित स्थानों पर दफनाया गया। मजलिसें या धार्मिक सभाएं भी आयोजित की गईं। इस अवसर पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में इस सप्ताह मूसलाधार बारिश की संभावना है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भारी वर्षा की संभावना जताई है। वहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में सोमवार तक गरज के साथ बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर रविवार तक लू चलने की संभावना भी व्यक्त की है। यीशु के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: और अब कुछ खेल खबरें। भारतीय निशानेबाजों ने जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान हासिल कर अपने अभियान का समापन किया। जर्मनी के सुहल में आयोजित इस प्रतियोगिता में भारत ने 7 स्वर्ण, 8 रजत और 9 कांस्य पदक सहित कुल 24 पदक अपने नाम किये। यूएस ओपन बैडमिंटन में किदाम्बी श्रीकांत, रौनक चौहान सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुरुष सिंगल्स में रौनक चौहान ने चीनी ताइपे के चो तियन चेन को और किदाम्बी श्रीकांत ने मलेशिया के ली जी जिया को हराया। वहीं महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की तोंग सियू तोंग को हराया तो रक्षिता ने चेन सू यू को पराजित किया और देविका ने थाईलैंड की टोन रुक साई हिंग को हराया। फीफा फुटबॉल विश्वकप के ग्रुप आई मुकाबले में देर रात नॉर्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इराक और सेनेगल आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 बजे से खेले जाएंगे। इस बीच इक्वाडोर, आइवरी कोस्ट, नीदरलैंड्स और तुर्की ने अपने अपने मुकाबले जीते हैं। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए 3 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नशा रोधी अभियान को सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग करने को कहा। केंद्र सरकार भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देशभर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत करेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई। भारत ने वायुसेना के 2 जहाजों से आपातकालीन राहत सामग्री भेजी। अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, अमरीका और ईरान भविष्य में किसी भी टकराव को टालने के लिए सीधा सैन्य संपर्क स्थापित करने पर सहमत। भारतीय निशानेबाज आईएसएसएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण सहित 24 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहे और यूएस ओपन बैडमिंटन में रौनक चौहान, किदाम्बी श्रीकांत सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम शगुन चोपड़ा विद द न्यूज एट 9।

अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल जयानी ने इस मीटिंग की मुआमिन सदारत की। मीटिंग में जीसीसी रुकन ममालिक के वज़राए खारजा और जीसीसी सेक्रेटरी जनरल जासिम अल बुदायवी ने शिरकत की। आज आशूराए मुहर्रम मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पूरी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। पैगम्बर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने अकीदत और सदाकत और इंसाफ की सरबुलंदी के लिए मैदान करबला में अपनी जान का जो नजराना पेश किया था उसकी याद में ये दिन मनाया जाता है। इस मौके पर ताजियों के जुलूस निकाले गए। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि मुहर्रम हमें हजरत इमाम हुसैन की अजीम कुर्बानी की याद दिलाता है जिससे शुजात हमदर्दी और हक इंसाफ के तई पाबंदी की अकदार को तहरीक मिलती है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि यह मुकदस त्यौहार माशरे में यकजहती अमन और बाहमी इज्जत के बंधन को मुस्तहकम करने के लिए लोगों को तहरीक देता है। आशूरे मुहर्रम के मौके पर आज वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी ने हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की कुर्बानियों को याद किया। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन से कई लोगों को सच्चाई और इंसाफ के रास्ते पर कायम रहने की तरगीब मिलती है। भारतीय महकमे मौसमियात ने कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों के दरमियान गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई हिस्सों में जुनूबी मानसून ने मजीद पेशकदमी की है। शुमाल मशरकी भारत, ज़ैली हिमालयी मगरबी बंगाल और सिक्किम में इस हफ्ते के दौरान शदीद से बहुत शदीद बारिश होने का इम्कान है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने उन 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है जिनके नाम श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अतिया केस में दायर की गई पहली एफआईआर में दर्ज किए गए हैं। वजीर आला योगी आदित्यनाथ की हिदायत पर कायम की गई खसूसी जांच टीम एसआईटी की सिफारिश पर यह एफआईआर दर्ज की गई है। आज अयोध्या में एक अदालत ने राम मंदिर अतियात मामले में गिरफ्तार 8 मुलजमान को अदालती तहवील में भेज दिया। इन मुलजमान को उनकी गिरफ्तारी के बाद अदालत में पेश किया गया था। अयोध्या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में इस्तगासा के अफसर केसी वर्मा ने अखबार नवीसों को बताया कि उनका रिमांड बरोज़ पीर 29 जून तक बढ़ा दिया गया है। जर्मनी में मुनक़िदा आईएसएसएफ जूनियर का मुजाहरा करते हुए सोने के 7 तमगों समेत 24 तमगे हासिल किए। भारतीय शूटरों ने पिस्टल और राइफल के मुकाबले में बेहतरीन खेल पेश करते हुए 7 सोने, 8 चांदी और 9 कांसे के तमगे जीते और उन इनफरादी गैर जानबदाराना खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया जिन्होंने 14 तमगे हासिल किए। इटली 10 तमगों के साथ तीसरे मकाम पर रहा। बैडमिंटन में भारत के रौनक चौहान आज फ्लोरेटन में खेले जा रहे अमरीकी ओपन टूर्नामेंट में बड़ा उलटफेर करते हुए आलमी नंबर 6 और मर्दों के सिंगल्स के अव्वल दर्जे के खिलाड़ी चीनी ताइपे के चाउ टियन चेन को सीधे मुकाबले में 21-17, 26-24 से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। मर्दों के सिंगल्स के एक और मुकाबले में कदम्बी श्रीकांत मलेशिया के ली जी जियाओ को 21-14, 21-13 से हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। खवातीन के सिंगल्स में तन्वी शर्मा, रक्षिता श्री और देविका सिहाग क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। 5वीं दर्जे की खिलाड़ी तन्वी शर्मा ने चेन्नई ताइपी की तुंग सी तोंग को 21-12, 21-19 से शिकस्त दी जबकि रक्षिता ने चेन सुयू को 21-4, 21-19 से हराया। आखिर में खास खबरें एक मरतबा फिर। वजीर दाखिला अमित शाह ने मंशियात के कंट्रोल से मुतल्लिक सहसाला विजन दस्तावेज का आगाज किया। उन्होंने मंशियात मुखालिफ मुहिम को और मुस्तहकम करने के लिए बेहतर तालमेल और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जोर दिया। मरकज भारत बरतानिया तजारती समझौते के फवायद को ज्यादा से ज्यादा हासिल करने की गरज से मुल्क भर में 1000 मशावरती अफराद तैनात और तजारती पोर्टल को अपग्रेड करेगा। वेनेजुएला के जलजलों में मरने वालों की तादाद बढ़कर 589 हो गई है। भारत ने हंगामी राहती साजो सामान के साथ भारतीय फजाइया के 2 जहाज रवाना किए हैं। अमरीका और ईरान ने मजीद किसी जंग के खतरे को कम करने की गरज से बराह रास्त फौजी मवासिलाती चैनल कायम करने से इत्तेफाक किया है। जर्मनी में आईएसएसएफ जूनियर आलमी चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाज सोने के 7 तमगों समेत 24 तमगों के साथ सरे फहरिस्त रहे। इसी के साथ खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है खेल खिलाड़ी। खेल खिलाड़ी के अंतर्गत आप सुनेंगे फीफा वर्ल्ड कप से जुड़ी और अन्य खबरों के अलावा खेल खबरें। प्रस्तुति प्रभु शरण की, रिपोर्ट है अमित अखौरी की।

तो सबसे पहले हम बातचीत कर रहे हैं भारत और अफगानिस्तान के बीच संपन्न टेस्ट और वनडे सीरीज की। भारत ने एकमात्र टेस्ट मैच एक पारी और 300 रनों से जीती और ये टेस्ट क्रिकेट में भारत की सबसे बड़ी जीत है रनों के हिसाब से। शुभमन गिल ने 126 रन बनाए इस टेस्ट मैच में। केएल राहुल ने भी शानदार पारी खेली और 100 रन बनाए। सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज साबित हुए शुभमन गिल और अफगानिस्तान की ओर से रहमत शाह ने भी पहली पारी में 60 रन बनाए थे। अगर हम गेंदबाज की बात करें दोस्तों, तो मानव सुधार ने पदार्पण मैच में 33 रन देकर 6 विकेट लिए और प्लेयर ऑफ द मैच रहे। वाशिंगटन सुंदर ने भी 36 रन देकर 4 और कुलदीप यादव ने 30 रन देकर 3 विकेट लिए। रिकॉर्ड्स की बात करें तो मानव सुधार भारत के लिए टेस्ट पदार्पण मैच में 5 विकेट लेने वाले चुनिंदा गेंदबाजों में वो शामिल हुए। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 वनडे मैचेस भी हुए जिसमें तीनों मैच भारत ने जीते। भारत ने क्लीन स्वीप किया। पहला वनडे धर्मशाला में हुआ 13 जून को और इसमें भी भारत ने जीत दर्ज की। शुभमन गिल ने इसमें अर्धशतक मारे और वनडे में 3000 रन उन्होंने पूरे किए। बेस्ट बॉलर की अगर हम बात करें तो गुरनूर बराड ने बहुत अच्छा खेल प्रदर्शन किया और उन्होंने क्रिकेट प्रेमियों को प्रभावित किया। बारिश की वजह से यह मैच 25-25 ओवर का हुआ और अफगानिस्तान ने 194 रन बनाए थे। भारत ने 7 विकेट से मैच जीत ली। दूसरा वनडे लखनऊ में हुआ 17 जून को और इसमें भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 170 रनों से जीत दर्ज की। इसमें कप्तान गिल और ईशान किशन ने अच्छी पारी खेली। तीसरा वनडे मैच चेन्नई में खेला गया और इसमें भी भारत ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। हाँ, एक बात है कि इसमें अफगानिस्तान टीम के कप्तान हसमतुल्ला शाहिदी ने अपने ओडीआई करियर का पहला शतक लगाया। भारत ने पहले ही ओवर में 23 रन बनाकर 22 साल का पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। प्रसिद्ध कृष्णा और रोहित शर्मा ने एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया। रोहित ने प्रसिद्ध की गेंदों पर 3 कैच लपके। यशस्वी जायसवाल ने इस मैच में 110 रनों की पारी खेली। रोहित शर्मा ने अच्छा प्रदर्शन किया और उन्होंने 79 रन बनाए। आइए अब फीफा वर्ल्ड कप राउंडअप की ओर बढ़ते हैं। फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल राउंडअप में सबसे पहले बातें मेसी। डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने फुटबॉल वर्ल्ड कप में एक नया इतिहास रच डाला है। सोमवार को ऑस्ट्रिया के खिलाफ खेले गए मैच में मेसी ने अपने वर्ल्ड कप करियर का 17वां गोल दागा और इसके साथ ही उन्होंने वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। मेसी ने जर्मनी के महान स्ट्राइकर मिरोस्लाव क्लोजे का रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्लोजे के नाम वर्ल्ड कप में 16 गोल दर्ज हैं। मेसी ने यह कमाल अपने 39वें जन्मदिन से ठीक 2 दिन पहले किया। मैच के 38वें मिनट में गोल करके मेसी ने अपनी टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई। हालांकि इससे करीब आधे घंटे पहले उनके पास रिकॉर्ड तोड़ने का मौका था लेकिन वे पेनाल्टी में चूक गए। मेसी ने अपने बाएं पैर से किक मारी लेकिन बॉल राइट गोल पोस्ट के बगल के बाहर से निकल गई। हालांकि इसके बाद उन्होंने 90वें मिनट में गेंद को नेट में पहुंचाया और टूर्नामेंट में अपने गोल की संख्या 18 तक पहुंचा दी। अर्जेंटीना ने अंततः यह मैच 2-0 से जीता और नॉकआउट में प्रवेश कर लिया। फीफा विश्व कप में रविवार का दिन फुटबॉल के इतिहास में दर्ज हो गया। ग्रुप एफ में ट्यूनिशिया और जापान के बीच खेला गया मैच विश्व कप इतिहास का 1000वां मैच रहा। 1930 में उरुग्वे में हुई इस प्रतियोगिता ने करीब एक सदी के सफर में कई ऐतिहासिक पल देखे हैं। फीफा के अनुसार 13 जुलाई 1930 को खेले गए विश्व कप मुकाबले से लेकर 2026 के इस संस्करण तक फुटबॉल का दायरा लगातार बढ़ता गया। इस बार 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जो इसे अब तक का सबसे बड़ा मुकाबला बनाता है। पराग्वे के मिडफील्डर मिगुएल अल्मिरोन वर्ल्ड कप में मुंह ढकने के लिए लाल कार्ड पाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। घटना ग्रुप डी के मैच के दौरान घटी जब मिडफील्ड के पास फाउल के बाद अल्मिरोन और मर्ट मुल्डर के बीच कहासुनी हो गई और अल्मिरोन ने मुंह ढक। नए नियम के अनुसार अल्मिरोन को तुरंत लाल कार्ड दिखाकर बाहर का रास्ता दिखाया गया। नीदरलैंड्स के वर्ल्ड कप में 100 गोल पूरे हो गए और ऐसा करने वाला वह 8वां देश बन गया। नीदरलैंड्स ने वर्ल्ड
वर्ल्ड कप के इतिहास में

सिर्फ चौथी बार एक मैच में 5 गोल किए। डच टीम के अब टूर्नामेंट के इतिहास में 103 गोल हो गए और इस बीच मौजूदा टूर्नामेंट में 35 मैचों में 100 गोल हो चुके हैं। मैच में नीदरलैंड ने स्वीडन को हराया। 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन ब्राजील ने अपनी बादशाहत का नजारा पेश किया। ब्राजील ने हैती को 3-0 से पराजित किया और इस जीत के साथ ब्राजील ने नॉकआउट के दौर में मजबूती से कदम बढ़ा लिए। इस मैच में दूसरा गोल होते ही फुटबॉल वर्ल्ड कप के इतिहास में नई कहानी लिख दी गई। ब्राजील अब फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाला देश बन गया। ब्राजील ने 241 गोल करके जर्मनी के 239 गोलों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। दूसरी ओर इस हार के साथ हैती का सफर इस वर्ल्ड कप में खत्म हो गया। साल 1974 के बाद पहली बार वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाली हैती इस टूर्नामेंट से बाहर होने वाली पहली टीम बन गई। अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराकर नॉकआउट में प्रवेश कर लिया। ग्रुप बी में शीर्ष पर रहते हुए अमेरिका इस टूर्नामेंट के नॉकआउट में पहुंचने वाली दूसरी टीम बनी। पहली टीम मैक्सिको है। अमेरिका ने वर्ल्ड कप में लगातार 2 मैच जीतकर नॉकआउट में प्रवेश किया है। 21 साल के एलेक्स फ्रीमैन वर्ल्ड कप में गोल करने वाले दूसरे सबसे कम उम्र के अमेरिकी खिलाड़ी बन गए। लुइस रामा के गोल के साथ ही मेजबान मैक्सिको मौजूदा विश्व कप में नॉकआउट में पहुंचने वाली पहली टीम बनी। मैक्सिको ने दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराया। उसने 2 मैचों में 6 अंक हासिल करके ग्रुप ए में शीर्ष पर अपनी जगह सुनिश्चित कर ली। कनाडा ने कतर को 6-0 से रौंदकर वर्ल्ड कप फुटबॉल के इतिहास में अपनी पहली जीत दर्ज की और नॉकआउट में अपनी जगह लगभग पक्की कर ली। कतर में 2 खिलाड़ियों को लाल कार्ड दिखाया गया जिससे उसके खिलाड़ियों की संख्या 9 पर सिमट गई और विपक्षी टीम ने इसी का फायदा उठाकर 6 गोल दाग डाले। जोनाथन डेविड ने दर्शकों का अपार समर्थन पाकर हैट्रिक लगाई। वर्ल्ड कप में कनाडा की ये पहली जीत है। फीफा वर्ल्ड कप के अपने पहले मुकाबले में इंग्लैंड ने क्रोएशिया को 4-1 से करारी शिकस्त दी। इंग्लैंड ने अपने फुटबॉल इतिहास में पहली बार वर्ल्ड कप के लगातार 3 ओपनिंग मैच जीतने का रिकॉर्ड बनाया। साथ ही साल 2002 के बाद यह पहला मौका है जब इंग्लैंड फीफा रैंकिंग में टॉप 15 में शामिल हो गया और उसने टॉप 15 में शामिल किसी टीम को हराया। इसके साथ ही टॉप टीमों के खिलाफ इंग्लैंड का 9 मैचों का जीत का सूखा भी खत्म हो गया। फ्रांस के कप्तान एम्बापे को विशेष सम्मान के रूप में 58 नंबर की जर्सी भेंट की गई। एम्बापे ने राष्ट्रीय टीम के लिए सर्वकालिक शीर्ष गोल स्कोरर बनने का रिकॉर्ड बनाया। एम्बापे ने इस उपलब्धि पर कहा कि मेरे लिए यह गर्व की बात है और ये एक ऐसा देश है जिसने कई महान खिलाड़ियों को आते जाते देखा है। मेसी का 200वां मैच रहा हैट्रिक एक रिकॉर्ड 10। डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अल्जीरिया को 3-0 से हराकर विजयी आगाज किया। मैच के 3 गोल स्टार फुटबॉलर मेसी ने किया और इसी के साथ उन्होंने 10 ऐसे रिकॉर्ड बनाए जो उनकी कामयाबी को दर्शाते हैं। 200 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले पहले दक्षिण अमेरिकी पुरुष फुटबॉलर बने। 38 साल 357 दिन की उम्र में वर्ल्ड कप में पहली हैट्रिक बनाई। रोनाल्डो को उन्होंने पछाड़ दिया। अर्जेंटीना के लिए वर्ल्ड कप में गोल करने वाले सबसे युवा और सबसे उम्र दराज खिलाड़ी भी बने। वर्ल्ड कप में 16 गोल किए। सर्वाधिक गोल के जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोस के ऑल टाइम रिकॉर्ड की उन्होंने बराबरी कर ली। वर्ल्ड कप में 24 गोल कंट्रीब्यूशन हो गए उनके। महान खिलाड़ी पेले को उन्होंने पीछे छोड़ दिया। उनके 21 गोल हैं। 6 अलग अलग वर्ल्ड कप खेलने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए। रोनाल्डो के बाद 5 अलग अलग वर्ल्ड कप में गोल करने वाले दूसरे खिलाड़ी बने। लगातार 5 वर्ल्ड कप मैचों में गोल करने वाले अर्जेंटीना के पहले खिलाड़ी हैं। किसी अफ्रीकी देश अल्जीरिया के खिलाफ मेसी की पहली हैट्रिक थी ये। अल्जीरिया वर्ल्ड कप में मेसी के खिलाफ गोल खाने वाली 11वीं टीम बनी। फीफा वर्ल्ड कप के ग्रुप एफ मुकाबले में जापान ने ट्यूनिशिया को 4-0 से शिकस्त दी। यह फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में 1000वां मैच था। जापान वर्ल्ड कप के किसी एक मैच में 4 गोल दागने वाली पहली एशियन टीम भी बन गई। यह जापान की टीम की वर्ल्ड कप के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी जीत है।
ट्यूनिशिया की टीम नॉकआउट की रेस से बाहर हो गई। जर्मनी ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर 12 साल बाद यानी 2014 के बाद पहली बार नॉकआउट में जगह बनाई। जर्मनी के मैनुअल नेउर वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले गोलकीपर भी बन गए। तो दोस्तों, ये सप्ताह भर की फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल की गतिविधियां थी और अब हम अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और खास खास में फीफा वर्ल्ड कप की ही चर्चा करेंगे। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में इस बार मैदान पर खिलाड़ियों के साथ साथ एक खास स्मार्ट बॉल का भी जलवा दिख रहा है। फीफा और एक कंपनी ने मिलकर इस टूर्नामेंट के लिए ट्रायोंडा नाम की एक कनेक्टेड बॉल पेश की है। यह कोई साधारण फुटबॉल नहीं है दोस्तों, बल्कि तकनीक का एक ऐसा शानदार नमूना है जो वीडियो असिस्टेंस रेफरी VAR पलक झपकते ही एकदम सटीक जानकारी, सटीक डेटा देती है। हालांकि इसकी सबसे दिलचस्प बात यह है कि आपको अपने मोबाइल फोन की तरह इस बॉल को भी बकायदा चार्ज करना पड़ता है। इस स्मार्ट गेंद का सबसे बड़ा फायदा ऑफ साइड के फैसलों में हो रहा है और अक्सर ऑफ साइड के फैसलों में सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि खिलाड़ी का पैर गेंद से ठीक किस मिली सेकेंड में टकराया या पता लगाना बहुत ही मुश्किल होता है। दरअसल मैदान पर लगे कैमरे वीडियो को 1 सेकेंड में 50 फ्रेम यानी 50 FPS की स्पीड से रिकॉर्ड करते हैं। इतने कम फ्रेम में सटीक किक पॉइंट को खोजना वीडियो रेफरी के लिए काफी कठिन काम होता है और इसी समस्या को दूर करने के लिए ट्रायोंडा बॉल के अंदर एक ऐसा छोटा इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट लगाया गया है। यह एडवांस सेंसर 1 सेकेंड में 500 बार गेंद की स्पीड, दिशा और 3D मूवमेंट का बारीकी से डेटा कैप्चर करता है। यह डेटा सीधे वीडियो ऑपरेशन रूम में जाता है। इससे रेफरी को तुरंत पता चल जाता है कि गेंद को कब और किसने छुआ है। यह तकनीक ऑफसाइड के अलावा विवादित हैंडबॉल के मुश्किल फैसलों में भी बेहद मददगार साबित हो रही है। जैसे कि स्वीडन और ट्यूनिशिया के एक मैच में एक गोल को शुरुआत में ऑफसाइड मानकर खारिज कर दिया गया था, लेकिन गेंद से मिले तुरंत डेटा से पता चला कि स्वीडन के एक और खिलाड़ी का गेंद पर बहुत हल्का सा टच लगा था जिसने स्कोरर को ऑन साइड कर दिया। नतीजतन रेफरी ने गोल को सही करार दिया। कतर वर्ल्ड कप 2022 की गेंद भी कोई ऐसा सटीक डेटा नहीं दे सकती। इस कनेक्टेड बॉल तकनीक को मैदान पर उतारने से पहले 2020 से 2022 के बीच कई कड़े टेस्ट किए गए। फीफा की इनोवेशन टीम हर टूर्नामेंट से पहले इसकी बारीकी से जांच करती है। कतर वर्ल्ड कप 2022 की तुलना में इस बार की तकनीक और भी उन्नत है। पिछली बार चीप गेंद के बिल्कुल बीच में थी, लेकिन नई ट्रायोंडा बॉल में इसे साइड पैनल में फिट किया गया। लैब में 300 से ज्यादा टेस्ट किए गए ताकि चीप के साइड में होने के बावजूद गेंद का वजन, बैलेंस, रोटेशन और हवा में तैरने की क्षमता बिल्कुल सटीक रहे, कहीं कोई परेशानी न हो। खिलाड़ियों को प्रैक्टिस और मैच की गेंदों में कन्फ्यूजन न हो, इसलिए ट्रेनिंग वाली गेंदों और मैच वाली गेंदों में हवा भरने वाले बॉल्ब का रंग अलग अलग रखा गया। कुल मिलाकर तकनीक से लैस या स्मार्ट बॉल खेल को और भी अधिक निष्पक्ष और पारदर्शी बना रहा है। इस गेंद के अंदर एक हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक चिप लगी है दोस्तों, इसलिए इसे पावर की जरूरत होती है। मैच के बीच में बैटरी खत्म न हो, इसके लिए एक कर्मचारी लगातार सभी गेंदों की बैटरी पर नजर रखता है। हर मैच के लिए करीब 1 दर्जन गेंदों को वायरलेस डॉकिंग स्टेशन में पहले से चार्ज करके रखा जाता है। बिल्कुल खाली बैटरी वाली गेंद को फुल चार्ज होने में करीब 2.5 घंटे लगते हैं और एक बार चार्ज होने पर गेंद 6 घंटे तक चलती है। पावर बचाने के लिए जब गेंद मैदान से बाहर साइडलाइन पर होती है तो यह अपने आप हाइबरनेशन मोड में चली जाती है। तो दोस्तों देखिए, तकनीक कितनी आगे बढ़ गई है जिसकी वजह से अब पहले से ज्यादा बारीकियां देखने को इसमें मिल रही है। और खास खास में अब हम बात कर रहे हैं मेसी की। मेसी की सबसे बड़ी प्रतिमा लगी है जो 70,000 किलो स्टील से 18 महीनों बना है, 85 फीट इसकी ऊंचाई है। फुटबॉल के सुपरस्टार लियोनेल मेसी बुधवार को 39 साल के हुए और उनके इस जन्मदिन पर फैंस ने उन्हें एक बहुत बड़ा तोहफा दिया। अर्जेंटीना के पेटागोनिया शहर में मेसी की 85 फीट यानी 26 मीटर ऊंची मूर्ति लगाई गई है। यह उनके सम्मान में बनी अब तक की सबसे बड़ी मूर्ति है। इस मूर्ति में 70,000 किलो स्टील का इस्तेमाल हुआ है और इसे बनाने वाले 61 साल के आर्टिस्ट एल्डो बेरोइसा को यह काम करने में 18 महीने लगे।
लगे। इसमें मेसी को 2022 वर्ल्ड कप जीतने के बाद घुटनों के बल बैठे और आसमान की तरफ इशारा करते हुए दिखाया गया है। इस नई मूर्ति ने भारत के कोलकाता में बने 70 फीट की ऊंची मूर्ति को पीछे छोड़ दिया। वह मूर्ति सिर्फ 27 दिन में तैयार हुई थी। हालांकि हवा में हिलने की वजह से असुरक्षित मानकर इसे हटा दिया गया था। अब उसे किसी दूसरी जगह पर लगाए जाने की योजना बन रही है। अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में मेसी की 18 फीट ऊंची एक शानदार पेंटिंग भी दीवार पर बनाई

गई है। इस पर मेसी के 1300 फैंस के नाम लिखे। और खास खास में एक और बात है दोस्तों, फीफा वर्ल्ड कप में पहली बार ये हो रहा है कि जर्सी पर बैज जो लगा है वो फुटबॉलरों की लेगेसी को बता रही है। अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में खेले जा रहे 2026 फीफा वर्ल्ड कप में खिलाड़ियों की जर्सी पर लगा एक छोटा सा बैज इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। यह सिर्फ एक डिजाइन नहीं है दोस्तों, बल्कि खिलाड़ियों की विश्व कप की यात्रा, उनके अनुभव और उपलब्धियों की पहचान भी पेश कर रही है। फीफा और उसके तकनीकी साझेदारों इस टूर्नामेंट में कई खिलाड़ियों की जर्सी स्लिप पर विशेष किट बैच लगाए हैं, जिनके जरिए दर्शक मैदान पर ही जान जाते हैं कि खिलाड़ी का विश्व कप का इतिहास क्या रहा है, उनकी क्या उपलब्धियां रही हैं। इन बैचों का उद्देश्य खिलाड़ियों की उपलब्धियों को सम्मान देना और प्रशंसकों को उनको करियर से जोड़ना है। जैसे मेसी के लेगेसी बैच की अगर हम बात करें तो अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी की जर्सी पर लगा विरासत बैच उनके शानदार विश्व कप करियर की कहानी कर रहा है। मेसी 6 विश्व कप खेलने वाले चुनिंदा खिलाड़ियों में शामिल हैं। 2022 में अर्जेंटीना को विश्व चैंपियन बनाने के बाद उनका नाम महानतम खिलाड़ियों में शुमार हो चुका है। रोनाल्डो की लेगेसी बैच की बात करें तो पुर्तगाल के दिग्गज खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जर्सी पर भी विरासत बैच लगा है। रोनाल्डो रिकॉर्ड 6 विश्व कप में खेल रहे हैं, विश्व कप के कई रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं और रोनाल्डो का यह बैच उनकी लंबी कहानी और यादगार यात्रा का सम्मान है। जिन देशों ने पहले विश्व कप जीता है उनकी जर्सी पर सामान्य विश्व कप लोगों की जगह सुनहरे रंग का विश्व कप बैच भी लगाया गया है, जो अलग से उनको सम्मान प्रदान कर रहा है। इस बार फीफा वर्ल्ड कप सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं बल्कि एक ऐसा आर्थिक महाकुंभ है जो पेरिस ओलंपिक से करीब 4 गुना बड़ा है। दुनिया की लगभग 3/4 आबादी यानी करीब 600 करोड़ लोग इस आयोजन से जुड़ गए हैं। 39 दिन तक चलने वाले इतने बड़े आयोजन को लेकर दुनिया भर के ब्रांड्स पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। एक अनुमान के अनुसार दुनिया भर की कंपनियां इस वर्ल्ड कप में विज्ञापनों पर 99,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही हैं। यह वर्ल्ड कप वैश्विक इकोनॉमी में करीब 3,86,000 करोड़ रुपए का योगदान देगा और दुनिया भर में 8 लाख से ज्यादा नई नौकरियां पैदा करेगा। इसका सबसे बड़ा फायदा अमेरिका की अर्थव्यवस्था को होगा, जहां सिर्फ होटल, रेस्टोरेंट और रियल एस्टेट जैसे सेक्टर्स में ही करीब 41,000 करोड़ रुपए की बम्पर कमाई होगी, जबकि कुल फायदा 1,62,00,000 करोड़ तक होगा। विज्ञापनों की कीमत आसमान छू रही है। वर्ल्ड कप फाइनल के दौरान अपना विज्ञापन दिखाने के लिए कंपनियों को लगभग 236 करोड़ रुपए तक की भारी भरकम रकम चुकानी पड़ेगी। टीवी ब्रॉडकास्टर्स की शुरुआती विज्ञापनों के लिए करीब 47 करोड़ रुपए का न्यूनतम पैकेज भी रखा गया है। फीफा को ब्रॉडकास्टिंग स्पॉन्सरशिप और टिकटों की बिक्री से करीब 84,000 करोड़ रुपए की कमाई होने की उम्मीद है, जो 2022 के कतर वर्ल्ड कप के मुकाबले में काफी ज्यादा है। इतिहास में ऐसा पहली बार है दोस्तों जब टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही सभी 16 ग्लोबल स्पॉन्सरशिप डील बिक चुकी हैं। और एक बात और है दोस्तों कि ये प्रवासी खिलाड़ियों का एक बहुत बड़ा मंच बन गया है, जिसमें 292 प्लेयर्स अपनी जन्मभूमि छोड़कर दूसरे देशों के लिए खेल रहे हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2026 मैदान के साथ साथ खिलाड़ियों की नागरिकता और माइग्रेशन के दिलचस्प आंकड़ों के लिए भी चर्चा में है। 48 टीमों के 1,248 खिलाड़ियों में से 292 खिलाड़ी ऐसे हैं जो उस देश के लिए नहीं खेल रहे हैं जहां उनका जन्म हुआ। टूर्नामेंट में केवल 8 टीमें ऐसी हैं जिनमें कोई विदेशी मूल का खिलाड़ी शामिल नहीं है। माइग्रेशन, पुराने औपनिवेशिक संबंधों और फीफा के बदले नियमों ने वर्ल्ड कप की तस्वीर पूरी तरह से बदल दी है। आंकड़ों के लिहाज से फ्रांस सबसे आगे है और इस वर्ल्ड कप में फ्रांस में जन्मे 98 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन इनमें से 76 खिलाड़ी फ्रांस की जगह किसी दूसरे देशों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। फुटबॉल में यह स्थिति बिल्कुल नई नहीं है दोस्तों। 1930 के पहले वर्ल्ड कप में अमेरिकी टीम में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में जन्मे खिलाड़ी शामिल थे। समय के साथ फीफा ने दोहरी नागरिकता वाले नियमों में कई बदलाव किए। पहले यूथ लेवल पर एक देश के लिए खेलने के बाद
टीम नहीं बदल

सकते थे, लेकिन 2004 और 2009 में अल्जीरिया की मांग पर नियमों में ढील दी गई। नए नियम के अनुसार यदि किसी खिलाड़ी ने 21 साल से पहले अधिकतम 3 प्रतिस्पर्धी मैच खेले हैं तो आखिरी मैच के 3 साल बाद वह अपनी राष्ट्रीय टीम बदल सकता है। इसके अलावा जन्म, माता पिता या दादा दादी के जन्म स्थान या संबंधित देश में लगातार 5 साल रहने के आधार पर भी टीमों को चुना जा सकता है। जमाल मुसियाला, फोलारेन बालोगन और डेक्लान राइस जैसे खिलाड़ी इसके बहुत बड़े उदाहरण हैं। डिएगो कोस्टा ने भी ब्राजील के लिए फ्रेंडली मैच खेलने के बाद स्पेन को चुना था। हालांकि 2004 में ब्राजील के स्ट्राइकर एल्टन को बिना किसी पारिवारिक संबंध के भारी भरकम रकम देकर कतर की नागरिकता देने की बात भी सामने आई थी। इन नियमों के चलते अब फुटबॉल फेडरेशन सही खिलाड़ियों की तलाश के लिए बेहद आधुनिक और अप्रत्याशित तरीके अपना रहा। अल्जीरिया की टीम में 50% खिलाड़ी ऐसे हैं जो विदेशी मूल के हैं। अपनी टीम में सबसे ज्यादा विदेशी मूल के खिलाड़ी शामिल करने में अल्जीरिया शीर्ष पे है, जिसमें 13 खिलाड़ी हैं, जबकि हैती में 12 ऐसे खिलाड़ी हैं। पहली बार खेल रही कुराकाओ की टीम में एक को छोड़कर सभी खिलाड़ी डच मूल के हैं। कतर की टीम में 11 खिलाड़ी अलग अलग देशों में जन्मे हुए खिलाड़ी हैं। वहीं मोरक्को ने ब्राजील के खिलाफ मैच के दूसरे हाफ में ऐसे सभी 11 खिलाड़ी उतारे जिनका जन्म मोरक्को से बाहर हुआ है। अब हम आपको रूबरू कराते हैं कुछ खास खेल खबरों से। वैभव सूर्यवंशी के नाम एक और रिकॉर्ड 11 गेंदों में अर्धशतक लगाने का बन गया। इससे पहले 2006 में श्रीलंका के कौशल्य वीरागने ने 12 गेंदों में अर्धशतक लगाए थे। ट्राई सीरीज के फाइनल में श्रीलंका ए के खिलाफ जब वैभव खेल रहे थे तब भारत का प्रोजेक्टेड स्कोर 935 था, हालांकि टीम इंडिया ए 377 रनों तक पहुंच गई। टेस्ट, T20 और वनडे के फॉर्मेट तो बदले लेकिन वैभव का अंदाज नहीं बदला। वैभव का 2024 में अंडर 19 टेस्ट में 58 गेंद पर शतक का रिकॉर्ड है। यह किसी भारतीय का सबसे तेज शतक है। रिकॉर्ड इंग्लैंड के मोइन अली के नाम था। 2025 में 35 गेंद में आईपीएल में शतक बनाया, इसमें रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम था। 36 गेंदों के साथ तीसरे स्थान पर वैभव रहे। लिस्ट ए में सबसे तेज 150 रन का रिकॉर्ड उन्होंने बनाया। आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा 72 छक्कों का रिकॉर्ड भी वैभव सूर्यवंशी ने बनाया। भारत ने ए टीमों की ट्राई सीरीज के फाइनल में मेजबान श्रीलंका को 66 रन से हराकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। रविवार को खेले गए खिताबी मुकाबले में युवा भारतीय टीम ने 377 रन बनाए। सीरीज में पहली बार 350 का आंकड़ा भारतीय टीम ने पार किया। जवाब में श्रीलंका की टीम 47.1 ओवर में 311 रन पर सिमट गई। इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान किया गया। 14 जुलाई से 3 मैच की सीरीज होगी। बुमराह 3 साल बाद इस फॉर्मेट में खेलेंगे। बीसीसीआई ने इंग्लैंड दौरे के लिए 15 सदस्यीय वनडे टीम की घोषणा की है और सबसे चौंकाने वाला फैसला युवा ओपनर यशस्वी जायसवाल को बाहर रखना है। उन्होंने अपने पिछले मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ 110 नाबाद रन बनाए थे और यह उनके 6 मैच के वनडे करियर का दूसरा शतक था। दरअसल टीम इंडिया 2027 में दक्षिण अफ्रीका में होने वाले वर्ल्ड कप की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए अपने सबसे मजबूत टीम उतार रही है। इसी रणनीति के तहत विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल की वनडे स्क्वाड की वापसी हुई है। अंतिम पारियों में शतक जड़ चुके 3 बैटर भी इस टीम में शामिल नहीं है। भारतीय टीम में इस समय बल्लेबाजों की बहुत कड़ी प्रतियोगिता है और अपने अंतिम वनडे पारी में शतक जमा चुके 3 बल्लेबाज टीम का हिस्सा इस बार इंग्लैंड के खिलाफ नहीं है। यशस्वी के अलावा ऋतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन ने भी अपनी पिछली वनडे पारियों में शतक जड़े थे लेकिन वे टीम में जगह नहीं बना सके। कोहली को मैदान पर उतारने के लिए फिटनेस टेस्ट पास करना होगा। अगले हफ्ते सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में कोहली का फिटनेस असेसमेंट होगा। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या पूरी तरह से फिट नहीं है इसलिए उन्हें टीम में जगह नहीं मिली है। बुमराह 2023 वर्ल्ड कप फाइनल के बाद पहली बार वनडे खेलेंगे। वहीं पिछली 3 घरेलू सीरीज से बाहर रहे अक्षर की वापसी हुई है। बुमराह ने तेज गेंदबाज प्रिंस यादव की जगह ली जबकि अक्षर ने स्पिनर हर्ष दुबे को रिप्लेस किया। ओवल में खेले गए दूसरे टेस्ट में न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को 253 रन के विशाल अंतर से हराकर सीरीज 1-1 से बराबर कर ली है। 463 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लिश टीम दूसरी पारी में महज 209 रन पर सिमट गई। पांचवे दिन 182 पे 5 विकेट से आगे खेल रहे इंग्लैंड ने मात्र 1
घंटे के भीतर ही घुटने टेक दिए। जीत के हीरो तेज गेंदबाज

0: आज मैट हेनरी रहे जिन्होंने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए मैच में 11 विकेट चटकाए। कार्यवाहक कप्तान जो रूट का संघर्ष भी नाकाफी रहा। न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 391 और दूसरी पारी में 362 रन बनाए थे। इंग्लैंड पहली पारी में 291 रन ही बना सकी। इंग्लैंड की हार इतनी जल्दी हुई कि सरे काउंटी ने दर्शकों को टिकट का 50% रिफंड करने का ऐलान किया। महिला नेशंस का फाइनल में भारतीय हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर खिताब जीत लिया। इसके साथ ही भारत ने अगले सीजन की FIH प्रो लीग में अपनी जगह पक्की कर ली। मैच में भारत के लिए नवनीत कौर ने चौथे और सुनेलिता टोप्पो ने 15वें मिनट में गोल दागे। पूरे टूर्नामेंट में अजय रहने वाली भारतीय टीम का यह दूसरा नेशंस कप खिताब है। दीपिका 6 गोल के साथ संयुक्त शीर्ष स्कोरर रही। इस शानदार सफलता हॉकी इंडिया ने हर खिलाड़ी को 3 लाख और सपोर्ट स्टाफ को 1.5 लाख रूपए के इनाम देने की घोषणा की है। दोस्तों, पर्सनालिटी में आज हम बात करेंगे भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर की, जिन्होंने हाल ही में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। भारतीय महिला T20 टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने रविवार को इतिहास रच दिया। साउथ अफ्रीका खिलाफ वर्ल्ड कप मैच में उतरती ही वे 200 इंटरनेशनल T20 मैच खेलने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी बन गईं। पुरुष क्रिकेट में भी यह मुकाम किसी ने अभी तक नहीं छुआ है। महिला क्रिकेट में हरमन के बाद सर्वाधिक इंटरनेशनल T20 न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स ने खेले हैं, जबकि पुरुषों में सर्वाधिक T20 आयरलैंड के पॉल स्टर्लिंग ने खेले हैं 162 मैच। हरमन इस बार अपना 10वां T20 वर्ल्ड कप खेल रही हैं। साल 2009 में जब वे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में आई, तब महिला क्रिकेट की स्थिति आज जैसी बिल्कुल नहीं थी। उस समय महिला खिलाड़ियों के पास न तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट थे और न ही उनके सभी मैचों का टीवी पर प्रसारण होता था। सुविधाएं भी न के बराबर थी, लेकिन अपनी जिद और मेहनत के दम पर हरमनप्रीत ने हर चुनौती को पार किया। शुरुआत से ही हरमनप्रीत को गेंद को जोर से हिट करना और बाउंड्री के पार भेजना पसंद था। उनके आदर्श वीरेंद्र सहवाग थे और उनकी आक्रामकता हरमनप्रीत के खेल में साफ नजर आती। 2017 के वनडे वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनकी 171 रनों की नाबाद तूफानी पारी ने भारतीय महिला क्रिकेट की दिशा ही बदल दी और इस पारी ने उन्हें रातों रात पूरे देश की रोल मॉडल बना दिया। 37 साल की हरमनप्रीत विदेशी T20 लीग में खेलने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर भी बनी थी। भारत में वीमेंस प्रीमियर लीग में भी उन्होंने मुंबई इंडियंस की कप्तानी करते हुए 4 सीजन में 2 बार अपनी टीम को चैंपियन बनाया। हाल ही में कुछ हफ्ते पहले उनके संन्यास के बारे में पूछा गया था तो उनके चेहरे पर हैरानी थी। उन्होंने साफ कर दिया कि फिलहाल उनका ऐसा कोई इरादा नहीं है। 2016 में कप्तान बनने के बाद हरमनप्रीत ने भारतीय टीम को नई पहचान दी। उनकी कप्तानी में भारतीय महिला क्रिकेट के सबसे साहसिक फैसलों में एक लिया गया, मिताली राज को प्लेइंग 11 से बाहर करना। बॉलिंग कोच आविष्कार सालवी के मुताबिक युवा खिलाड़ियों को निखारने में हरमन का कोई जवाब नहीं है। हरमन के नेतृत्व में टीम को निडर क्रिकेट खेलना सिखाया गया। कई बार उनका गुस्सा भी चर्चा में रहा, लेकिन हरमन कह चुकी हैं कि आक्रामकता उनके स्वभाव का हिस्सा है। और दोस्तों, इसी के साथ अब हमारा यह कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। इस कार्यक्रम के संयोजक हैं प्रभु शरण, और इसी के साथ अपने दोस्त अमित को विदा दीजिए। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे खेल खिलाड़ी। खेल खिलाड़ी के अंतर्गत आपने सुना खेल खबरें फीफा वर्ल्ड कप पर आधारित। प्रस्तुति थी प्रभु शरण की, रिपोर्ट था अमित अखौरी का। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत में आज के कलाकार हैं उस्ताद शबरी खान। शबरी खान से आप सुनेंगे सारंगी पर राग पूरिया कल्याण। विलंबित रचना 1 ताल में और द्रुत रचना 3 ताल में निबद्ध है। सारंगी पर राग मारू विहाग विलंबित रचना 1 ताल व द्रुत रचना 3 ताल में निबद्ध है।

आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत, कलाकार थे उस्ताद सबरी खान। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है हिंदी और इंग्लिश में समाचार आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से।

0: तस्करी नेटवर्क के विरुद्ध अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
1: ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज कार्गो, डार्कनेट, क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, ये सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामूहिक और संगठित होनी चाहिए, एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने यह बात कही। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, एआई, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के साझा हितों पर केंद्रित है। वेनेजुएला में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के दो विमानों से भेजे हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए एक सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी आईआरजीसी और अमरीकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। आयरलैंड के बेलफास्ट में दो मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू हॉलैंड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम मुकाबला रविवार को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।